किशोर कुमार जी की आवाज में दूरियां नजदीकियां बन गईं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का नाम ही जिंदगी है।

लहजा समझ में आता है मुझे अब हर किसी का, लहजा समझ में आता है मुझे अब हर किसी का, बस किसी को शर्मिंदा करना अब मेरे मिजाज में नहीं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि के तदानुसार 2 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 और 51 सेकंड हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्पण।

6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और ठीक 7 बजे एक बार फिर से होंगे हिंदी में समाचार। सात बजकर 5 मिनट पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर हमेशा की तरह आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। सात बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज

सवेरे और ठीक 8 बजे आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात। आठ बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 का समय रहेगा उर्दू में समाचारों का और 8:45 पर आप सुन सकेंगे प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी। ठीक 9 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 9:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 9:10 पर एक बार फिर से जारी रहेगा कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं। अब सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart, Sanae Takaichi, in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
3: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified five sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled and semi-skilled personnel from India to Japan. Apart from annual summits, high-level exchanges and meetings regularly take place at foreign Minister, Defense Minister, NSA, Foreign Secretary, and other levels. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi today, and that will deepen. That will further deepen India-Japan special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said he's delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Employees Provident Fund Organization, EPFO, has officially notified an 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. The ratings have been declared following approval of the Ministry of Labour and Employment as per the EPF scheme 1952. It has directed regional and zonal offices to credit the approved interest to members' EPF accounts. The Delhi government has notified a permanent winter pollution master plan that will remain in force every year from 1st of November to 28 February to curb seasonal air pollution in the national capital. Chief Minister Rekha Gupta said the new framework consolidates existing pollution control measures into a single set of rules, ensuring timely implementation without issuing separate orders every winter. The notification incorporates a revised GRAP guidelines of the Commission for Air Quality Management and directions of the Supreme Court. Under the new rules, vehicles without a valid pollution under control certificate will not be supplied fuel at petrol pumps.

मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को भी खोल देती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 MHz पर। मेरे यानी सुरति के साथ आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण। और आइए अर्पण की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से भजन के साथ और मिलकर कहते हैं जय श्री राम।

वृक्ष कभी इस बात से दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए। वो सदैव नए फूलों के सृजन में लगा रहता है। इसीलिए जीवन में कितना कुछ भी खो जाए, इन सब को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में आपके जीवन की सार्थकता है।

इंसान को कभी भी अपने किसी भी हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि पत्थर जो है जब पानी में गिरता है ना तो अपने ही वजन से डूब जाता है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी सुरति के साथ और यह है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण। आइए इसी के साथ सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा भजन।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झरते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सजी है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

0: आप सभी सुन रहे थे श्री रामचरित मानस और इसी के साथ वक्त हो गया है समाचारों का, तो सुनेंगे संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार और इसके बाद ठीक 7:10 पर सुनना ना भूलें गोल्ड सुप्रभात मेरे यानी सुरती के साथ। लेकिन आइए अब सुनते हैं एफएम गोल्ड पर संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकारी चेत्यनया सह वार्षिक शिखरसम्मेलनस्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखरसम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणाम् आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाइची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धनदिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक सञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमन नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
2: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदात्री सूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरंट कप इत्यस्य पञ्चत्रिंशदधिकैकशततमं संस्करणं मासस्यास्य पञ्चविंशति दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. Meanwhile, Prime Minister Modi said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi today that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Mr. Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The government has issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. Sources said the Ministry of Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The ministry also directed Meta not to roll out the usernames feature until consultation on the matter is over. Lieutenant Governor Manoj Sinha, Jammu and Kashmir, flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Ji Yatra from Bhagwati Nagar Base Camp in Jammu this morning. Our correspondent reports that the 57-day annual pilgrimage officially commences across the twin tracks of Kashmir tomorrow and is scheduled to conclude on 28th of August. The first convoy of pilgrims was dispatched from Jammu early in the morning under tight security. Health Minister Jagat Prakash Nadda chaired a high-level review meeting on dengue preparedness in Delhi yesterday. Addressing the meeting, the Health Minister emphasized that the state and municipal bodies be ready to proactively anticipate and prepare for any potential upsurge by clearly demonstrating their readiness. He called upon states to actively engage ward commissioners, elected representatives and resident welfare associations in awareness and prevention efforts. The Jharkhand government has issued a statewide health alert following the death of at least 4 malaria patients in East Singhbhum district. The state government has directed all deputy commissioners to take immediate measures to prevent the spread of vector-borne diseases. The health department has instructed officials to conduct fever surveys in affected areas, ensure rapid malaria testing, provide prompt treatment and admit seriously ill patients to hospitals without delay. Venezuela's National Assembly President George Rodriguez today said that the death toll after back-to-back earthquakes has risen to 2,295 and more than 11,000 people were injured. He further said that almost 13,000 people had been left homeless. The rescue operation is still underway. 7 days after the country was hit by most powerful earthquakes in over a century. Meanwhile, Venezuela's interim president, Delcy Rodriguez, declared 7 days of mourning, saying that the country is heartbroken by the loss of life caused by the devastating earthquakes. In men's cricket, the first T20 international between India and England was abandoned due to rain in Chesterley Street last night. The 5-match series now stands level at 0-0. Opting to bat first, India scored 189 for 7 in stipulated 20 overs, with skipper Shreyas Iyer scoring highest 68 runs of 47 balls. Opening batter Abhishek Sharma also scored 59 runs, while Shivam Dubey remained not out at 42 runs. For England, Saqib Mahmood bagged 3 wickets. However, hosts England didn't get the opportunity to bat in the second innings as rain paused the match. Both the teams will now face each other in second T20 in Manchester on Saturday. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time round of 32 and qualify for the round of 16. Yuri Tillmans scored a 125th minute penalty to seal a dramatic 3-2 victory and extend Belgium's unbeaten run to 17 matches. Belgium will now face the winners of the United States versus Bosnia and Herzegovina match in the round of 16. Another round of 32 matches underway in California between co-host US and Bosnia and Herzegovina. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया आप सभी के अपने मनपसंद प्रोग्राम का जिसका नाम है गोल्ड सुप्रभात। और आज गोल्ड सुप्रभात में आपके साथ हूं मैं सुरति। वेरी गुड मॉर्निंग। बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, बहुत जगहों पर तो बारिश हो रही है लेकिन स्टूडियो की खिड़की से झांकने पर मुझे काली घटा नजर आ रही है। और ऐसे में इस बेहतरीन मौसम का आनंद लेते हुए क्यों नहीं इस प्यारे से गाने को सुने।

तो प्यारा प्यारा सा मौसम हो रहा है, काली घटा यहाँ से छाई हुई नजर आ रही है और हो सकता है कि आपके घर के आसपास तो बारिश भी हो रही हो। तो ऐसे में अगर हम बात करें आज के मौसम की, कैसा रहने वाला है आज का मौसम, तो आज मौसम विभाग का कहना है कि आज गरज के साथ बरसात का आप आनंद ले सकेंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 29 डिग्री सेल्सियस। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि आज तो हमें गर्मी से राहत मिल रही है और जिनके पास अभी बारिश नहीं हुई है उन्हें मिलने वाली है। उम्मीद करें और इस प्यारे से गाने का आनंद लें।

0: आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, मेरे यानी सुरती के साथ, और प्रोग्राम है ये गोल्ड सुप्रभात। सुबह की शुरुआत आप कैसी करते हैं? अच्छी करते हैं, हेल्दी करते हैं, खुद को फिट रहने वाली करते हैं? अगर करते हैं ऐसा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते तो भाई ध्यान से सुनिए, हमें अपने पूरे दिन को अगर ऊर्जावान बनाना है, खुद को खुश रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सुबह के लिए, छोटी छोटी सी जो जरूर करनी है। जैसे अगर सुबह उठे तो जल्दी उठ गए, मतलब कहते हैं ना सूर्योदय हो रहा है तो उससे पहले उठ जाना चाहिए या उस वक्त तक तो उठ ही जाना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे टाइम पर उठें कि आपको सूर्योदय होता हुआ नजर आए। उठने के बाद गुनगुना पानी पीना जरूरी है, क्योंकि गुनगुना पानी पीने से शरीर से जो कचरा होता है वो बाहर निकलता है और बॉडी डिटॉक्स होती है। और सुबह उठने के बाद चाहे 10 मिनट ही सही व्यायाम, हल्का व्यायाम या योग जरूर करना चाहिए। टहलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है हमारे शरीर में खून का बहाव तेज करता है और हमारी बॉडी को एक्टिव बनाता है। फिर धीरे धीरे जब धूप खिल जाती है तो कुछ देर धूप में बैठें और शरीर को विटामिन डी देने के लिए अपने बॉडी को धूप में जरूर रखें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट इन सब चीज़ों के बाद पौष्टिक नाश्ता। बहुत लोग नाश्ता स्किप कर जाते हैं, सुबह जल्दी भागना होता है, टाइम नहीं होता, तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे में फल खा लें, भीगे हुए बादाम खाएं या दलिया ले सकते हैं, हल्की फुल्की चीज़, लेकिन नाश्ता ज़रूर करें। और इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो डायरी में पूरे दिन की प्लानिंग लिखते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। अगर आप अपने दिन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो पूरे दिन के कामों की लिस्ट तैयार करें और दिन को अच्छा बनाएं। बस ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं, अगर इन्हें हम चेंज कर लेंगे ना, पूरा डे हैप्पी और साथ ही हेल्दी भी रहने वाला है।

0: शनेह पन्थः शनेह कन्था शनेह पर्वत लंघनम शनेर विद्या शनेर व्रतम पंचेतानी शनेह शनेह। अर्थात रास्ता धीरे धीरे तय करें, चादर धीरे धीरे सिलें, पहाड़ पर भी धीरे धीरे चढ़ें, विद्या धीरे धीरे प्राप्त करें और धन भी धीरे धीरे कमाएं। ये पांचों कार्य जल्दबाजी में नहीं बल्कि धैर्य निरंतर प्रयास से ही पूरे होते हैं। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस ओजपूर्ण और सुहावनी प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल यू लवली फोक्स ट्यून इन टू अस दिस ब्यूटीफुल थर्सडे मॉर्निंग फॉर अनदर एडिशन ऑफ आवर मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। सो मुकेश, लेट अस बिगिन विद सम न्यूज हेडलाइंस राइट अवे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे।
1: Government has issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. Sources said that the Ministry of Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The ministry also directed Meta not to roll out the usernames feature until consultation on the matter is over. Sources said that the ministry has taken note of a public announcement by WhatsApp that it has commenced a phased global rollout, including in India, of its usernames feature. Employees Provident Fund Organization, EPFO, is officially notified an 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. The ratings have been declared following approval of the Ministry of Labour and Employment as per the EPF scheme 1952. It has directed regional and zonal offices to credit the approved interest to members' EPF accounts. Civil Aviation Ministry has announced that India achieved a major milestone with approval of the country's first private point-in-space PINS instrument approach procedure for helicopter operations at Undavali Heliport. PINS procedures use advanced satellite-based navigation technology to enable helicopters to conduct safe and precise instrument approaches to heliports that do

0: not have conventional instrument landing infrastructure. The ministry said that PNS is particularly beneficial during adverse weather conditions and in areas where ground-based navigation aids are not available. It was developed by the Airports Authority of India and approved by the Directorate General of Civil Aviation. The indirect talks between Iran and the US through mediator concluded in Doha yesterday. According to a statement by the Qatari government, both sides agreed to continue discussions after the funeral ceremonies for Iran's former supreme leader, Ali Khamenei, on the 9th of this month. Talking to media, US Vice President J.D. Vance said the Doha negotiations were progressing well, with technical level discussions already underway. He said the next phase would focus on Iran's nuclear program and added that the talks were being held from a position of strength after recent US military action.
1: और श्रोताओं, सनातन धर्म की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाली श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 3 जुलाई से नुवनगाम, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी।
0: FIFA World Cup News now. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time round of 32 and qualify for the round of 16. Youri Tielemans scored a 125th minute penalty to seal a dramatic 3-2 victory and extend Belgium's unbeaten run to 17 matches. Belgium will now face the winners of the United States versus Bosnia and Herzegovina match in the round of 16. Last night, England defeated the Democratic Republic of Congo 2-1 in the Atlanta, with Harry Kane scoring twice in the final 15 minutes. England will face co-host Mexico in the round of 16 on July 6th.
1: और अगर बात करें क्रिकेट की, तो पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और अब समय है प्रमुख महानगरों की खबरों को जानने का। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़े समाचारों की। तो दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से राहत के लिए हर वर्ष 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहने वाले व्यापक और स्थायी दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरे वर्ष केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से नीचे के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से रियायत प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा और सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। बड़े वाणिज्यिक भवनों और निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन और मिस्ट गन सिस्टम अनिवार्य किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में कल से नई ईवी पॉलिसी लागू हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों के चरणबद्ध विद्युतीकरण का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। आइए सुनते हैं इस पर हमारी संवाददाता नितिका गुप्ता की खास रिपोर्ट।
2: नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने वालों को 30,000 रुपए, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदने वालों को 50,000 रुपए और N1 कैटेगरी के हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए 1,00,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही 30,00,000 रुपए से कम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह छूट दी गई है। नई नीति में पहली बार पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर 10,000 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इससे पहले केवल सीमित संख्या में ई कार्गो वाहनों को प्रोत्साहन और कुछ मार्गों पर नो एंट्री समय से छूट का प्रावधान था, लेकिन अब N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1,00,000 रुपए तक का खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा। समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। 13,000 से अधिक बूथ स्तर अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन और उसके अद्यतन के लिए वर्तमान मतदाताओं को पहले से छपे दो दो प्रपत्र वितरित करेंगे। इसके संबंध में दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन प्रपत्र भर सकते हैं।
0: Moving to Chennai now, distinguished scientist and director general of DRDO, B.K. Das has said that Tamil Nadu has the potential to emerge as a major defense electronics manufacturing hub over the next decade, with the state's annual production opportunity projected to more than triple from ₹11,500 crore in 2030 to ₹37,000 crore by 2040. The growth is expected to rise in India's overall defense production, which is projected to increase from 35% in 2030 to 45% in 2040. He said that the state is targeting to increase its share of India's defense electronics production from 15% in 2030 to 25% by 2040, supported by Tamil Nadu Defense Industrial Corridor and favorable national policy initiatives. Happy Doctor, an initiative of Redwood Creations, launched India's first gratitude marathon for doctors. The initiative is to express society's appreciation for the medical fraternity while drawing attention to the growing mental and emotional challenges faced by doctors. The studies conducted by this initiative has assessed that doctors face risk of burnout, depression, anxiety, alcohol, and also suicide risks. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay has appealed to Prime Minister Narendra Modi about critical modifications and relaxations of the VBGRAMG Act and asked for a reconsider some changes in the Act. In a letter to Prime Minister, he has said that the scheme imposed an additional financial burden of over ₹5,000 crore under the new sharing pattern and restrictive operational implications on the state government. Mukesh?
1: Ab baat karte hain महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की सुभद्रा। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक की 113वीं जयंती के अवसर पर कल महाराष्ट्र में कृषि दिवस मनाया गया। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन में श्री नाइक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। रत्नागिरी जिले में धान की खेती की प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया और कृषि पर अल नीनो घटना के असर के बारे में जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कल मुंबई में बिजली वितरण की समस्याओं की समीक्षा के लिए बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बिजली नेटवर्क को मजबूत करने और ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की गई।
0: Bengaluru News Now, the Greater Bengaluru Authority has launched a citywide safe footpaths campaign across all 5 city corporations to remove encroachments from footpaths and ensure safe movements for pedestrians. The drive, conducted under the direction of Greater Bengaluru Development Minister Krishna Baira Gowda, targeted unauthorized signboards, staircases, cables, construction debris, kiosks, pushcarts and other obstructions on major roads across the city. Officials have appealed to traders, commercial establishments and street vendors to voluntarily clear encroachments, warning that legal action will be taken against violators. We have another one from Bengaluru. Bengaluru South MP Tejaswi Surya has said that the Chief Commissioner of Railway Safety has directed the Bangalore Metro Rail Corporation Limited to investigate all metro service disruptions reported over the past 3 years and audit its operations and maintenance systems. According to a statement issued by the MP, the direction follows his letter to the Railway Safety Authority after the June 23rd disruption on the Purple Line.

0: पश्चिम बंगाल में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में कल राज्य के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने घोषणा की कि नई सरकार राज्य में कोलकाता की ऐतिहासिक ट्राम सेवाओं को उनके पुराने गौरव के साथ फिर से शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि शहर के सभी 70 ऐतिहासिक ट्राम रूट फिर से चालू किए जाएंगे और दक्षिणेश्वर से कालीघाट तक नई ट्राम कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। राजारहाट न्यू टाउन में भी नई ट्राम सेवाएं शुरू करने की योजना है। इसके अलावा फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त रखने पर भी ध्यान दिया गया है।
1: Hyderabad News Now. The 9th GST Day was celebrated with great fervor in Hyderabad yesterday, marking 9 years since implementation of the Goods and Services Tax, one of India's most significant indirect tax reforms. Attending the event as a chief guest, Telangana High Court Chief Justice, Justice Apresh Kumar Singh, described GST as a landmark reform that completely transformed the country's indirect tax landscape since its launch on July 1, 2017. He noted that through digitalization, uniformity and a cooperative federal spirit, GST simplified tax structures and made administration transparent, efficient and taxpayer friendly.
0: तो ये थे श्रोताओं अब तक महानगरों से जुड़े मुख्य समाचार। अब कार्यक्रम आज सवेरे में वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। तो इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही मौसम की बारिश हो रही है, जिससे मौसम खुशनुमा हो चुका है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अगर हम बात करें सड़कों पर, इस बारिश के बाद थोड़ा कहीं कहीं आपको ट्रैफिक जाम की समस्या महसूस हो सकती है, तो इसीलिए अपने घरों से समय से निकलें और अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचें। अगर बात की जाए मुंबई में, तो आज शहर में उधर भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश तथा आंधी तूफान की संभावना है। शहर का न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कोलकाता में भी आज बारिश होने की संभावना है। उधर न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
1: And Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. Minimum temperature was 29 degrees Celsius, maximum will be around 37. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius, maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees Celsius and a maximum of 31 degrees Celsius. And now, Mukesh, before we go to history, we are going to talk about India Food Show. Okay, the Indian Pavilion has marked the largest ever participation at North America's Summer Fancy Food Show 2026. This premier specialty food exhibition brought together hundreds of Indian food brands, exporters and innovators under one roof. The exhibition, jointly inaugurated by Consul General of India, New York, Binay Srikant Pradhan, and internationally acclaimed chef Vikas Khanna, is showcasing the richness, diversity and quality of India's agricultural and processed food industry to buyers, retailers and distributors from across the world. We have a report.
2: The Indian Pavilion at Summer Fancy Food 2026 jointly celebrates the growing global demand for Indian food products while showcasing the richness, diversity and quality of India's agricultural and processed food industry to buyers, retailers and distributors from across the world. India's largest ever showcase at the Summer Fancy Food Show features exporters across a diverse range of categories including basmati rice, spices, ready-to-eat foods, beverages and value-added agricultural products, thereby reinforcing the country's position as one of the world's fastest growing food export destinations. A key attraction at the Pavilion, Indian Mango Showcase, featuring 6 premium export varieties. The display highlights India's rich diversity of mangoes and reinforces the country's position as the world's leading producer of the fruit. Visitors are also experiencing a curated basmati culinary showcase where a range of dishes prepared using premium Indian basmati rice demonstrates its versatility across international cuisines. As global demand for authentic Indian food continues to accelerate, the Indian Pavilion stands as a powerful symbol of India's journey from its farms and factories to dining tables across the globe. Driven by the collective efforts of millions across the agricultural and food value chain, Vishal Das for Aaj Savere.
0: श्रोताओं, समय है इतिहास के पन्ने पलटने का, आपको उन जानकारियों से रूबरू कराने का जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा, या आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनकी आपको आज जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस कड़ी में बात करते हैं पहले आज के दिन यानी 2 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो वर्ष 1698 में आज ही की तारीख को थॉमस सावेरी ने भाप इंजन को पेटेंट कराया था।
1: 1897 ब्रिटिश इटालियन इंजीनियर गुलेमो मार्कोनी obtains a patent for radio in London. Formal reunification of North and South Vietnam happened this day in 1976. And 1900, second modern Olympics games opens in Paris.
0: और 1777 की बात करें तो अमेरिका के वर्मेंट शहर में दास प्रथा की समाप्ति भी आज ही की तारीख को हुई थी। स्वदेश निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने वर्ष 1983 में मद्रास के निकट कलपक्कम में आज ही की तारीख से काम करना शुरू किया था। अब याद करते हैं उन व्यक्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जन्मदिन या जयंती है।
1: यस
0: जी,
1: 2 जुलाई 1843, डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, द फादर ऑफ होम्योपैथी, एन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट इन अ जेंटल होलिस्टिक मैनर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी इज दैट अ सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स अ सर्टन डिजीज कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट द सेम डिजीज। दिस इज रेफर्ड टू एज अ लॉ ऑफ सिमिलर्स। एंड आफ्टर स्टडिंग एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर हैनेमन लेफ्ट द प्रैक्टिस इन 1784 एंड डिस्कवर्ड होम्योपैथी इन 1796, developed as an effective treatment system. His medical approach gained popularity across the globe, and today, of course, homeopathy is recognized as a valid medical practice in several countries.
0: आज श्रोताओं पुण्यतिथि है असित भट्टाचार्य की। वे भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। असित भट्टाचार्य शुरुआत से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे और उन्होंने क्रांति दल के सदस्य के रूप में भी सदस्यता ग्रहण की थी। 31 मार्च 1933 को हबीबगंज में एक डकैती हुई जिसमें असित भट्टाचार्य ने महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में माँ भारती के इस महान सपूत को फांसी दी गई।
1: Remembering O.V. Vijayan, author, cartoonist, who was an important figure in modern Malayalam language literature. He was born in Palakkad, Kerala, 1930. Vijayan authored many volumes of short stories, which range from the comic to the philosophical and show a diversity of situations, tones and styles. He translated most of his own works from Malayalam into English. He was also an editorial cartoonist and political observer, worked for news publications including The Statesman and The Hindu. And today is tributes to Ernest Hemingway, American novelist, short story writer, who received a Nobel Prize for Literature in 1954 for the classic Old Man and the Sea, that also earned him the Pulitzer Prize in 1952. His important book, 1925, a collection of stories called In Our Time, was published in New York City. It was originally released in Paris in 1924.
0: श्रोताओं आज जयंती है मोहम्मद अजीज की। वे भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक थे जिन्होंने मुख्यतः बंगाली, उड़िया और हिंदी फिल्मों में गाने गाए। उन्होंने कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में गायक के तौर पर अपना करियर शुरू किया। साल 1984 में वे मुंबई आए। उनकी पहली हिंदी फिल्म अंबर थी जो 1984 में रिलीज हुई। मोहम्मद अजीज ने पहली बार अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के लिए मर्द टांगे वाला गीत गाया था। उन्हें 80 और 90 के दशक में मोहम्मद रफी का उत्तराधिकारी कहा जाता था। अगर हम बात करें उनके प्रसिद्ध गानों की तो आपके आ जाने से, कागज कलम दवात, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, मेरे दो अनमोल रतन, माय नेम इज लखन, तुझे रब ने बनाया होगा और ना जाने कितने ही ऐसे गाने हैं जो आज भी लोगों की जबान पर चढ़े हैं। आइए सुनते हैं उनके कुछ ये सदाबहार नगमे।

0: श्रोतामा जयंती है कालीचरण चरण पाणिग्रह की। वे प्रसिद्ध उड़िया कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और निबंधकार थे। वे अपनी महान कृति मतीरा मनीषा के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें उड़िया साहित्य में योगदान के लिए वर्ष 1971 में पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कालिंदी चरण के काव्य में प्रणय चेतना के मुख्य आधार कुछ इस प्रकार हैं कि प्रेम लज्जा का विषय नहीं, वो युवाओं का अधिकार है। प्रेम शाश्वत है। प्रेमी एक दूसरे के परिपूरक तथा मुक्ति के मार्ग के पथ प्रदर्शक भी हैं। और इसी के संदर्भ में हिंदी का एक दोहा भी है कि इस असार संसार में केवल प्रेम रतन धन सार। क्योंकि प्रेम से जीवन आकर्षक बनता है, इसी प्रेम को पाने के लिए कवि कालिंदी चरण बार बार जन्म लेने की तमन्ना रखते हैं। जिस संसार को लोग दुखमय मानते हैं, वो संसार प्रेम के कारण स्वर्ग बन सकता है।
1: And friends, another famous novelist took birth this day. Hermann Hesse, German writer and poet, was awarded the Nobel Prize for Literature in 1946. He published his first book, A Collection of Poems, in 1899. And today is also the birthday of singer-songwriter actress Michelle Branch. Singing career started in 2000 with two smash albums, Spirit Room and Hotel Paper. She earned a Grammy with Carlos Santana for the Best Pop Collaboration for Vocals.
0: आज ही जयंती है आशालता बावगावंकर की। वे महाराष्ट्र मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी। दूरदर्शन पर उन्होंने अपने कई धारावाहिकों से भी घर घर में लोगों के दिलों में खूब पहचान बनाई। वे गोवा की रहने वाली थी और उन्होंने सबसे पहले कोंकणी और मराठी नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो मुकेश और सुभद्रा को दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
1: स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नाउ समाचार प्रभात द हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में

0: मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिस्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गो पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सीमित रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: में सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अल-अक़वामी मैच बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब सानाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। सरबरा सतह के मुज़ाकरात दोनों फरीकों को इस बात का मौका फराहम करेंगे कि वो अपने तमाम बाहमी तआवुन का जायजा लें और उन्हें मुस्तहकम करें। साथ ही साथ आपसी मफादात के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जापान की वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची का भारत का ये पहला दौरा है। वज़ारत-ए-खारजा ने कहा कि यह दौरा भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को आगे ले जाने में अहम कदम है। हमारे नामानिगार ने इतला दी है कि इक्तसादी सलामती के ताल्लुकात का एक कलीदी सुतून समझा जा रहा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में हुए पहले इक्तिसादी सलामती मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने कलीदी इश्तराक के लिए तरजीह शोबों के तौर पर 5 शोबों की निशानदेही की थी। इन शोबों में सेमीकंडक्टर्स, अहम मादनियात, दवासाजी, साफ तवानाई और इत्तलात व मवासलाती टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन आला सतही सियासी मुसफियात से भारत जापान ताल्लुकात की अक्कासी होती है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू की थी। इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता साल नवंबर में जोहान्सबर्ग में G7 समिट के मौके पर मुलाकात की थी। बाहमी सतह की सालाना सरबरा मीटिंग शराकतदारी के कलीदी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफार्म है। 2025 में सालाना समिट के दौरान जापान भारत के दरमियान इंसानी वसाइल के तबादले और तवाउन के लिए एक एक्शन प्लान शुरू किया था, जिसमें दोनों मुल्कों की तरफ से भारत से जापान के लिए 50,000 हुनरमंद और नीम हुनरमंद अमले समेत 5 साल में 5 लाख अमले का तबादला का मनसूबा है। सालाना समिट के अलावा वजीर खारजा, वजीर दिफा, NSA, खारजा सेक्रेटरी और दीगर सतहों पर भी आला सतह के तबादले और मीटिंगें बाकायदा तौर पर होती रहती हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो जापान की वज़ीर-ए-आज़म सानाए ताकाइची के साथ आज वसीतर उमूर पर तबादले ख्याल के मुंतजिर हैं, जिससे भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को मजीद वसत मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जापान की वज़ीर-ए-आज़म के भारत दौरे पर उनकी मेजबानी करना उनके लिए बायस मसर्रत होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मोहतरमा ताकाइची की मुश्तरक कोशिशों के जरिए भारत और जापान भारत बहरुल काहल और उससे आगे भी अमनो इस्तेकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर शरह सूद 8.25% रखने से मुतालिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। EPF स्कीम 1952 पर मेहनत और रोजगार की वजारत की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद इस शरह सूद का ऐलान किया गया है। EPFO ने अपने इलाकाई और जोनल दफातर को हिदायत दी है कि वो अराकीन के EPF खातों में मंजूर शुदा शरह के मुताबिक सूद की रकम मुंतकिल करे। हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराए ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: ज़राए ने बताया कि वजारत ने व्हाट्सएप की जानिब से किए गए अवामी ऐलान को नोट किया है, जिसके तहत व्हाट्सएप ने भारत समेत आलमी सतह पर यूजर नेम फीचर का मरहलेवार तरीके से आगाज किया है। व्हाट्सएप ने बताया कि यूजर नेम फीचर के फाल हो जाने के बाद पैगाम भेजने वाले का मोबाइल नंबर पहली मरतबा राबता करने वाले शख्स को नजर नहीं आएगा और इख्तियारी

0: करने की इजाफी कंट्रोल के लिए सेट की जा सकती है। जराये ने बताया कि इस बारे में तश्वीश है कि यूजर नेम फीचर के जरिए ऑनलाइन धोखाधही, जालसाजी, डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामलों और जाली शनाख्त जाहिर करने जैसे जराइम में इजाफा हो सकता है। इस बारे में भी तश्वीश है कि यूजर नेम फीचर जाली शनाख्त जाहिर करने और खुद को कोई और जाहिर करने जैसे मामलों को बढ़ावा देगा। जराये ने मजीद बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने मेटा को यह भी हिदायत दी है कि वो इस मामले पर मुशावरत खत्म होने से पहले यूजर नेम फीचर की शुरुआत न करे। नई दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा में फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है जो कौमी राजधानी में हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि नया फ्रेमवर्क आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक मौजूदा इकदामात को जवाबित के वाहिद सेट के तहत यकजा करेगा और हर मौसम सरमा में अलग अलग अहकाम जारी किए बगैर इन जवाबित के बरवक्त निफाज को यकीनी बनाएगा। ये नोटिफिकेशन हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन CAQR के नजरसानीशुदा GRAP रहनुमा खतूत और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को भी यकजा करता है। नए जाब्तों के मुताबिक मजाज पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों को पूरी दिल्ली में साल भर पेट्रोल पंप CNG और LPG स्टेशनों पर ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली से बाहर रजिस्टर BS6 इखराज से कम दर्जे की गाड़ियों का दिल्ली में दाखला ममनू रहेगा। न्यूज डेस्क से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री को अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल की तौसी दे दी है। जनाब मिस्री ने 15 जुलाई 2024 को खारजा सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदा संभाला था। वो जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारत के सफीर रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू हो गई है जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। यात्रियों का पहला जत्था सख्त सिक्योरिटी के दौरान आज सुबह सवेरे जम्मू से रवाना हुआ। यात्रा अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर, रिवायती नुनवन पहलगाम और गंदरबल जिले में 14 किलोमीटर बालतल रास्ते से शुरू हुई। CCTV कैमरे और RFID ट्रैकिंग रास्तों पर कसीर सती सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। यात्री जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH44 पर सफर करेंगे। यात्रा ट्रैफिक के लिए मुगल रोड और धार रोड जैसे मुतबादिल रास्तों पर सख्त ममानियत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों पूरी तरह से सरगर्मी से जारी हैं। तकरीबन 4 लाख यात्रियों ने यात्रा के शुरू होने से पहले ही अपना इंदराज कराया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे ने अगले 2 दिन तक साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने मजीद कहा कि अगले 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। केरलम के ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश के कमजोर होने की तवक्को है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि केरलम के कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के अलावा तमाम जिलों में बारिश की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। कन्नूर और कासरगोड जो कि गुज़िश्ता 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट पर थे, आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है जबकि महकमे ने कोझिकोड जिले के लिए बदस्तूर येलो अलर्ट बरकरार रखा है। CBI ने डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी केस में गुजरात के राजकोट से हरियाणा के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा है कि डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी के तहत एक खातून मोहम्मद शहरी को दो मुख्तलिف बैंक खातों से 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया था। शिकायत के मुताबिक मुतासर खातून को उन नामालूम अफराद की जानिब से धमकी भरे फोन कॉल मौसूल हुए थे जो खुद को सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी अफसरान के तौर पर जाहिर कर रहे थे। फोन करने वाले नामालूम अफराद ने झूठे दावे किए थे कि खातून मोमर शहरी के बैंक खाते को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उस मोमर खातून को गिरफ्तारी और उनकी जायदाद जब्त करने की धमकी दी गई थी। अपने दावों को मोतबर साबित करने के लिए उन्होंने एक फर्जी कुर्की का हुक्म भी भेजा। तहकीकात के दौरान मजाज अदालत से जरूरी अहकाम हासिल करने के बाद मुतासर खातून को 2,65,000 रुपये रिफंड भी किए गए थे। सीबीआई ने अवाम को मशवरा दिया है कि वह धोखाधही पर मबनी सरकारी सरमायाकारी स्कीमों कानून नाफिज करने या रेगुलेटरी एजेंसियों और डिजिटल गिरफ्तारी घपलों के नाम पर की गई फर्जी कॉल समेत साइबर धोखाधही के खिलाफ चौकन्ना रहें। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसकारों के जरिए जारी बिलवास्ता मुजाकिरात कल दोहा में खत्म हो गए। खतर की हुकूमत की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस महीने की 9 तारीख को ईरान के साबिक रहबर आला अली खामेनाई की आखिरी रसूमात के बाद मुजाकिरात जारी रखने से इत्तेफाक किया है। मीडिया के अफराद से बात करते हुए अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने बताया कि दोहा मुजाकिरात खुश असलूबी से जारी हैं। कुछ तकनीकी सतह पर बातचीत पहले से ही जारी है। उन्होंने कहा कि अगले मरहले की बातचीत के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई के बाद मुजाकिरात एक मुस्तहकम मौकफ के साथ किए जा रहे हैं। फीफा आलमी कप में बेल्जियम इजाफी वक्त में सेनेगल को 3-2 से हराने के बाद नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। इस तरह वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में अब बेल्जियम का मुकाबला अमरीका या बोस्निया हर्जेगोविना मैच के फातह से होगा। मर्दों के क्रिकेट में कल रात चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अलावामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 47 गेंदों में 68 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
0: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को खसूसियत के साथ शाये करते हुए लिखा है कि ये एक इनकलाबी कदम है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने नई समत अता करते हुए तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की मजबूत बुनियाद रखी है। जापान की वजीर आजम सिनाई तकेची ने 3 रोजा सरकारी दौरे पर भारत पहुंची। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 16वीं भारत जापान सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की खबर है बैन अलावामी बाजार में गैस की कीमतों में तखफीफ के बाद मुल्क में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमत में कमी। इसी अखबार की एक और खबर है मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मुल्क में गैर कानूनी दरअंदाजी और आबादी के बदलते हुए ढांचे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुजाकिरात करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। और फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा

कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों को गहराई से समझने से गहरा होता है और सच्चा बनता है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी का, मेरे यानी सुरति के साथ। तो करते हैं शुरुआत एक प्यारे से गाने के साथ, फिर करेंगे कुछ और बातें, जानेंगे कुछ खास और प्यार भरे हसीन से गानों का साथ एफएम गोल्ड पर।

यूपी टीईटी 2026 परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने अनारक्षित एग्जाम स्पेशल ट्रेन्स चलाने का फैसला किया है। जानते हैं ये जो ट्रेनें हैं ना, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया जैसे प्रमुख शहरों के बीच चलेंगी। आपको बता दूं कि यूपी टीईटी जो एग्जाम्स हैं वो 2 से 4 जुलाई 2026 तक दो शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे। इसलिए जो ट्रेन्स हैं वो भी 2 से 3 नहीं बल्कि 5 जुलाई तक चलेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए ऐसी स्पेशल ट्रेन बच्चों के लिए या उन एप्लीकेंट्स के लिए बेहद बेस्ट है जो इस टाइम पर भारी भीड़ से बचने के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं और अपने एग्जाम्स के लिए टाइम पर गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, यानी कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये एक बहुत अच्छा एफर्ट है और इसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं हम रेलवे को।

क्या आप जानते हैं ज्यादा टाइम तक एसी में रहने से बॉडी जो है खराब होती है, और खराब ही नहीं होती बल्कि शरीर के जो दर्द हैं, जो पोषिकाएं हैं, वो नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। ये मैं नहीं कह रही बल्कि ये एक अध्ययन में पाया गया है कि अगर आप बहुत लंबे समय से एसी के अंदर ही रहते हैं, एसी में ही सोते हैं, काफ़ी टाइम तक जो है बॉडी जो है एसी को एक्सेप्ट करते करते ऐसी बन जाती है कि कुछ टाइम के बाद आपकी जो नसें हैं वो सिकड़नी शुरू हो जाती है, बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। आपको लगता है कि शायद ये यूं ही हो रहा है, वो यूं ही नहीं होता। एसी के अगर पॉजिटिव पार्ट्स हैं तो साइड इफेक्ट भी हैं। इसलिए कहते हैं ना, हर चीज की अति जो है नुकसानदायक होती है। तो एसी उतना ही इस्तेमाल करें जब बहुत ज्यादा जरूरत लगे, ओवर इस्तेमाल करने से बचिए, बॉडी को प्रोटेक्ट कीजिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खान पान कीजिए, और ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप व्यायाम करें, एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें, और खुद को एसी से या ठंडी चीजों से बचा कर रखें। हालांकि मौसम बहुत गर्म है तो मजबूर हो जाते हैं हम, लेकिन इस मजबूरी में भी बॉडी को इतना ज्यादा एसी के कॉन्टैक्ट में ना लाएं कि बाद में परेशानी का सामना करना पड़े।

और इसी के साथ वक्त हो गया है इजाजत लेने का, इसलिए मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत। आपने कहीं नहीं जाना है, वक्त हो गया है समाचारों का, तो सुनेंगे समाचार एफएम गोल्ड पर और ठीक 9:10 पर म्यूजिकल दिल लगी का ये सफर यूं ही जारी रहेगा रजनी के साथ। सुनते रहिए अपना मनपसंद आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के हस्तांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं को छोड़कर विध्वंस कार्य और धूल उत्पन्न करने वाले खुले निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार रहें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और ये 28 अगस्त तक चलेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह आज बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पल पल जुड़ के दिन बनता है, दिन जुड़ के महीना और महीना जुड़ के साल। देखिए ना, ऐसा लगता है कि अभी तो ये साल शुरू हुआ था और अब 2026 अपना आधा सफर पूरा भी कर चुका है। खैर, दिन महीने साल तो ऐसे ही बीतते जाएंगे, लेकिन आपका साथ हमारे साथ बना रहे, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। म्यूजिकल दिल्लगी आप सुन रहे हैं FM गोल्ड पर मेरे यानी कि रजनी के साथ।

ये गीत आपने सुना फिल्म अवतार से, आवाज थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। वैसे हर बदलते साल के साथ लोगों को स्पोर्ट्स की अहमियत समझ आ रही है। आज स्पोर्ट्स एक बहुत ही चार्मिंग करियर के तौर पे देखा जाता है। खिलाड़ियों के साथ साथ खेलों की जानकारियां लोगों तक पहुंचाना यानी खेल पत्रकारिता भी एक उभरता हुआ करियर है। आज का दिन यानी 2 जुलाई विश्व पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा की गई थी, जिसे मनाने का उद्देश्य खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और लोगों में खेल पत्रकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

खेल भावना से भरा ये गीत आपने सुना फिल्म सीता और गीता से। आवाजें थी आशा भोसले और मन्ना डे की। गर्मियों का मौसम जब आता है तो अपने साथ उमस और परेशानी लेकर आता है, लेकिन साथ ही लाता है एक ऐसी चीज जिसका जो रस है वो आत्मा तक को भिगो देता है। समझ गए ना आप, बात कर रहे हैं हमारे आपके सबके प्यारे आम की। अपने देश में आम की 1500 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं, चाहे वो मलिहाबाद का दशहरी आम हो, लखनऊ का गुलाब खस, आम्रपाली और सफेदा, गोरखपुर का गौरजीत, बनारस का लंगड़ा आम, रत्नागिरी का हापुस, हरदोई का चौसा, बंगाल का फजली आम, बिहार का जंदालू, गुजरात का केसर आम, उत्तर भारत का टपका या दक्षिण भारत का तोतापरी, नीलम और स्वर्णरेखा। नाम अलग स्वाद अलग, लेकिन आम के लिए दीवानगी पूरे भारत में एक जैसी है। और सिर्फ इंसानों में ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी फलों के इस राजा का जो जादू है वो दिखाई देता है। तभी तो हमारे काव्य ग्रंथों में, लोकगीतों में और फिल्मी गीतों में अमुआ के डार पर कोयल का जिक्र तरह तरह से बेहद खूबसूरती से किया गया है। कुछ वैसे ही जैसा कि इस गीत में जिसे आप सुनने वाले हैं, आप आए बहार आई फिल्म से। आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव, एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान।

म्यूजिकल दिल लगी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और ये गीत जो भी आपने सुना ये था फिल्म बैराग से, आवाज थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, सारे शहर में आपसा कोई नहीं। हर कोई चाहता है कि ऐसा ही कुछ उसके बारे में भी कहा जाए, हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत लगे, सबसे अलग नजर आए, और इसके लिए अपनी डाइट पे ध्यान देना सबसे जरूरी है। इन दिनों प्रोटीन डाइट यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन कहते हैं ना कि अति तो हर चीज की नुकसानदेह है, चाहे वो प्रोटीन ही क्यों ना हो। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रोटीन ड्रिंक के बजाय प्रोटीन युक्त आहार लेना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत आपकी उम्र, गतिविधियों और लिंग पर भी निर्भर करती है। लंबे समय तक काफी ज्यादा प्रोटीन लेने से पाचन संबंधी समस्याएं, डिहाइड्रेशन और पोषक तत्वों में असंतुलन हो सकता है। खासकर किडनी के मरीजों को प्रोटीन युक्त आहार लेने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगला गीत आप सुन रहे हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, और आवाज है लता मंगेशकर की।

आज 2 जुलाई है। हर दिन की कोई ना कोई कहानी होती है और आज का दिन भी इसका अपवाद नहीं है। आज ही के दिन 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। 2 जुलाई 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और आज ही के दिन 1950 में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक यूसुफ मेहर अली का निधन हुआ। और 2 जुलाई 1934 को भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक असित भट्टाचार्य को फांसी दे दी गई थी। आज जन्मे व्यक्तियों की बात करें तो अवधी लोक साहित्यकार पद्मश्री

विद्या बिंदु सिंह का जन्म आज ही के दिन हुआ 1945 में। प्रसिद्ध जनकवि आलोक धनवा भी आज ही के दिन 1948 में पैदा हुए। प्रसिद्ध उड़िया साहित्यकार कालिंदी चरण पाणिग्रही का जन्म 1901 में हुआ 2 जुलाई। और आज जयंती है भारत के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज की, जिनका जन्म 1954 में 2 जुलाई को हुआ पश्चिम बंगाल में। उन्होंने एक से बढ़कर एक लोकप्रिय गीत हमें दिए और इन्हीं में से एक लोकप्रिय गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म खुदगर्ज से। आवाज है मोहम्मद अजीज के साथ साधना सरगम की।

जब गर्मी का मौसम शुरू होता है और हर कुछ देर में प्यास सताने लगती है, तब पानी की असली अहमियत समझ में आती है। देश के हर घर तक नल का पीने लायक पानी उपलब्ध हो, इसी उद्देश्य से साल 2019 में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की स्थापना की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब केवल 3.23 करोड़ घरों में नल के पानी की सुविधा उपलब्ध थी और अब लगभग 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित नल का पानी उपलब्ध है, जो कि भारत में बुनियादी ढांचे के सबसे तेज विस्तारों में से एक है। इस मिशन में निर्माण के दौरान लगभग 3 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार सृजित करने की क्षमता है। WHO का मानना है कि देश में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने से डायरिया से होने वाली 4 लाख मौतों को टाला जा सकता है और इससे समय और श्रम की भी बहुत बचत होगी, खासकर महिलाओं के लिए जो कि पानी भर के लाने के लिए कठोर परिश्रम करती हैं। ये मिशन सतत विकास और सामुदायिक भागीदारी दोनों पर समान रूप से बल देता है, जिससे जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल स्रोतों के पुनः प्रयोग जैसे उपाय शामिल हैं।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म शोर से। इसी के साथ म्यूजिकल दिल्लगी से मुझे यानी रजनी को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में आप सुन सकते हैं समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने

0: कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना वर्ष 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर से ये योजना लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल है। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से अपनी हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची इस समय राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। श्री मिश्री ने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के एक मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल 4 250 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कल न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इससे पहले INS सुदर्शनी ने ब्लाटीमोर बंदरगाह पर प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। विदेश मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय मानव संसाधन गतिशीलता मंच कल संपन्न हो गया। इस मंच का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने किया। मंच का उद्देश्य भारतीय पेशेवरों और कामगारों के लिए सुरक्षित और वैध विदेश रोजगार के अवसर बढ़ाना और इस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना था। डॉ जयशंकर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सुरक्षित और कानूनी आवाजाही को बढ़ावा देना और शोषणकारी प्रथाओं को समाप्त करना सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने माइग्रेंट 2.0 पोर्टल की भी सराहना की जो सुरक्षित और व्यवस्थित विदेश रोजगार में मदद कर रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता कतर की राजधानी दोहा में मध्यस्थ की मौजूदगी में हुई। कतर सरकार के अनुसार दोनों पक्षों ने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई

0: के 9 जुलाई को अंतिम संस्कार के बाद चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि दोहा वार्ता ठीक तरह से आगे बढ़ रही है और तकनीकी वार्ता भी चल रही है। उन्होंने कहा कि अगले चरण की वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री ने बताया कि वार्ता में 14 सूत्री सहमति पत्र पर अमल का मुद्दा मुख्य रहा। ईरान और कतर ने ईरान की 6 अरब डॉलर की परिसंपत्ति को मुक्त करने पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य में जारी तनाव पर भी विमर्श हुआ। ईरान ने कहा कि जहाजों को वही मार्ग अपनाना चाहिए जिसे ईरान ने मंजूर किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने दिया जाएगा। ईरान के अधिकारियों के अनुसार अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है और सारी वार्ताएं कतर और पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से हो रही है। विश्व दर्पण के लिए मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार हमले किए। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूस ने मिसाइलें और ड्रोन दागे जिससे रिहायशी इमारतों में आग लग गई और काफी नुकसान पहुंचा। पूरे शहर में हवाई हमले के सायरन बजने लगे और कई लोग मेट्रो स्टेशनों में शरण लेने लगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 3 और नागरिकों के कथित जबरन लापता किए जाने का मामला सामने आया है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पंजगुर और खुजदार जिलों से इन लोगों को हिरासत में लिया जिसके बाद उनका कोई पता नहीं है। मानवाधिकार संगठनों ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए संबंधित लोगों की सुरक्षित और तत्काल रिहाई की मांग की है। दक्षिण अमरीकी देश वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,295 हो गई है। 11,000 से अधिक लोग घायल हैं जबकि लगभग 13,000 लोग बेघर हो गए हैं। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इस त्रासदी पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई और लगातार 17 मैचों में अजय रहने का सिलसिला जारी रखा। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है जहां अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल के लिए बढ़ाया। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता दोहा में मध्यस्थ की मौजूदगी में हुई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे यानी रजनी के साथ, और ये समय है दिल का मेल बॉक्स का, जहां पर आपके संदेश खुलते हैं आपके मेल्स के जरिए या फिर आपके व्हाट्सएप संदेशों के जरिए। कहां पर आपको

उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मिला। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप का। इनके अलावा भोपालगढ़, राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार कह रहे हैं कि आप खुदगर्ज फिल्म का गीत सुनवा दीजिए। अभी यही गीत जिसकी आपने फरमाइश की है, ये थोड़ी देर पहले हमने म्यूजिकल दिल्लगी में सुनवाया है, उम्मीद करते हैं आपने सुना होगा। इसके बाद हमें संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कुशला देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का। और इनके बाद जो संदेश हमें मिला है ये है बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। और इनके बाद संदेश भेजने वाले हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। साथ ही हमें संदेश

है अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी का दाऊद सराय सहारनपुर से। इनके बाद जो मेल हमारे पास आया है ये हमारे पास नई दिल्ली से आया है और भेजने वाले हैं कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु और ये सभी सुनना चाहते हैं कश्मीर की कली फिल्म का गीत। तो आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में कश्मीर की कली का आपकी फरमाइश का गीत।

और अब आगे बढ़ते हुए जो अगला पैगाम दिखाई दे रहा है ये हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चुखंडी बुलंदशहर से और भेजने वाले हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। इनके बाद हमें संदेश भेजा है बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और आशीष राजा ने। साथ ही संदेश हमें मिला है सहारनपुर से शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम का, साथ में सैयद मसरूर भी हैं। इनके बाद हमें पैगाम मिला मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का, जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निहमित आहूजा ने हमें संदेश भेजा है। और इनके बाद आजाद नगर लक्सर से, हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबरी राही, साबिर राही और महराज जहां का संदेश मिला। इनके बाद गंज डुंडवारा से

शम्सुल कमर राही, शाहीना, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान सुन रही हैं। और अगला संदेश जो मिला है हमें वो है सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर गायकवाड़ का पुणे से, और ये सभी गैम्बलर फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए सुनते हैं।

मोहसिन हाशमी प्यार भरा आदाब हमें भेज रहे हैं। इनके बाद जो संदेश मिला है वो है शिरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का। इनके बाद हमें संदेश मिला है सेक्टर 66 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा और जयवीर सिंह का। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने संदेश भेजा। इनके बाद संदेश हमारे पास आया है सिरसिया जिला पूर्वी चंपारण बिहार से और भेजने वाले परवेज आलम है। इनके बाद संदेश हमें मिला संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी का, पिंगावाला चौक गौरिया जालंधर।

से और इनके साथ ही व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष ने संदेश भेजा। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा संदेश भेज रहे हैं और ये सभी सुनना चाहते हैं आप आए बहार आई फिल्म का गीत, तो आइए सुनते हैं।

बागपत उत्तर प्रदेश से संजय धिंगिया, नमन धिंगिया और अपार धिंगिया ने हमें संदेश भेजा। इनके बाद गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमें सुन रहे हैं। गांव नथाना से पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने संदेश भेजा और नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से संदेश भेज रहे हैं। ये संदेश भेज रहे हैं मारहरा दरवाजा एटा से और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान ने संदेश भेजा। और साथ ही हमें संदेश मिला है नई दिल्ली से, भेजने वाले हैं उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव और गरिमा, और ये सुनना चाहते हैं सावन को आने दो फिल्म का टाइटल सॉन्ग जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाजों में।

मथुरा से हमें सुन रहे हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदनी और अंजलि। इनके बाद हमें संदेश मिला है मुल्लांपुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और गोटना जैन का, और ये सुनना चाहते हैं ताजमहल फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइचे भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइचे के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया गया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली लौटकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ के हालात की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने ये भी

0: कहा कि दोनों राज्यों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल भेजा जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सहमेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Japanese Prime Minister Sanae Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan today. Prime Minister, the summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. The central government notified the Employees Provident Fund EPF Scheme 2026, replacing EPF Scheme 1952 as part of the implementation of Code on Social Security 2020. Under the new scheme, the mandatory EPF contribution remains unchanged at 12% of wages each from the employee and employer, while the existing 10% rate will continue to apply to notified establishments by the central government. The new scheme came into effect on 29th of the last month with its publication in the Gazette. The government issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. According to the sources, the Ministry of Electronics and Information

कर्नाटक का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन, जिसे कर्नाटक का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, यही है हमारी आज की तस्वीर की डेस्टिनेशन कुर्ग, जिसका ऑफिशियल नाम है कोडागु। तो चलते हैं इस सुहाने सफर पर जिसमें आपकी हम सफर है रजनी।

छलिया फिल्म से ये गीत आपने सुना, आवाज थी मुकेश की। कुर्ग या कोडागु जिला पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों पर स्थित है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 4102 वर्ग किलोमीटर है। कुर्ग का सबसे पहला उल्लेख संगम काल के ग्रंथों में मिलता है। कोडावा लोग यहाँ के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं, जो कि सदियों से यहाँ रहते थे। 1600 से 1834 के बीच यहाँ हालेरी राजवंश का शासन रहा। उसके बाद यहाँ अंग्रेजों का कब्जा हो गया, जिन्होंने इसे कुर्ग नाम दिया। अगला गीत फिल्म ममता से आपको सुनवाते हैं, आवाज है आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की।

कुर्ग जिले में कई वाटरफॉल्स हैं जो कि इसे भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक बनाते हैं, जिनमें सबसे मशहूर है एबे फॉल्स जो कि कावेरी नदी से निकलता है। यहाँ पर कॉफी के बागान और काली मिर्च की लताओं से लिपटे पेड़ इस झरने को घेरे हुए हैं। इस झरने को पहले जेसी फॉल्स कहा जाता था, जिसे एक ब्रिटिश अधिकारी की बेटी के नाम पर रखा गया, लेकिन अब इसे एबे फॉल्स के नाम से जानते हैं। अनुपमा फिल्म से अगला गीत आशा भोसले की आवाज में आप तक पहुंच रहा है।

दिल्ली एनसीआर में और भारत के कई शहरों में तो इस वक्त बारिश का मौसम है और फिजा जो है वो वाकई भीगी भीगी हो रही है। लेकिन कुर्ग जिले में अगर आप जाएंगे तो आपको जो मौसम है वो भीगता हुआ सही लगेगा, क्योंकि कुर्ग जिले में कई सारे वाटरफॉल्स हैं। यहाँ पर सोमवेर पेट में मलल्ली जलप्रपात काफी फेमस है और इसका जो मुख्य स्रोत है वो कुमार धारा नदी है। इसी तरह इरुप्पु जलप्रपात भी लोगों में काफी लोकप्रिय है। और भी कई छोटे बड़े वाटरफॉल्स यहाँ पर हैं जो कि पर्यटकों में काफी लोकप्रिय हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल तल कावेरी भी कुर्ग जिले में है। यहाँ नदी तट पर भगवान ब्रह्मा को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। लक्ष्मण तीर्थ नदी के तट पर रामेश्वर मंदिर है और माना जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर बाण चलाया था, जिससे कि लक्ष्मण तीर्थ नदी की उत्पत्ति हुई। अगला गीत हमने चुना है आपके लिए फिल्म आदमी और इंसान से। आवाजें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की।

दुर्ग जिले में इंडो सासनिक शैली में बना ओंकारेश्वर मंदिर भी लोगों में बहुत लोकप्रिय है, बहुत आस्था है लोगों में इस मंदिर के लिए। इस मंदिर का निर्माण 1820 में लिंग राजेंद्र द्वितीय ने करवाया था। 17वीं शताब्दी में बना मरकारा जिला भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जिसका निर्माण राजा मुदरज्जा ने करवाया था। इसके प्रवेश द्वार पर हाथियों की दो विशाल प्रतिमाएं हैं। इस किले में अंग्रेजों का बनवाया एक चर्च भी है, जिसे सेंट मार्क चर्च के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस किले में एक जो संग्रहालय है वो भी देखने के लायक है, जिसमें किले के निर्माण से लेकर ब्रिटिश काल तक की जो कलाकृतियां हैं और साथ ही हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया है। पारसमणि से अगला गीत आप तक पहुंच रहा है, आवाजें हैं लता मंगेशकर और कमल बरोट की।

जीने की राह, इस फिल्म से गीत आपने सुना, आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आज तस्वीर में हम आपके लिए लाए हैं तस्वीर कुर्ग जिले की, कर्नाटक का कुर्ग जिला जिसका ऑफिशियल नाम है कोडागु। यहाँ का जो कुशाल नगर क्षेत्र है वहां पर हरंगी नदी पर बना हुआ एक बांध है और ये पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ये जो जिला है ये भारत के सबसे घने जंगलों वाले जिलों में से एक है। हरंगी जलाशय के आसपास 44 प्रजाति के पक्षी देखे जा सकते हैं और इन्हें देखने के लिए सबसे अच्छा समय है मानसून का। इसके आसपास और दुबारे वन क्षेत्र में हिरण और बंदर जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान एक प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है जहां बंगाल टाइगर के अलावा गौर, हाथी, तेंदुआ, चीतल और सांभर हिरणों की बड़ी आबादी रहती है। अगला गीत हमने चुना है आपके लिए जौहर महमूद इन गोवा से, आवाज है मुकेश की।

कर्नाटक की तीसरी सबसे ऊंची चोटी ताडियांडमोल कुर्ग जिले में है, जिसकी ऊंचाई 1748 मीटर है। इस पर्वत की घाटियों में 16 वनों के क्षेत्र हैं, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन पहाड़ियों की तलहटी में स्थित नालकनाद महल एक जाना माना ऐतिहासिक स्थल है। ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जो पहाड़ है, ये स्वर्ग से कम नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक की चौथी बड़ी चोटी पुष्पगिरी भी कुर्ग जिले की सीमा पर है। इस पहाड़ी पर पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य भी देखने लायक है, जो कि 102 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और ये अभयारण्य दुर्लभ और लुप्त प्राय पक्षियों का घर है। इतनी खूबसूरती यहाँ पर फैली है कि समझ ही नहीं आता कहाँ कहाँ देखें। ऐसा ही कुछ कह रहा है ये गीत दिल्ली का ठग फिल्म से, आवाज है आशा भोसले की।

कोडागु जिला यानी कुर्ग भारत का सबसे बड़ा कॉफी और काली मिर्च उत्पादक जिला है। यहाँ उगने वाले संतरे कुर्ग संतरे के नाम से मशहूर हैं। अगर आप यहाँ जाते हैं तो कॉफी, संतरे, काली मिर्च के अलावा चाय, इलायची, अदरक और कोको पाउडर भी खरीद के ला सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो शहद जरूर ट्राई कीजिएगा और शहद खरीद के भी ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो शहद है वो भी बहुत मशहूर है।

लव इन टोक्यो फिल्म से आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज। तस्वीर में आज हम बात कर रहे हैं कुर्ग जिले की। कुर्ग जिले में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, जिनमें काफ़ी फेमस है पांडी करी। ये जो है ये एक नॉन वेजिटेरियन डिश है जो कि काफ़ी तीखी, गाढ़ी और चटपटी होती है। साथ ही अक्की रोटी भी बहुत फेमस है। ये जो रोटी है ये चावल के आटे से बनी होती है, मुलायम कुरकुरी रोटी होती है जिसे पांडी करी या फिर मटन के साथ खाया जाता है। नोलपुट्टू और कोली करी। नोलपुट्टू जो होती है ये एक तरीके के चावल के नूडल्स होते हैं जिसको कि मसालेदार चिकन करी के साथ खाया जाता है, जिसे कोली करी कहते हैं। साथ ही कदमबट्टू भी उबले हुए चावल से बने हुए एक तरीके के पकोड़े होते हैं जो कि किसी भी करी के साथ खाए जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। साथ ही बांस की कोपल की करी यहाँ पर बनाई जाती है जो कि बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही खास व्यंजन है, और ये एक शाकाहारियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया ये है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। वो तो जो मेन चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी हैं, बाकी अगर आप जाते हैं यहाँ पर यानी कि कुर्ग में तो आप हमको बता सकते हैं कि आपने क्या क्या ट्राई किया और कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी।

ये गीत आपने सुना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज में, और फिल्म का नाम था मेरी सूरत तेरी आंखें। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के कूर्ग जिले की, और काफी सैर भी हम आपको करा चुके हैं। यहाँ क्या क्या आप खरीद सकते हैं, क्या क्या आप खा सकते हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पहुंचना कैसे है, ये भी एक जरूरी सवाल है। कूर्ग पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, जो कि यहाँ से लगभग 260 किलोमीटर दूर है। यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मैसूर में है, जहां से कूर्ग के लिए आप आसानी से बस या फिर टैक्सी ले सकते हैं।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में ये गीत था फिल्म ऊंचे लोग से। और अब आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर वक्त है समाचारों का, तो फिलहाल तस्वीर से रजनी को इजाजत दीजिए, फिर किसी दिन मुलाकात होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमापार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब

0: 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. Earlier today, Prime Minister Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. The central government notified the Employees Provident Fund EPF Scheme 2026, replacing EPF Scheme 1952 as part of the implementation of Code on Social Security 2020. Under the new scheme, the mandatory EPF contribution remains unchanged at 12% of wages each from the employee and employer, while the existing 10% rate will continue to apply to notified establishments by the central government. The new scheme came into effect on the 29th of last month with its publication in the Gazette. India has reiterated its firm stance that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said, "A terrorist is a terrorist," and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized

Good. घर आंगन के आज की प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। शो की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के एक प्रेरणादायक विचार से। सर्वोच्च शिक्षा वो है जो केवल हमें जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त सृष्टि के साथ सामंजस्य में जीना भी सिखाती है। सच है, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है दोस्तों, बेहतर इंसान बनना भी है। साथ ही साथ आज हम विश्व खेल पत्रकार दिवस पर उन सभी खेल पत्रकारों को भी नमन करते हैं जो खिलाड़ियों के संग

संघर्ष, उपलब्धियों और प्रेरणादायक जो कहानियां हैं उनको दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक मिनट, अभी मैंने आज का सवाल तो बताया ही नहीं। तो आज का सवाल है, खाली वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं, यानी आपकी हॉबी क्या है। अपना जवाब हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हमें आपके संदेश का इंतजार रहेगा।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म धरती से। और अब हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने उस दौर में इतिहास रचा जब महिलाओं के लिए घर की चौखट पार करना भी आसान नहीं था। यह कहानी है भारत की पहली महिला स्नातक डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली की। कादम्बिनी गांगुली ने उस समय समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी जब लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पढ़ाई के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पहुंचने की कल्पना भी उस समय बहुत कम महिलाएं कर सकती थी। साल 1883 में कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु ने इतिहास रचा। वो भारत की पहले महिला स्नातक बनी। उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ

कलकत्ता से प्राप्त की। उस समय ये उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी बल्कि भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा के नए युग का आरंभ था। उनकी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बेथुने कॉलेज से जुड़ा था जिसे भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय माना जाता था। लेकिन कादम्बिनी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की और भारत की पहली महिला चिकित्सकों में अपना स्थान बनाया। जिस समय महिलाओं का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ही असाधारण माना जाता था, उस समय उन्होंने डॉक्टर बनकर समाज की सोच को बदल दिया। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली केवल एक डॉक्टर नहीं थी बल्कि महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और अधिकारों की सशक्त प्रतीक भी थी। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, सीमाएं हमारे मन में होती है। कादम्बिनी गांगुली की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक साहसिक निर्णय से होती है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो वो केवल अपना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का रास्ता भी रोशन करती है।

अभी हम सुन रहे थे मिन मिनी को फिल्म रोजा से। और दोस्तों, कहते हैं किसी देश की असली पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं बल्कि उस ज्ञान, संस्कृति और आविष्कारों से होती है जो वो पूरी दुनिया को देता है। तो आज हम बात करते हैं उन अनमोल सौगातों की जो भारत ने विश्व को दी और जिसके बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना भी अधूरी लगती है। तो सबसे पहले बात शतरंज की। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग शतरंज खेलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत भारत में चतुरंग नामक खेल के रूप में लगभग 6वीं शताब्दी में हुई थी और यहीं से ये खेल पूरे विश्व तक पहुंचा। और अब बात करते हैं शून्य का। गणित की दुनिया में शून्य का महत्व इतना बड़ा है कि इसके बिना आधुनिक विज्ञान, कंप्यूटर और तकनीक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की एक और अनमोल देन है चिकित्सा विज्ञान। लगभग 2600 वर्ष पहले महान वैद्य सुश्रुत ने सैकड़ों शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन किया है। उन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी जैसी जटिल तकनीकों का भी उल्लेख किया था। और दोस्तों, आज हम सभी शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैम्पू शब्द हिंदी के चंपी यानी सिर की मालिश से निकला है। भारत में सदियों पहले रीठा, शिकाकाई और आंवला जैसे प्राकृतिक पदार्थों से बालों की सफाई और देखभाल की परंपरा रही है। बाद में यही विचार दुनिया भर में शैम्पू के रूप में लोकप्रिय हुआ। कपास और सूती वस्त्रों की कहानी भी कम रोचक नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय 3100 ईसा पूर्व भारत दुनिया के उन शुरुआती क्षेत्रों में था जहां कपास की खेती और उससे वस्त्र बनाने की कला विकसित हुई और डायमंड्स यानी हीरे। हजारों वर्षों तक भारत ही दुनिया में हीरों का एकमात्र ज्ञात स्रोत था। गोलकुंडा की खदानों से निकले अनेक प्रसिद्ध हीरो ने विश्व इतिहास में अलग पहचान बनाई। दुनिया के सबसे चर्चित हीरो में से एक कोहिनूर भी भारत की धरती से ही निकला था। इतना ही नहीं, योग, आयुर्वेद, दशमलव प्रणाली और ध्यान की परंपरा जैसी अनेक अमूल्य धरोहरें भारत ने विश्व को दी है, जिनका प्रभाव आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में दिखाई देता है। तो अगली बार जब आप शतरंज की बिसात बिछाएं, शून्य का प्रयोग करें या शैम्पू से बाल धोएं, तो याद रखिएगा इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं भारत की समृद्ध विरासत से जुड़ी हुई है।

अभी हम सुन रहे थे महेंद्र कपूर को, फिल्म थी पूरब और पश्चिम। और हमारे पास कुछ मेल्स भी आए हैं। नवीन भाटिया जी लिखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं वो रेडियो एफएम गोल्ड भी सुनते हैं। और रश्मि कपूरिया, राधा वंदना, नीता, अंजू श्रृंखला, स्निग्धा वासु, सारिका, ये सब उस खाली समय में पुराने गीतों पर आधारित डम्ब शराज खेलते हैं। सुदर्शन मुखी जी पुस्तक पढ़ते हैं और संगीत सुनते हैं। चरण दास जी भी पुस्तक पढ़ते हैं और संगीत सुनते हैं। और महेश अग्रवाल जी को हमारी जानकारी बहुत पसंद आई और अभी अभी जो गाना सुन रहे थे वो भी बहुत पसंद आई। आप सबका मेल्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, आप लोग खाली वक्त में क्या करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है fmgold।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म परख से। और दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसी अद्भुत संरचना की जो धरती के भीतर उतरती है लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो कोई मंदिर उल्टा खड़ा हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के पाटन जिले में स्थित रानी की वाव की, जिसे भारत की सबसे भव्य और अनोखी बावड़ियों में से एक गिना जाता है। करीब 900 वर्ष पुरानी इस अद्भुत धरोहर का निर्माण 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में करवाया था। वाव यानी सीढ़ीदार कुआं। लेकिन रानी की वाव सिर्फ पानी संग्रह करने का साधन नहीं थी बल्कि यह कला, संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत संगम है। रानी की वाव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी भव्य मंदिर को उल्टा धरती के भीतर उतार दिया गया हो। सामान्य मंदिरों के शिखर आकाश की ओर उठते हैं जबकि यहाँ सीढ़ियां और मंडप धरती की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं। यही कारण है कि इसे अक्सर उल्टा मंदिर भी कहा जाता है। 7 स्तरों वाली इस वाव की दीवारों पर 500 से अधिक प्रमुख और लगभग 1000 से भी अधिक छोटी बड़ी मूर्तियां उकेरी गई हैं। इनमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, अप्सराएं और भारतीय जीवन के अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं। पत्थरों पर की गई यह बारीक नक्काशी आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। रानी की वाव की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए वर्ष 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह सम्मान न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक विरासत के गौरव का प्रतीक है। और इसी तस्वीर को भारत के 100 रुपए के नोट पर भी छापा गया है और यह बहुत कम स्मारकों को मिला ऐसा सम्मान है जो इसकी विशिष्टता को और भी बढ़ा देती है। सदियों तक सरस्वती नदी की बाढ़ और मिट्टी में दबे रहने के बावजूद यह अद्भुत संरचना सुरक्षित रही। जब इसे पुनः खोजा गया तब दुनिया ने भारतीय वास्तुकला के इस अनमोल रत्न को फिर से देखा। रानी की वाव हमें बताती है कि भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग केवल उपयोगिता तक सीमित नहीं थी बल्कि उसमें सौंदर्य, आध्यात्मिकता और विज्ञान का अद्भुत मेल भी था। यह ऐसी धरोहर है जिसे देखकर हर भारतीय गर्व महसूस करता है। तो अगली बार जब आप गुजरात जाएं तो रानी की वाव को अपनी यात्रा सूची में अवश्य शामिल करें क्योंकि यह केवल एक बावड़ी नहीं है।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म जॉनी मेरा नाम से। और दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की दुनिया का सबसे कीमती खजाना क्या है, सोना, हीरा या पैसा? नहीं, आज का सबसे बड़ा खजाना है डेटा। आपकी तस्वीरें, बैंक अकाउंट, ईमेल, ऑफिस की फाइलें, यहां तक कि किसी देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी। और इस खजाने की रक्षा करता कौन है? एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। जिस तरह पुराने समय में किलों की रक्षा के लिए सैनिक होते थे, उसी तरह आज की डिजिटल दुनिया के प्रहरी हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट।

इनका काम सिर्फ हैकर्स को रोकना नहीं होता है दोस्तों, बल्कि किसी भी साइबर अटैक से पहले कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें ठीक करना भी होता है। यानी ये डिजिटल जासूस भी हैं और सुरक्षा कवच भी। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में हर 39 सेकंड में एक साइबर अटैक होने की बात कही जाती है। ऐसे में हर बैंक, हॉस्पिटल्स, एयरलाइन, ई कॉमर्स कंपनी, सरकारी विभाग और यहां तक कि सोशल मीडिया कंपनीज को भी साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। अगर आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, लॉजिकल थिंकिंग और पहेलियां सुलझाना पसंद है तो ये करियर आपके लिए है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए करियर विकल्पों में से एक है। अच्छे स्किल्स होने पर शानदार सैलरी, वर्क फ्रॉम होम के अवसर और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने का मौका भी मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में लोग आपको सिर्फ आईटी प्रोफेशनल नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया का रक्षक भी कहें, तो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एक ऐसा करियर है जिस पर आज से ही नजर डालना शुरू कीजिए। याद रखिए, भविष्य उसी का है जो सिर्फ तकनीक का उपयोग करना नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा करना भी जानता है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण को, फिल्म थी बड़े दिल वाले। और कभी कभी दुनिया हमें हमारे कपड़ों से परखने लगती है, कौन क्या पहनता है, कैसे दिखती है, उसका रंग कैसा है, वो किस पृष्ठभूमि से आता है। लेकिन सच तो ये है कि इंसान की असली पहचान उसके सपनों, उसकी मेहनत और उसके व्यक्तित्व से बनती है। जरा सोचिए, एक साधारण सी साड़ी जो ना बहुत महंगी थी, ना उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे, ना किसी फैशन डिजाइनर की कल्पना थी, फिर भी वो आज वो साड़ी दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में, वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में सहेज कर रखी गई। आखिर क्यों? क्योंकि उस साड़ी को पहना था डॉक्टर नंदिनी हरिनाथ ने, इसरो के ऐतिहासिक मंगलयान मिशन के डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर ने, उसी दिन जब भारत का मंगलयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर मंगल की ओर बढ़ा था, डॉक्टर नंदिनी ने वही साड़ी पहनी थी। दुनिया उन्हें भारत की रॉकेट वुमन कहता है। तो जरा ठहर कर सोचिए, संग्रहालय में जगह उस साड़ी को नहीं मिली, बल्कि उस उपलब्धि को मिली, उस जुनून को मिली, उस स्त्री के साहस और प्रतिभा को मिली जिसने दुनिया को बता दिया कि सपनों का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को कभी कभी दूसरों की नजरों से आंकने लगती है, याद रखिए, आपकी त्वचा का रंग आपकी क्षमता तय नहीं करता, आपके कपड़े आपकी बुद्धिमत्ता की सीमा नहीं बताते, आपका शहर आपकी भाषा या आपका पारिवारिक परिवेश आपके भविष्य का फैसला नहीं करते हैं। आप जो पहनना चाहिए उसे गर्व से पहनिए, अपनी संस्कृति को अपनाइए, अपनी पहचान को संजोइए, लेकिन सबसे बड़ी ताकत अपने ज्ञान, अपने कर्म और अपने व्यक्तित्व को बनाइए, क्योंकि दुनिया अंततः ये याद नहीं रखती कि आपने क्या पहना था, दुनिया ये याद रखती है कि आपने क्या कर दिखाया। और हाँ, अगर कभी कोई आपको आपके पहनावे से आंकने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर बस इतना कह दीजिए कि मेरे कपड़े मेरी पसंद है, लेकिन मेरी पहचान मेरी मेहनत है। उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से तय होती है, और जब हौसले बुलंद हो तो आसमान भी सीमा नहीं रहता।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म घर से, और हम बात करते हैं अब हमारी परंपराओं के पीछे छिपे विज्ञान और संस्कृति की। तो केले के पत्ते पर खाते हुए आपने अक्सर देखा होगा, खुद भी खाया होगा और उसमें हम खाना पकाते भी हैं, लेकिन क्यों? भारत के कई राज्यों जैसे दक्षिण भारत, ओडिशा, बंगाल और पूर्वोत्तर में केले के पत्ते पर भोजन परोसने की परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन ये सिर्फ परंपरा नहीं है, इसके पीछे कई रोचक कारण भी हैं। जब गर्म भोजन केले के पत्ते पर परोसा जाता है तो पत्ते की प्राकृतिक परत से हल्की सी सुगंध भोजन में घुल जाती है, जिससे स्वाद और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि इडली, पातोड़ी या मछली जैसी कई चीजें केले के पत्ते में लपेट कर पकाई जाती है। और केले के पत्तों में पॉलीफेनॉल नामक एक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। माना जाता है कि गर्म भोजन के संपर्क में आने पर इनका कुछ अंश भोजन तक पहुंच जाता है। और महत्वपूर्ण बात, केले का पत्ता पूरी तरह से प्राकृतिक है, बायोडिग्रेडेबल है, न धोने की चिंता, न प्लास्टिक का कचरा, यानी पर्यावरण के प्रति भी एक जिम्मेदार कदम। और शायद यही हमारी भारतीय परंपराओं की खूबसूरती है, जहां स्वाद, स्वास्थ्य और प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो अगली बार जब आपको केले के पत्ते पर भोजन करने का अवसर मिले तो उसे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव समझिए।

जी हाँ, हम भी चले। अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले को फिल्म पड़ोसन से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम को और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे।

0: ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takeuchi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Earlier, Prime Minister Takeuchi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan today. Prime Minister Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takeuchi to India. The External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, P. Harish, said, "A terrorist is a terrorist," and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
1: 7 migrant workers have lost their lives after a big chunk of rock slid and fell on them in Bengaluru South Taluk today. The tragedy struck at the Kaveri Crusher Stone Quarry in Madhapatna village. Those injured were evacuated from the accident site and are currently under medical treatment. The police have registered a case and the hunt is on for the owners of the quarry. The Delhi Police Special Cell has arrested 4 accused in a crackdown on ISI-sponsored interstate terror and arms network. Police said the accused were planning to carry out a terror activity in the national capital on instructions of ISI handler Shahzad Bhatti and his associates. During the operation, 2 foreign-made pistols, 9 live cartridges and 5 mobile phones were recovered. जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में एक ऐसी आवाज आप सुनने वाले हैं जो कि याद दिलाती है 80 और 90 के दशक के उस जमाने की, जब कैसेट्स चला करती थी, क्रेज था इनके गानों का। हर शादी पार्टी किसी भी अच्छे से प्रोग्राम में इनके गाने जरूर सुनाए जाते थे। दोस्तों, याद हैं आपको मोहम्मद अजीज? बिल्कुल याद होंगे।

निगाहें फिल्म का ये गाना मोहम्मद अजीज की आवाज में आपने सुना। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने को तैयार किया था। दोस्तों वैसे सावन अभी नहीं आया है, लेकिन सावन की आहट आ रही है। गाने बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ऐसे बारिश वाले मौसम भी, बारिश का है। और दोस्तों बातें हो रही हैं मोहम्मद अजीज की। अगर आपने अभी अभी रेडियो ऑन किया है तो ध्यान से सुनिएगा, आज मोहम्मद अजीज के सारे गाने मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बहुत सारे गाने जितने हो सकेंगे इस प्रोग्राम में पूरे के पूरे सुनाऊंगी। जी हाँ, मोहम्मद अजीज को सुरों का सरताज भी कहा जाता है। बताया जाता है कि वे सातवें सुर में भी गा सकते थे, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अजीज पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते थे और वहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। बचपन से ही अजीज को गाने का शौक था। वो मोहम्मद रफी के बहुत बड़े फैन थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। ये भी बहुत ही चौंकाने वाला सच है कि मोहम्मद अजीज ने मोहम्मद रफी को सुन सुनकर ही गाना सीखा और उन्होंने गायकी में कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं ली थी। और ये भी कमाल ही रहा कि वो दौर भी आया दोस्तों, जी हाँ वो दौर भी आया जब मोहम्मद अजीज को मोहम्मद रफी का उत्तराधिकारी तक कहा जाने लगा। लेकिन अजीज हमेशा कहा करते थे कि मैं मोहम्मद रफी जैसा अगर 5% भी गा सका तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी।

तो उम्मीद करती हूँ कि आप रेडियो से बिल्कुल भी अलग नहीं हटने वाले हैं आज. जी हाँ, रेडियो के बिल्कुल नज़दीक बैठ जाइए और ज़्यादा, क्योंकि और ज़्यादा अच्छे गाने और ज़्यादा खूबसूरत गाने मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ में आपको सुनाने वाली हूँ. वैसे इस गाने में मोहम्मद अज़ीज़ के साथ साधना सरगम को आपने सुना. फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया. दोस्तों, मोहम्मद अज़ीज़ का जन्म 2 जुलाई 1954 को कोलकाता में हुआ था. उनका पूरा नाम सईद मोहम्मद अज़ीज़ उन नबी था. उनका एक नाम मुन्ना भी था. मुन्ना किस लिए बताती हूँ, इसके पीछे एक कहानी है. दरअसल अज़ीज़ बचपन में रेडियो बहुत ज़्यादा सुना करते थे और उनकी जो रेडियो थी ना, वो एक ख़ास ब्रांड की थी जिस पर बच्चे की तस्वीर हुआ करती थी. और बच्चे को आप तो जानते हैं कि हम लोग जो हिंदी भाषी लोग हैं, हम मुन्ना भी कहते हैं. तो परिवार ने अज़ीज़ को भी मुन्ना नाम दे दिया. उनके गानों में भी अक्सर जब क्रेडिट दिया जाता है तो मुन्ना नाम भी दिया जाता रहा है. दोस्तों, मोहम्मद अज़ीज़ के करियर की जो शुरुआत है वो एक रेस्टोरेंट में हुई थी. वो वहाँ पर गाया करते थे और वहाँ तमाम फिल्मों से जुड़े लोग भी आया करते थे. ऐसी एक मुलाकात उनकी हुई बंगाली फिल्म निर्देशक से और वो वहाँ खाना खाने आए थे. उन्होंने अज़ीज़ को गाते हुए सुना और उन्हें बहुत अच्छा लगा. फिर उन्होंने अज़ीज़ को तुरंत ही अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया.

अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गाना फिल्म बीवी हो तो ऐसी से आपने सुना था दोस्तों, और आज हम बातें कर रहे हैं मोहम्मद अजीज की। वैसे आपके दिमाग में मोहम्मद अजीज का कौन सा गाना आ रहा है बताइए, जरा सोचिए। मैं आपको एक ऐसा गाना सुनाने वाली हूँ जो 99.9% लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। जी हाँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात पर, क्योंकि ये जो गाना है ना, ये आज तक भी इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि जब भी रेडियो पर आता है तो लोग इसे ज़रूर सुनते हैं। फिल्म का नाम है, नाम लेते ही आपको याद आ जाएगा, आदमी खिलौना है। हाँ हाँ, वही गाना है जो आप सोच रहे हैं।

मैंने कहा था ना कि एक ऐसा गाना आपको सुनाने वाली हूँ जो लगभग सभी को बहुत अच्छा लगने वाला है। जब मोहम्मद अजीज की बात आती है तो इस गाने का नाम जरूर लिया जाता है। वैसे एक गाना तो मैं एक और सुनाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी और बातें करते हैं दोस्तों। मोहम्मद अजीज ने गोविंदा, ऋषि कपूर, सनी देओल, अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर आदि अभिनेताओं को अपनी आवाजें दी। कई गाने तो ऐसे हैं जो आज भी बहुत ज्यादा सुने जाते हैं। अब जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो गाना खास तौर से, जी हाँ, खास तौर से शादियों पार्टियों में जरूर जरूर चलाया जाता है, क्योंकि इस गाने पर ऐसा, मतलब ये गाना है, ऐसा माहौल बन जाता है कि अगर आपको नाचना पसंद ना हो फिर भी आप नाचने लगते हैं, थिरकने लगते हैं। दोस्तों फिल्म का नाम लेते हैं पहले, खुदगर्ज फिल्म का ये गाना है और ये फिल्माया गया है गोविंदा और नीलम पर। गाना पहचान गए?

खुदगर्ज फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में। दोस्तों, मोहम्मद अजीज अपने नाम की तरह हर दिल अजीज रहे। उस दौर के करीब करीब हर स्टार के लिए उन्होंने ऐसे गाने गाए जो उनकी पहचान ही बन गए, जैसे कि अमिताभ बच्चन का गाना खुदा गवाह और मर्द तांगे वाला, सनी देओल का सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, अनिल कपूर का माय नेम इज लखन, ऋषि कपूर पर फिल्माया गया आजकल याद कुछ और रहता नहीं, दिलीप साहब पर जो एक गाना फिल्माया गया था ए वतन तेरे लिए। इन गानों को जब भी हम सुनते हैं हमें याद आता है अच्छा इस एक्टर पर फिल्माया गया है। इतनी जबरदस्त पहचान थी उनके गानों की। अपने पूरे करियर में मोहम्मद अजीज ने करीब 20,000 गाने गाए जिनमें हर तरह के गीत शामिल हैं, सूफी, रोमांटिक और भजन भी उन्होंने गाए हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा उड़िया और बंगाली भाषाओं के गानों को भी आवाज दी। एक फिल्म में वो नजर भी आए हैं, शायद अगर आप ओडिया भाषी हैं तो आपको याद होगा, जागा हतारे पाथा में उन्होंने गाना भी गाया और दिखाई भी दिए हैं पर्दे पर। तो दोस्तों, एक और गाना हो जाए उनका।

0: दोस्तों पता तो टाइम का नहीं चलता है। जी हाँ, वक्त हो चला है मेरे जाने का। अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में ये आखिरी गाना मैंने आपको सुना दिया है सूर्य फिल्म से। आज मोहम्मद अजीज के जन्मदिन पर उन्हें हमने याद किया। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। बने रहे आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब सनाई तकाइची से सालाना सरबरा बातचीत की है। भारत और जापान ने मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें इक्तिसादी, सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फरहमी, अद्वियात और एआई के शोबे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज़ की एक मरतबा फिर हिमायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है। जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली में फैल गया है, यह शुमाली और मगरबी रियासतों की जानिब मजीद आगे बढ़ रहा है। और फीफा आलमी कप में अमरीका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। बेल्जियम सेनेगल को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। भारत और जापान ने आज दवासाजी, मसनूई जहानत, एआई, इक्तिसादियात और तवानाई की सिक्योरिटी समेत कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान के वज़ीर आज़म सनाई ताकाइची के साथ सालाना छोटी मीटिंग की। इस मौके पर फरीकैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन और इश्तराक को मुस्तहकम करने पर बातचीत की और उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के बाद एक मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आज के दौर में भरोसा और एतमाद सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत और जापान का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में होता है और दोनों मुल्क आज़ादाना और खुले भारत बैरुल को तरजीह देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्क इक्तिसादी और तवानाई की सिक्योरिटी की अहमियत को बखूबी समझते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में साझेदारी भारत और जापान के दरमियान तआवुन का सबसे ज्यादा अहम सुतून होगा।
2: कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
1: इससे कबल आज जापान के वज़ीर आज़म ताकाइची राष्ट्रपति भवन के अहाते में रस्मी इस्तकबालिया दिया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। जापान के वज़ीर आज़म भारत के 3 रोजा दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची हैं। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा है। वजारत खारजा ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को मजीद आगे ले जाने के सिलसिले में एक अहम कदम है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि भारत और जापान के ताल्लुक मुसलसल आला सतह के सियासी रबतों पर मबनी हैं। अभी हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापान के वज़ीर आज़म

0: आजम से बातचीत की थी। गुज़श्ता बरस नवंबर में जोहान्सबर्ग में G20 समिट के मौके पर भी दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी। बैनुल अक्वामी दहशतगर्दी के बारे में एक जामे कन्वेंशन बनाने की भारत की तवील अरसे से चली आ रही तजवीज़ की अक्वामी मुत्तहिदा जनरल असेंबली में एक बार फिर हिमायत की गई है। दहशतगर्दी से निपटने की हिकमत अमली से मुतालिक अक्वामी मुत्तहिदा की नवीं जायजा मीटिंग के दौरान भारत की तजवीज़ को 140 मुल्कों की हिमायत से मंजूर किया गया, जिसमें मेंबर मुल्कों पर जोर दिया गया है कि कन्वेंशन को कतई शक्ल देने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। कन्वेंशन की तजवीज़ भारत ने 30 साल पहले पेश की थी। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि कानूनी खदुखाल पर आलमी सतह पर इत्तफाक राय न होने की वजह से दुनिया में दहशतगर्दी की रोकथाम की कोशिशें कमजोर हुई हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निपटते वक्त दोहरा मैार नहीं अपनाया जाना चाहिए। भारत ने इस सिलसिले में अपने पुख्ता मौकफ को दोहराया है कि किसी भी सूरत हाल में दहशतगर्दी को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता और इस लानत को ख़त्म करने के लिए उसने जामे आलमी कार्रवाई पर जोर दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक आलमी हिकमत अमली के नवे जायजे को इख्तियार किए जाने के दौरान अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करते हुए UN में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि दहशतगर्द दहशतगर्द होता है और इस बात पर जोर दिया कि झूठे जवाज़ या सियासी मसलहत पसंदी की आड़ में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें कमजोर नहीं हो सकती।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फॉर डिकेड्स। आवर पीपल हैव पेड अ टेरिबल प्राइस एंड दिस एक्सपीरियंस हैज शेप्ड इंडियाज जीरो टॉलरेंस अप्रोच। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्रीवांस, पॉलिटिकल कॉज और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन, टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस मस्ट बी कंडेम्ड अनइक्विवोकली। इंडिया हैज वर्क टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल फोकस ऑन टेरर फाइनेंसिंग। वी हैव सपोर्टेड कैपेसिटी बिल्डिंग, साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स। इंडिया बिलीव्स दैट काउंटर टेररिज्म शुड नॉट बी हॉलोड आउट बाय फॉल्स इक्विवेलेंसेस ऑफ पॉलिटिसाइज्ड नैरेटिव्स।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बुनियादी कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू होगी, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात के कुछ मजीद हिस्सों, मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ गया है। इसी दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से लोगों को राहत मिली है और रियासत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई है। मानसून के रियासत में पहुंचने के बाद ऐसा हुआ है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: जुनूब मगरबी मानसून बाज़ाब्ता तौर पर मंगल को उत्तर प्रदेश पहुंच गया और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता 24 घंटे में औसत से शदीद बारिश दर्ज की गई, जिससे गर्मी के तवील सिलसिले से लोगों को राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत शदीद बारिश हुई, जिससे कुछ इलाकों में मामूलात जिंदगी मुतासर हुए, ताहम दिन का दर्जे हरारत नीचे आ गया। किसानों के लिए बारिश एक बड़ी राहत साबित हुई है, क्योंकि धान की बुआई मुकर्रर वक्त से पहले ही पीछे चल रही है। IMD ने आज कई अजला में शदीद बारिश की पेशगोई की है और कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने के लिए मौसम साजगार है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराये ने बताया कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची में लोक भवन में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी से मुतालिक फॉर्म को भरने और दस्तखत करने के बाद मुतालिका BLO के सुपुर्द किया। इस मौके पर आला चुनाव अफसर के रवि कुमार, रांची के जिला चुनाव अफसर मंजुनाथ भजंतरी और दूसरे चुनाव अहलकार भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत ने समाजी सिक्योरिटी 2020 पर कोर्ट के निफाज के हिस्से के तौर पर EPF स्कीम 1952 की जगह मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड EPF स्कीम 2026 को नोटिफाई किया है। नई स्कीम के तहत EPF की लाजमी हिस्सेदारी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। फीफा आलमी कप में नॉकआउट मरहले में एक्स्ट्रा टाइम के बाद शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए बेल्जियम सेनेगल को 2-3 गोल से हरा

0: कर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। दूसरी जानिब मुआविन मेजबान अमरीका ने 2002 के बाद नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की। उसने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराया और प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब सनाई तकाईची से सालाना सरबरा बातचीत की है। भारत और जापान ने मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें इक्तिसादी, सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फराहमी, अद्वियात और एआई के शोबे शामिल हैं। अक्वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज की एक मरतबा फिर हिमायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है। जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली में फैल गया है, यह शुमाली और मगरबी रियासतों की जानिब मजीद आगे बढ़ रहा है। और फीफा आलमी कप में अमरीका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Shri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enters round of 16 in extra time victory over Senegal. India and Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defence and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time and the India-Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: He stressed that both nations understand the importance of economic security and energy security. He added that technology partnership will be the most important pillar of India-Japan cooperation. Mr. Modi said to realize this vision, India and Japan have issued a joint statement in the field of AI.
2: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
1: The Prime Minister also informed that in the field of defense today, both nations have signed an agreement on the first co-development

0: Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 402 points at 77,325, while the Nifty advanced 129 points to 24,135 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for Comprehensive Convention on International Terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enter round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का

0: राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावली पल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण

0: अर्पण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने

आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है उन्नत किसान। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ हैं अमित।
1: बिल्कुल नीरा, कार्यक्रम जो उन्नत किसान होता है हमारा, तो उन्नत किसान में हमारे सभी किसान भाई बहनों को इंतजार होता है कि भाई किस विषय पे बात होगी और कौन कौन से आज विशेषज्ञ उपस्थित होंगे, जिनसे बातचीत होगी, क्या वार्ता रहेगी। लेकिन मौसम को देख करके कहीं ना कहीं किसानों के मन में भी एक खुशी है, एक उत्साह है कि जैसा भाई मानसून की कह रहे हैं, अभी हम समाचार के माध्यम से भी आकाशवाणी पर सुन रहे थे कि मानसून ने दस्तक दी है, तो खरीफ की फसल में बोई जाने वाली दलहनी और तिलहनी फसलों को लेकर के किसान बहुत उत्सुक हैं।
0: बिल्कुल, और आपने कहीं ना कहीं ये बता ही दिया है कि आज हम जो टॉपिक लेकर, यानी जो विषय आज का है, वो क्या होने वाला है। क्योंकि अमित, हम जहां तक कोशिश करते हैं कि वही विषय चुने जो उपयोगी हो और जानकारी जिसकी बहुत जरूरत हो, जिस जानकारी की। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो फोन इन कार्यक्रम है, यानी कि जो भी हमारा आज का विषय होगा, जैसे आपने थोड़ा सा हिंट तो दे ही दिया है कि आज का विषय क्या होने वाला है, तो उस पर या उससे जुड़ी हुई कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे एक्सपर्ट भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन टेलीफोन नंबर आपको बता देते हैं उससे पहले, अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, और टेलीफोन नंबर है 2342108183 पर आप डायल कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल नीरा, जैसे बात हुई कि अभी भाई मौसम सुहाना है, बारिश ने दस्तक दी है, किसानों को बहुत ही इंतजार रहता है और प्रत्येक व्यक्ति को इंतजार रहता है, लेकिन किसान विशेष इसमें हो जाते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम कितने ही सामर्थ्य, कितने हो जाएं, आगे बढ़ जाएं, लेकिन फिर भी किसान और बारिश दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मौसम में आज भी हमारी कृषि कहीं ना कहीं बारिश पर निर्भर होती है। तो डॉक्टर समरथ लाल मीना आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं और जानकारी देंगे खरीफ में दलहनी और तिलहनी फसलों की बिजाई इसके लिए। और भाई ये भी आपको बता दें कि डॉक्टर समरथ लाल मीना वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
2: धन्यवाद।
0: जी, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे यही जानना चाहते हैं कि खरीफ में बोई जाने वाली दलहनी और तिलहनी फसलें कौन कौन सी हैं।
2: बिल्कुल, देखो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मौसम खरीफ का शुरू हो चुका है
1: जी,
2: और जैसे ही हमारे देश में जब मानसून आ जाता है तो हम लोग खरीफ की जो फसलें हैं उनकी बोने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो खरीफ में बोई जाने वाली जो मुख्य जो हमारी फसलें हैं उनमें दलहनी और तिलहनी फसलें जो हैं, उनमें जैसे मैं बात करूं अरहर की, अरहर दलहनी फसल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा हमारा मूंग हो गया है, उड़द हो गया है, और काउपी जिसे बोलते हैं लोबिया
0: जी।
2: ये तीन चारों जो फसलें हैं ये दलहनी फसलें हैं जो कि मुख्य रूप से खरीफ में बोई जाती हैं। और दूसरी तरफ जो बात करें हम तिलहनी फसलों की, तिलहनी फसलों में हमारा जो मूंगफली है, सोयाबीन है और तिल है, ये मुख्य रूप से बोई जाने वाली हमारी तिलहनी फसलें हैं, और इनको किसान भाई बहुत बड़े पैमाने पर बोते हैं। और ये सभी जो फसलें हैं ये पूरी तरह से वर्षा आधारित क्षेत्रों में बोई जाती हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे वर्षा आधारित क्षेत्रों में बोई जाती है तो ये बात चली रही है कि भाई वर्षा आ रही है।

0: कि कौन कौन सी किस्में हैं जो ईजाद हो रही हैं, जो इस जलवायु परिवर्तन में हमारे किसानों को कहीं ना कहीं तसल्ली देंगे कि यदि आप इन किस्मों को लगाएंगे उत्पादन भी अच्छा होगा, कीटनाशी खरपतवार नाशी का प्रयोग कम से कम करना होगा, इसके विषय में जरूर जानकारी दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि अगर आपको पैदावार बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको उन्नत किस्मों का बीज का चयन करना बहुत जरूरी है। और मैं बात करूं खरीफ की, तो खरीफ में जो हमारी मुख्य दाल है
0: जी,
1: वो है पिजन पी, यानी कि उसको हम बोलते हैं अरहर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी फसल है। और जैसे रबी में हमारा चना होता है, ऐसे खरीफ में हमारे लिए अरहर बहुत महत्वपूर्ण है, और अरहर का जो एरिया वो भी काफी बड़े पैमाने पे हमारे किसान बोते हैं। तो देखिए, हर साल हम लोग बहुत सारी फसलें, बहुत सारी किस्में निकालते हैं, उनका विकास करते हैं। तो मैं मुख्य रूप से बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अरहर है ये क्या है कि लॉन्ग ड्यूरेशन वाली क्रॉप है, लेकिन जब किसान भाई अगर दो फसल लेना चाहते हैं एक साल के अंदर, तो हमको एक शॉर्ट ड्यूरेशन की उन्नत किस्म लेनी पड़ती है।
0: बिल्कुल,
1: तो उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने काफी काम किया है इसके ऊपर, और कुछ इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब किस्में इसमें हमने विकसित की हैं। उनमें हमारा जैसे पूसा अरहर 16 है, उसको आप बोल सकते हैं, जो कि 120 दिन के अंदर पक जाती है। ऐसे ही हमारा पूसा 18 भी है, पूसा अरहर 18 भी है, उसको भी आप बोल सकते हैं, 17 भी है, तो इनको आप बोल सकते हैं। और भी बहुत सारी हैं जो हम इनको चयन कर सकते हैं। तो लेकिन मैं किसान भाई को यही कहूँगा कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन की जो हमारी जो फसल की जो किस्म की फसल की जो किस्म है वो पूसा अरहर 16 है।
0: यानी कि अगर अरहर की फसल चुनते हैं दलहनी में, तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पूसा अरहर 16, 17, 18,
1: उनको आप यूज कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे क्या है कि आपका जो आने वाला जो रबी सीजन है
0: जी,
1: उसमें जो बोई जाने वाली फसल है वो प्रभावित ना हो।
0: बिल्कुल, हाँ, वो पछेती नहीं होगी, उसको हम समय से बो सकते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी। और जहां तक बात करूं मैं आपको तिलहनी फसलों की, तिलहनी फसलों में तो बहुत सारी जो वैरायटियां हैं ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, और वो ऑलरेडी सिस्टम में फिट हैं। जैसे सोयाबीन है, उसकी ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं आजकल, तो सोयाबीन की जो इतनी वैरायटी है, जैसे मध्य प्रदेश में जो बोई जाने वाली है वहाँ की लोकल वैरायटी किसान भाई यूज करते हैं, तो जिस एरिया में जो किस्म फिट है उसको ऑलरेडी हमने रिकमेंडेड की हुई है
0: जी।
1: और ऐसे ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट में हमारा जो गुजरात का जो एरिया है वहाँ भी बहुत सारी मूंगफली बोई जाती है, और बहुत सारी मतलब किस्में हमने विकसित की है। तो उसमें किसान भाई चाहे तो जो हमारा ग्राउंडनट का जो इंस्टीट्यूट है जूनागढ़ में, वहां से संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, वहां से भी अच्छी अच्छी आप किस्म ले सकते हैं, उनका बीज भी आपको उपलब्ध कराया जा सकता है
0: जी।
2: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि अरहर है, मूंग है, उड़द है, लोबिया है, और वहीं अगर हम तिलहनी फसलों की बात करते हैं, सोयाबीन है, तिल है, मूंगफली है, लेकिन अगर हम इनका कंपैरिजन करें, है ना, तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो कौन सी तिलहनी या दलहनी फसल ऐसी है जो इस मौसम में सबसे अधिक मुनाफा देने का मतलब उसमें वो रहता है?
1: देखिए, मुनाफा तो सभी देती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भारत सरकार ने ऑलरेडी MSP निकाल रखी है, और हर साल MSP में बढ़ोतरी करती है सरकार
2: जी।
1: तो ये तो इंसेंटिव हुआ, तो किसान भाइयों को घाटा ना हो, इसलिए भारत सरकार ने भी सोचा है कि इनको कम से कम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिलने चाहिए। तो जैसे मूंग है उसकी भी अच्छी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, काउपी है, ये आपका जो उड़द है और आपका जो ये अरहर है, सबकी MSP दी हुई है
0: जी।
1: तो मेरे ख्याल से तो सभी फसलें महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल है, लेकिन जो मैं बता रहा था अरहर जो फसल है उसको बहुत पैमाने बोई जाती है, इसकी दाल का उपयोग बहुत सारे किसान भाई करते हैं। और जहां तक बात है मूंग की जो दाल होती है वो बहुत ही डाइजेस्टिव होती है, जिनको मरीज के लिए या कमजोर लोगों को दे सकते हैं तो वो आराम से उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल, हम तो कह सकते हैं कि दालें और ये तिलहनी फसलें कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं, कह सकते हैं प्रोटीन का कटोरा कहा जाए, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं, एक शाकाहारी व्यक्ति के लिए। लेकिन जब बात आती है, हम इसकी बिजाई की बात करते हैं, किसमें हमने चुनी, अब बात आता है कि कौन सी भरोसेमंद ऐसी जगह है कि जहां से बीज लिया जाए कि उत्पादन अच्छा हो, या हमारा जो बीज है उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो। फिर जो बीज मिलेगा, मान लीजिए हमने अपना कोई पुराना बीज घर में तैयार किया है, रखा हुआ है, कई बार हमारे किसान भाई बहन घर से ही ऐसे कर लेते हैं, किसी पड़ोसी से ले लेते हैं, तो बीजों उपचार के विषय में आप क्या?
1: ना बिल्कुल,
2: यानी बीज उपचार और बीज चयन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है।
1: हाँ, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, आपने सही कहा कि बीज अगर अच्छा होगा और ऑथेंटिकेट होगा तो हमारी जो फसल है उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले बात मैं किसान को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो बीज है वो उन्नत किस्म का लीजिए और भरोसेमंद जगह से लीजिए। भरोसेमंद का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो ICAR के जितने इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ जहाँ नियर बाई किसानों को पढ़ते हैं और वहाँ पे काम हो रहा है, अगर फसल पर काम हो रहा है तो उनके जो एटिक सेंटर होते हैं
0: जी,
1: वहाँ पे डेफिनेटली आपको बीज की उपलब्धता रहेगी। तो ये तो बहुत बड़े सोर्स हुआ
0: जी
1: कि भाई वहाँ हमको बिना किसी झिझक के लेना चाहिए, क्योंकि हमारे आई सारे जो इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं तो हमारा जो बीज होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गुणवत्तापूर्ण होता है। दूसरा हमारा क्या है कि जो NSC है

0: नेशनल सीड कॉरपोरेशन है
1: जी
0: तो उससे भी उनके काउंटर होते हैं पूरे इंडिया में, वहां से भी ले सकते हैं, और कुछ स्टेट सीड कॉरपोरेशन भी होते हैं वहां से भी ले सकते हैं, और कुछ एजेंसियां भी होती हैं उनको लाइसेंस दिया हुआ होता है, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री कंपनियां होती हैं उनको भी लाइसेंस दिया होता है
2: जी।
0: तो वो ऑलरेडी जो ऑथेंटिकेट जो सोर्स है वो यही सोर्स है कि वहां से आप लेंगे तो आप एक तो बीज बीज जब लें तो उसका जो रिसीट है उसकी जो रसीद है वो जरूर ले लें,
2: बिल्कुल,
0: जिससे ये होगा कि आपका जो बीज है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट है। अगर कोई भी किसान भाई अगर वहां से रसीद ले लेगा तो वो डेफिनेटली वो ये तय कर लेगा कि ये बीज है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो अच्छा बीज आप ले सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि अगर कोई किसान भाई अपना खुद का बीज पिछले साल का बीज अगर यूज करना चाहे तो कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद का बीज ले रहे हैं
1: जी
0: तो उसको आपको उपचार करना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल,
0: वैसे तो जो बीज बाहर से आता है जो हम नया बीज लेते हैं तो वो हो सकता है वो ऑलरेडी उपचारित हो, लेकिन काफी बीज नहीं होते तो आपको उपचार करना जरूरी है। तो उपचार की जो जो विधि है वो मैं बता देता हूँ आपको, बीज को उपचार करना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये हम जरूर विधि जानेंगे बीज उपचार। एक नेक हमारे साथी हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, सुनते हैं क्या पूछते हैं।
3: हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं?
3: मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं राजस्थान हाथपुर से बोल रहा हूँ
1: जी।
3: मेरा क्वेश्चन ये कि जो दलहन में जो मूंग की दाल बोते हैं तो वो हम गर्मियों में भी बोते हैं और खरीफ में भी बोते हैं, तो खरीफ में कब बोई जाए और कौन सी अच्छी होती है खाने के पर्पज से?
1: जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा देश दालों का उत्पादन नंबर वन है
2: जी,
0: और लेकिन खाने वाले भी ज्यादा हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है
1: जी,
0: इसलिए हम लोग क्या है कि खरीफ में भी लगाते हैं और हम लोग गर्मियों में भी लगाते हैं
2: जी।
0: जो किसान भाई का प्रश्न है वो बहुत ऐसा प्रश्न है कि हम किसको गर्मियों में भी लगाते हैं और हम खरीफ में लगाते हैं। पहले तो हम खरीफ में लगाते हैं इसको
2: जी,
0: लेकिन अब हमने किसान भाइयों को कहा है कि आप समर में भी इसको लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है जिसका ड्यूरेशन सिर्फ 2 महीने का है, तो 2 महीने हमारे खेत खाली रहते हैं गर्मियों में। तो जिन किसान भाइयों के पास अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो वो किसान भाई मूंग की फसल लगा सकते हैं और इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है कंपेरिजन टू खरीफ
2: जी।
0: खरीफ में तो उसको बोते ही थे, अभी बोते हैं, तो खरीफ में जो पैदावार है ना उससे ज्यादा कहीं आप ले सकते हैं गर्मियों में
2: जी।
0: उसका कारण क्या है? कारण यह है कि खरीफ में जब हम बोते हैं तो उसमें एक तो क्या खरपतवार बहुत कम लगते हैं
2: जी,
0: तो खरपतवार का कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि रोग हानिकारक कीट ये भी कम लगते हैं, और आजकल तो क्या है कि गर्मी में बोई जाने वाली जो फसल है मूंग की उसकी हम लोगों ने वैरायटी भी पैदा कर दी है, जैसे पूसा विशाल है, इसको जनरली हम लोग गर्मियों में करते हैं तो इसका उत्पादन ज्यादा होता है। और खरीफ में क्या होता है, खरीफ में हमारे जो खरपतवार का एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हमको रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन हम बात करते हैं जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की, नेचुरल फार्मिंग की, तो हमको रसायन को कम करना है और लगभग इसको हटाई देना है
2: जी
0: 3-4 साल बाद अगर चाहे किसान भाई। और विशेष करके जब हम बात दलहनी फसलों की बात करते हैं तो दलहनी फसलों में हमको कोई रसायन यूज करना नहीं है, क्योंकि दलहनी फसलों की एक खास बात क्या होती है कि इनकी जड़ों में गांठें होती हैं और गांठों में होते हैं राइजोबियम जो कि बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया हमारी जो एटमोस्फेयर नाइट्रोजन होती है ना उसको वो फिक्स करता है जड़ों में
2: जी।
0: तो दलहनी फसलों को रिक्वायरमेंट है ही नहीं यूरिया की, नाइट्रोजन की,
1: जिनको
0: बाहर से कोई नाइट्रोजन देने नहीं है, यानी कि यूरिया का जो इस्तेमाल नहीं करना है
1: जी।
0: तो अगर हम लोग खरीफ में या रबी में या गर्मियों में अगर मूंग की खेती करेंगे या दूसरी दलहनी फसलें करेंगे तो हमको नाइट्रोजन की आवश्यकता बाहर से नहीं पड़ेगी, तो हमारा यूरिया बिल्कुल बच जाएगा, तो किसान भाइयों को रसायन का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा, तो उससे आपका जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो बना रहेगा, लंबे समय तक आपकी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ जो शक्ति हो वो बनी रहेगी।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो रहा प्रश्न का जवाब कि भाई जो जायद या गर्मा में मूंग लगाते हैं तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन जब खरीफ में तो चला ही आ रहा है, लेकिन अभी कहा आपने कि पूसा विशाल जो जायद में आपने तैयार किया है किस्म, बहुत अच्छी बात किसानों तक पहुंची कि कम से कम किसान लगाएं तो उन्नत किस्में लगाएं। बात कर रहे थे कि बीजों उपचार, यदि हमारे किसान भाइयों ने कहीं से ऐसा बीज ले लिया है या अपना तैयार बीज है कि जो बीज उपचार करना पड़ेगा तो उसके विषय में आप विधि बता रहे थे।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीज उपचार दलहनी फसलों का भी करते हैं, तिलहन का भी करते हैं और जितनी फसलें होती हैं हमारे एरेबल क्रॉप्स होती हैं उन सबका बीज का उपचार करना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि एक तो क्या है कि कुछ हानिकारक कीट हैं वो बाद में बोने के बाद आते हैं और कुछ रोग है वो भी आ सकते हैं
1: जी,
0: चाहे वो एयर बोर्न हो, चाहे सोइल बोर्न हो, चाहे सीड बोर्न हो,
2: बिल्कुल,
0: तो ये रोग इनकी आने की उम्मीद पूरी रहती है। तो बीज का उपचार करना ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं दलहनी फसलों की तो उसका बीज उपचार करने का तरीका यह होता है कि हम उसमें तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण उसमें लगाते हैं।

0: एक तो क्या है कि बीज का जो उपचार है वो रोगों को नियंत्रित करने के लिए फफूंदी नाशक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं फंगिसाइड, तो उसको हम लेते हैं। उसकी जो मात्रा होती है वो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के साथ डालते हैं, वो पाउडर फॉर्म में आता है
1: जी।
0: तो बीज में उसको मिला देते हैं। और उसके बाद दूसरा स्टेप आता है हानिकारक कीटों को रोकने के लिए, तो उसके लिए हमें एक कोई भी कीटनाशी का इस्तेमाल करना होता है। उसमें हम जैसे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारे पास इंसेक्टिसाइड है वो है इमिडाक्लोप्रिड
1: जी,
0: उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिन किसान भाइयों के एरिया में दीमक का ज़्यादा प्रकोप होता होगा वहाँ पर वो क्लोरोपाइरेफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी।
0: तो इनकी जो मात्रा होती है वो 3 से लेकर 4 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम डालते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो उसको फिर मिला लेते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है राइजोबियम का कल्चर
1: जी।
0: अगर हम बात करें दलहनी फसलों की, दलहनी फसलों में मोस्टली हम राइजोबियम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात करेंगे तिलहनी फसलों की तो उसमें एजिटोबैक्टर बहुत दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली एजिटोबैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के जो बाय फर्टिलाइजर्स हैं
1: जी,
0: उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं लास्ट में। तो उनके लिए भी एक प्रक्रिया है कि हम उसका घोल कैसे बनाएं, क्योंकि उसके पैकेट्स आते हैं जो 200 ग्राम का होता है, तो एक हेक्टेयर में 200 ग्राम भी हो सकता है, 400 ग्राम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी।
0: तो वो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए अलग से घोल बनाते हैं। तो उसको घोल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है एक्चुअली, कि हमें 1.5 लीटर पानी लेना होता है, फिर बाद में उसमें 150 ग्राम गुड़ मिलाना होता है
1: जी,
0: फिर गोंद मिलाना होता है, फिर यूं करके उसका घोल को हम लोग गर्म करते हैं और बना करके घोल बना करके गर्म करके उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद उसमें हम लोग राइजोबियम का कल्चर मिला देते हैं
1: जी,
0: और मिलाने के बाद उसको हम बिल्कुल आराम से बीज में मिलाते हैं। बीज में जब मिला देते हैं तो बीज को हम सुखा लेते हैं छाया में, तो सूखने के बाद हम उसकी बुआई कर सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक साथी हमारे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, बात कर लेते हैं। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार जी, मेरा नाम राम प्रसाद, जनपद मथुरा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ
1: जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं जी।
2: सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले सरकार कुछ प्लान करते थे जिसमें दलहन के बीज मिलते थे किसानों को
1: जी जी,
2: जिससे दलहन बोने से ना जमीन उपजाऊ हो जाती है, उसमें नाइट्रोजन होती है जैसे आपने अभी बताया था क्वेश्चन, तो कुछ ऐसी स्कीम अब भी बरकरार है क्या, और किसानों को मतलब कैसे प्रेरित किया जाए कि वो दलहन कम से कम साल में एक बार जरूर बोए अपने खेत में।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपका बहुत ऐसा प्रश्न है। सरकार पहले भी किसान भाइयों के लिए किट की व्यवस्था कराती थी और अभी भी कराती है, ऐसे नहीं छोड़ दिया हो, अभी भी कराती है। जो हमारी उन्नत किस्में होती हैं, जब नई पैदा होती है कोई किस्म तो उसका हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, तो हमारे जो केवी के हैं केवी के थ्रू भी हम लोग किट देते हैं किसान भाइयों को
3: जी।
0: कि भाई ये मात्रा नहीं है। और जैसे हमारे कई प्रोग्राम चल रहे हैं आजकल, TSP है, SESP है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके तहत में हम किसान भाइयों को बीज देते हैं और उनको इनपुट देते हैं। तो वैसे उत्तर प्रदेश में तो मैं भी कई बार गया हूँ, हमने वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, SESP का प्रोग्राम किया है, तो उसमें हम किसान भाइयों को हम 2 किलो 3 किलो 4 किलो हम बीज देते हैं, दलहन का भी देते हैं और तिल का भी देते हैं और गेहूँ भी देते हैं और दूसरी फसलों का भी बीज हम देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। दूसरा क्या है कि किसान अभी जब हमारी सरकार ने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना
1: जी
0: चला रखी है, तो उसके तहत किसान भाइयों को हर तरह से हम लोग मदद करते हैं कि उनको क्या किस तरह का बीज चाहिए और किस तरह का उनको हेल्प चाहिए। तो किसान भाई ग्रुप बनाते हैं और जैविक खेती करने के लिए ग्रुप बनाते हैं, तो उनको हम सीधा ट्रेनिंग भी दे देते हैं और उनको हम लोग किट भी देते हैं और हम बीज फ्री भी देते हैं किसान भाइयों को। तो ये बिल्कुल अच्छा कहा इन्होंने कि भाई हमको साल में एटलीस्ट एक बार कोई दलहनी फसलें जरूर उगानी चाहिए
3: जी।
0: अगर हमको जैविक खेती करनी है या प्राकृतिक खेती करनी है तो दलहनी फसल बिल्कुल उसका इंटीग्रल पार्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम दलहनी फसलों को या तो इंटरक्रॉपिंग रूप में लगा सकते हैं या सीक्वेंस क्रॉपिंग रूप में लगा सकते हैं, या खरीफ में, रबी में, जब भी टाइम मिले तो एक एटलीस्ट एक फसल जरूर लगाएं साल में, जिससे क्या होगा कि आप दूसरी फसल लगाएंगे उसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बाहर से लाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो दलहन फसल हमने लगाई है उसके थ्रू ही हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता वो पूरी हो जाती है
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जागरूकता के रूप में भी जो कार्यक्रम उन्नत किसान जाता है, तो ये उन्नतशील और प्रगतिशील किसान भाई बहन जब काम कर सुनते हैं और हमारे यहाँ जितने भी फोन आते हैं इसमें अपनी जो भी उनका प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं दूसरे किसानों के लिए, जैसे इन्होंने कहा कि एक बार जरूर हमें जो है फसल लगानी चाहिए। अब बात आती है कि अब बारिश के मौसम में या खरीफ के इस मौसम में जब दलहनी फसल बोई जाएगी तो इसमें खेत का चुनाव भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अब ऐसे में बारिश पड़े और मानो खेत में पानी भर जाए, तो इसमें आप क्या टिप्पणी करेंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि खेत का चुनाव बहुत जरूरी है। पहली बात तो क्या है कि पानी खेत में नहीं टिकना चाहिए, बारिश ज्यादा होगी तो निकासी का प्रबंधन भी आपको
1: जरूर करना,
0: क्योंकि

0: अगर खेत में 40 घंटे से अगर ज्यादा पानी रह जाएगा और आपकी फसल खड़ी है खेत में, तो फसल नष्ट होने की इसमें पूरी पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए आप उसमें डिफरेंट तरह से एक तरह तरह की विधि आती है बोने की भी, जैसे रिज एंड फरो मेथड आता है
1: जी,
0: ये स्पेशली हम लोग खरीफ में करते हैं। एक रेज बेस्ड का भी सिस्टम आता है, तो उसमें क्या है कि जो उथला हुआ पोर्शन होता है ना, वहां हम क्रॉप लगाते हैं और उसके साइड में एक नहर होता है
1: जी,
0: वो फरो होता है
1: जी, जी।
0: फरो में पानी भर जाता है, तो पानी फसल की जड़ों में नहीं डायरेक्ट टच में नहीं आता, स्टेम में टच में नहीं आता, वो पानी फैल करके और जो नाली है ना साइड में जिसको हम बोलते हैं फरो, तो फरो में होकर के पानी बाहर निकल जाता है, तो ये पानी की प्रॉपर निकासी हो जाती है। तो हमारा जो तरीका है बोने का वो यही है, कई परिजन फॉर्म कर सकते हैं या रेज बेड में कर सकते हैं या और भी कोई विधि हो सकती है, और या फिर आप चारों तरफ खेत के नाली बना लें, जिससे क्या है कि जो एक्स्ट्रा पानी है ना नाली के थ्रू होकर के और कहीं लो लाइंग एरिया में चला जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है कि पानी का प्रबंधन बहुत जरूरी है, कैसे इसको से हमारी फसलों को बचाया जा सके। तो क्योंकि बुआई होने के बाद जब फसल 10 दिन की 20 दिन की 30 दिन की होती है, तो उस समय बहुत सेंसिटिव अवस्था में ये रहती है, क्योंकि अगर उस समय पानी बरसा और पानी अगर हमारे खेत में रुक गया तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसके लिए हमें ड्रेनेज का सिस्टम पूरा अच्छे से करना होगा और जो हमारी जो फसल है उसको बचाने के लिए हमें तरह तरह की विधियां अपनानी होगी। इसमें मैंने बोला आपको पहले ही कि रिज एंड फरो भी कर सकते हैं आप, रेज्ड बेड भी बना सकते हैं, जिससे क्या है कि आपका जो एक्स्ट्रा पानी है एक्सेस पार्ट है जो बाहर निकल के और वो कहीं लो लाइंग एरिया में चला जाएगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब
2: जी, डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि हमें बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण है, बीज उपचार होना चाहिए, फिर बीज हमें कैसे चुनते हैं, चयन यानी बीज का जो चयन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब यहाँ खेत की तैयारी भी बहुत महत्वपूर्ण है,
0: बिल्कुल,
2: तो उसे भी जरूर आप बताएं।
0: हाँ देखिए, जब हम खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ में क्या होता है कि हमें खरीफ की तैयारी सिर्फ बरसात आने के बाद नहीं, पहले से भी करनी होती है। जैसे मैं बताऊं, कई बार किसान भाइयों को हमने पहले बोला है, तो जब गर्मियां होती हैं, जब किसान भाइयों के खेतों में कोई फसल नहीं होती है एक या दो महीने के लिए, तो उस समय हम किसान भाई को बोलते हैं कि आपके खेतों को एटलीस्ट रबी की जो फसल जब आप कट जाएगी
2: जी जी।
0: तो उसके बाद हम खेतों की जुताई करते हैं, गहरी जुताई करते हैं। तो गहरी जुताई करने से कई हमारे फायदे होते हैं, एक तो क्या है कि जो खरपतवार है वो भी कम निकलते हैं, दूसरा क्या है कि जो हानिकारक कीट हैं उनके जो अंडे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, दूसरा क्या है कि जो रोग हैं उनके भी जो माइसीलिया वगैरह हैं पोर्स हैं वो भी उस समय तेज सनलाइट में खत्म हो जाते हैं। जब गर्मी ज्यादा होगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए गहरी जुताई करना बहुत जरूरी है। और जब गहरी जुताई कर रखी किसान भाई ने, तो फिर बस जैसे ही बारिश आएगी, मानसून की पहली बारिश आएगी, उसके बाद वो पहली बारिश में ही बुआई कर सकते हैं। तो यानी कि खेत की तैयारी का जो कॉम्बिनेशन है वो गर्मियों से स्टार्ट हो जाता है। अभी तो क्या है कि हमारे पास एक बार बारिश होगी, तो अब बारिश होने के बाद अगर खेत तैयारी करेंगे हम लोग तो फिर बुआई कब करेंगे, क्योंकि जुलाई का तो महीना आ गया है। इस बार तो आपको पता है कि हमारा जो मानसून है वो भी कमजोर है और अल निनो का इफेक्ट सीधा दिख रहा है, तो कहीं बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही है, कहीं सूखा पड़ेगा कहीं बाढ़ आएगी, ये थोड़ा सा रहेगा एक्सट्रीम, मतलब जो क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है या अलिनो का जो इफेक्ट आपको दिख रहा नजर आ रहा है। तो ये ऐसे समय में क्या है कि किसान भाइयों को पहले से ही रेडी रहना चाहिए। अब जैसे ही बारिश आई, ठीक ठाक बारिश हो गई, तो आप उसमें कोई भी फसल आप लगा सकते हैं
2: जी,
0: जैसे कोई भी दलहन या कोई भी तिलहन फसल लगा सकते हैं। और पहली बारिश अगर अच्छी हो जाएगी उसके बाद अगर आपने लगा दी, तो फिर 10 दिन के अंतराल तक बारिश नहीं आए तो कोई बात नहीं है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद बारिश आएगी तो हमारे फसल के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब बारिश आएगी तो फसल लहलाएगी, खेत खलियान खिलखिलाएंगे, लेकिन वहीं खरपतवार भी तो पीछे नहीं रहने हैं।
0: हाँ,
1: वो भी खरीफ की फसल में जो खरपतवार भी बहुत होते हैं, तो उनके विषय में भी कुछ जरूर बताएं हमारे किसान भाई बहनों।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखो खरपतवार ना ज्यादातर प्रॉब्लम खरीफ में ही करते हैं
1: जी।
0: उसका कारण क्या होता है कि देखो जमीन में बहुत सारे बीज पड़े रहते हैं, बहुत सारी फसलें होती हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनके बीज वहां मल्टीप्लाई होते रहते हैं और जो सॉइल है जो मिट्टी है वो सीड बैंक का काम करती है
1: जी।
0: तो वहां बीज पड़े रहते हैं, जब उनको सफिशियंट अमाउंट मिल जाता है मॉइस्चर का, पानी मिल जाता है, तो हरेक बीज उगने की कोशिश करता है।
1: बिल्कुल,
0: तो जितने भी बीज होंगे वो अगर सही डेप्थ पे पड़े होंगे
2: जी,
0: तो जैसे ही पानी मिलेगा तो वो उग जाएंगे। और खरीफ में पानी की कमी वैसे होती नहीं जनरली, इस बार तो अल निनो इसलिए प्रॉब्लम है, जनरली खरीफ में खूब मानसून की रेनफॉल होती है, तो हमारा जो खेत है वो चारों तरफ से पूरा अच्छे से भर जाता है। तो जब पानी सही तरीके से चला जाएगा, बीजों पर टच में आएगा, तो सारी जो प्लांट्स हैं, सारे जो बीज हैं वो उगने की कोशिश करेंगे और उग जाएंगे, और वो ज्यादा प्रॉब्लम हमारी फसल को करते हैं। तो उसमें किसान भाई के पास दो तरीके होते हैं, या तो मैनुअल वीडिंग करेगा या फिर उसमें कोई रसायन डालेगा, यानी हर्बिसाइड
1: जी,
0: खरपतवारनाशी। तो देखिए, इसमें मैंने पहले बोला, इसका एक तो ये है कि जो कल्चरल हमारा जो प्रैक्टिस है वो है कि गर्मियों में गहरी जुताई करना होता है, उससे भी हम खरपतवार नियंत्रण

0: लेते हैं, लेकिन बाय चांस किसान भाई ने समय काम नहीं किया है और उसको पता है कि मेरे खेत में खरपतवार आने वाले ही हैं, तो उससे पहले किसान भाई काम कर सकते हैं, एक फ्लुक्रोलिन करके नाम का एक वो आता है हर्बिसाइड, फ्लुक्रोलिन
1: जी,
0: तो वो प्री प्लांट होता है, यानी कि बुआई से पहले देना पड़ता है
2: जी।
0: तो बुआई से पहले आपने दे दिया तो उसमें लगभग लगभग जितने भी खरपतवार उसमें बीज के बीज होंगे खरपतवारों के, वो उगेंगे तो मर जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे
1: जी।
0: लेकिन अगर किसान भाई वो काम नहीं कर पाया और उसने बुआई भी कर दी है और उसको भी ये आशंका है कि अब मेरे खेत में खरपतवार भी आएंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास एक रसायन है, उसका नाम है पेंडीमेथिलीन, वो प्री इमरजेंसी को बोलते हैं, यानी कि बुआई के बाद लेकिन उगने से पहले उसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर बाद में वो खरपतवार बिल्कुल उसमें आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर तब भी नहीं कर पाया किसान भाई
1: जी,
0: और हमारी फसल आ गई है और खरपतवार भी आ गए हैं, तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो मैनुअल तरीका होता है, यानी कि मैनुअल वीडिंग होती है तो उसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं, लेबर ज्यादा लगती है, और उसके लिए भी रसायन काम आता है। कोई भी हमारी क्रॉप होती है उनमें सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, जैसे कोई स्पेशल क्रॉप है उसके लिए स्पेशल हमारे हर्बिसाइड होते हैं, तो ये नहीं कि जनरल हम कर देते हैं, ऐसा नहीं है, हर क्रॉप के लिए अलग टाइप का हर्बिसाइड होता है, उसे बोलते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड, पोस्ट इमरजेंसी में वही काम लेते हैं। तो इस तरह करके किसान भाई अपने जो खेतों में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, यही खरपतवार के बाद जो है एक और चीज जो है परेशान करती है किसान भाई बहनों को, वो है फसलों में लगने वाले कीट और रोग।
0: हाँ,
1: तो इनसे कैसे बचाव किया जाए?
0: तो देखो, मैंने बोला इसका पहला तो ये है कि हमें गर्मियों में घर जुदाई करनी चाहिए
1: जी,
0: और दूसरा क्या है कि बीज कब तैयार करना चाहिए। अगर आपने बीज तैयार कर दिया तो ये मानो कि आपने 90% काम कर दिया है, क्योंकि बीज के साथ अगर जाएगी कोई भी रसायन जाएगा या कोई भी उसका ट्रीटमेंट जाएगा तो उसमें हानिकारक जो कीट है उनकी लगने की संभावना लगभग जीरो हो जाती है। ऐसे उसमें हानिकारक इसमें जो रोग हैं उनकी भी संभावना कम हो जाती है, स्पेशली जो बीज जनित रोग होते हैं वो तो आएंगे नहीं
1: जी।
0: तो बाद वो तो बाद की बात है कि जैसे हमारी फसल खड़ी है उसके बाद देखते हैं कि 2-3 महीने बाद खरीफ में होता है, कभी कभी मौसम क्लाउडी होता है
2: जी,
0: एक कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो उस समय क्या है कि काफी हानिकारक कीट आते हैं, दूसरा क्या है कि हमारे रोग भी लगते हैं उस समय, तो उस समय किसान भाइयों को रेगुलर निगरानी करनी होती है फील्ड की। अगर इसके सबके बावजूद भी अगर कोई कीट हानिकारक कीट आता है और वो एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे है तो उसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी हम रसायन काम ले सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि भाई मेरे खेत में अभी शुरुआत है कि इसमें कुछ हानिकारक कीटों के जो बच्चे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें आप कोई भी जैसे इमिडाक्लोपिड टाइप की कोई भी दवाई उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं हानिकारक कीटों को मारने के लिए। और जहां तक बात है रोगों का तो मैं यही कहूंगा कि किसान भाई को कि बाहर रोग लगने के बाद उसका कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए बीज उपचार कर रहे पहले तो उसमें रोग लगने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलते चलते कार्यक्रम में जरूरी है वैसे बात होगी कि आपने कहा कि नाइट्रोजन की आवश्यकता कम से कम होगी क्योंकि राइजोबियम से कल्चर है और उनकी में गांठ भी होती है जो, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करें कि अच्छा उत्पादन हमें लेना है तो पोषक तत्वों का प्रबंधन तो करना।
0: हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
2: इसके विषय में जरूर जानना।
0: जब हम खेत तैयारी करते हैं तभी हमको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारा खेत में जो मिट्टी है उस मिट्टी में कौन सा तत्व ज्यादा है कौन सा कम है, क्योंकि टोटल हम 17 न्यूट्रिएंट का औसत प्रति प्लांट्स को, और ज्यादातर इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, जैसे आपने कहा कि भाई नाइट्रोजन तो हम मिल गया हमको दलहनी फसलों से, तो दलहनी फसलों में तो हमको देने जरूरत तो है ही नहीं, पर स्टार्टर के रूप में भी 10 किलो 15 किलो 20 किलो नाइट्रोजन डालते हैं हम लोग बाहर से एज ए स्टार्टर, जब तक हम हमारा जो जड़ों में जो गांठ है
2: ग्रंथियां नहीं बनती
0: जब बिल्कुल वो काम करती है। बाकी आपका जो फास्फोरस की डिमांड जो होती है क्रॉप्स के लिए वो होती है 60 किलोग्राम के आसपास, और पोटेशियम की जो डिमांड होती है वो होती है करीब करीब 40 kg पर हेक्टर के हिसाब से होती है, ये दलहनी फसलों के लिए और तिलहनी फसलों के लिए दोनों के लिए बराबर है। लेकिन फिर भी मैं किसान भाई को कहना चाहूंगा कि आपकी जो खेत की मिट्टी है उसकी जांच अवश्य करा लें, उससे ये पता लग जाएगा आपको कि मेरे जो खेत है उसमें कौन सा तत्व कम है कौन सा ज्यादा है
2: जी।
0: अगर जो ज्यादा है उसमें देने का आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन अगर किसी में डेफिशिएंसी है कमी है किसी तत्व की, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो
2: जी,
0: अगर पता लगा आपको कि इसमें ये कमी है तो हम उसका प्रबंधन खेत जब तैयारी करते हैं तभी कर लेते हैं, उसके बाद हम देते भी नहीं कुछ भी
2: जी,
0: बाद में कोई स्प्रे नहीं देते ना कोई बाहर से कोई ड्रेसिंग करते हैं कोई डोज देते भी नहीं है। ये सब जो मैनेजमेंट है वो खेत की अंतिम जो होती जुताई
2: जी
0: वहां तक इसको हम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बुआई करने के बाद इसमें कोई भी पोषक तत्व प्रबंध नहीं करते हैं
2: जी।
0: लेकिन जब जो वर्षा आधारित जहाँ खेती होती है वहां पे ये काम जरूर कर सकते हैं, अगर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपको नजर आए बाद में
2: जी,
0: तो आप स्प्रे के थ्रू कर सकते हैं, जैसे जिंक है आयरन है मैग्नीज है
2: जी,
0: इनका आप इस्तेमाल घोल बना करके कर सकते हैं। कई बार किसान भाई यूरिया डीएपी का भी इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के थ्रू, तो ऐसे भी वो कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल।

0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे कार्यक्रम में दी और हमारे निश्चित रूप से जो किसान भाई बहन हैं आज जो बातचीत सुन रहे हैं इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी।
0: और निरा समय हो चुका है, हम अपने सभी किसान भाई बहनों से अब अनुमति लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। उन्नत किसान कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा तीन दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुआ। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपिल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है।

नमस्कार। दोपहर की धूप जब अपने पूरे उजास के साथ धरती पर बिखर जाती है, तब मन भी चाहता है कि दिन की एक रस्ता में कुछ सुरों की चंचलता घुल जाए, कुछ ऐसी धुनें जिनमें पांव अनायास ही लय पकड़ लें, अधरों पर मुस्कान उतर आए और स्मृतियां भी गुनगुनाने लगें। तो आइए, आज की इस मधुर बेला में आपका स्वागत है, एक ऐसे संगीत सफर में जहां सुनहरे फिल्मी संगीत की चपल धुनें, मादक लय और उत्साह से भरे तराने आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके और हमारे मनपसंद कार्यक्रम मन भावन में। मैं हूं प्रियांशी भटनागर और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और अपने संदेश ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। कोई बात जो मन में ठहर गई हो, कोई छोटा सा संकल्प या स्नेह भरा संदेश, अपने मनपसंद गीत के साथ हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी इन भावनाओं को हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बना सकें। तो श्रोताओं, देर किस बात की, हमें भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर। हमारा ईमेल पता है fmgoldairdelhi@gmail.com और आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपने प्रिय गीत भेज सकते हैं 9868886873 पर। मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ, ईमेल है fmgoldairdelhi@gmail.com और आप हमें व्हाट्सएप पर अपने प्रिय गीत भेज सकते हैं 9868886873 पर। आज मन भावन कार्यक्रम में सुनते हैं आपकी फरमाइशों से सजा वो संगीत जिसने कभी महफिलों में उल्लास जगाया, युवाओं के कदमों को लय दी और अनगिनत दिलों की धड़कनों में अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। तो आइए, इस सुरमई दोपहर को कुछ और सजीव, कुछ और स्पंदित बना दें उन गीतों के साथ जिनकी लय आज भी मन को सहज ही झूमने पर विवश कर देती है। आइए कार्यक्रम का आरंभ करें।

संगीत की इस रोमांचक लहर के बाद आइए सुनते हैं अब आपकी आवाज। देखते हैं कौन कौन हमें संदेश भेज रहा है और कौन सा गीत आपने दिल से चुनकर हमें भेजा है। अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने अर्चना, प्रणय और हीरामन शेंडे इनके साथ हैं। शिवाजी नगर से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर, इंदिराबाई और छकुलीताई।

बुढ़ाना से दीपाली राम धाड़े और स्वराज राम धाड़े हमें लिख रहे हैं, और अमरावती से सुनैना और तनुज पवन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। खंडवा मध्य प्रदेश से ममता और संजय मारकंडे और इनके साथ है बेबी किटू, और सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशा जी, सोनाली और सईद मसरूर भी इनके साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, आपके अन्य संदेश भी पढ़ेंगे इस अत्यंत रोमांचक गीत के बाद।

आइए श्रोताओं, अब फिर आपके भेजे हुए कुछ संदेश पढ़ें। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल भी हमारे साथ जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी और आकाशा चावला हमारे साथ जुड़े हैं। इनके साथ और भी हमारे साथ सुन रहे हैं कुमारी अंकिता जोशी और बेबी वैदेही और बेबी हंसिका। करगैना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष, अमर, हितेश और बंटी हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा, रूबी, भारती, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति, शिवांश और पृथव सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, अब फिर चलें हमारे संगीत सफर पर। आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

वो सुनहरा सरोवर जहाँ सिर्फ सुर कानों तक नहीं पहुँचते, दिल को भी छूते हैं। तो आइए आपके भेजे हुए और संदेशों पर भी नजर डालें। ऊपरकोट चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्याला से उमेश कुमार, दिनेश, अनुज और सोनित हमारे साथ जुड़े हैं। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत, आयुष और नंदिनी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये अगला गीत। पर उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी भी हमें अपना प्रिय गीत और संदेश नहीं भेजा है तो जल्द ही लिख भेजिए fmgoldairdelhi@gmail.com पर। मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ, हमारा ईमेल पता है fmgoldairdelhi@gmail.com और हमें आपकी ईमेल का बहुत इंतजार है। जल्द ही लिख भेजिए अपना फरमाइशी गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर और भेज दीजिए हमें। आइए फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

फिर समय हो चला है आपके भेजे हुए संदेश पढ़ने का। संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं आपके मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख शागीर, शेख वजीर, सोहेल शेख, सईद तैमूर, शामीर खान और अलजान के। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और विद्या कुमारी हमारे साथ जुड़े हैं। पिंगावाला चौक जालंधर पंजाब से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत और कमल सहनी हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तम नगर नई दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

आइए श्रोताओं, नजर डालें आपके भेजे हुए संदेशों पर। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी जुड़े हैं। और ग्राम लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और इनके पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से संदेश प्राप्त हुआ है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी हमारे साथ जुड़े हैं। सराय सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर, मुजक्किर और जरीफ अंसारी। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये रोमांचक गीत।

श्रोताओं, समय शीघ्र ही इशारा करने वाला है, पर आइए पहले आपके कुछ और नाम शामिल कर लें। अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और पूरा रामेकर परिवार हमारे साथ जुड़ा है। कमलकांत गुप्ता और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता बहुत देर से हमारे इंतजार में हैं पिपरिया से। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढेंगिया, नमन ढेंगिया, अपार ढेंगिया हमारे साथ जुड़े हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और छत्रपति संभाजी नगर से पार्थ रेडियो क्लब के श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आइए श्रोताओं, इनकी फरमाइश पर अगला गीत सुनेंगे, पर उससे पहले आपसे भी विदा ले लें। आपकी फरमाइशों ने इस दोपहर को नई लय, नई उमंग और एक मधुर चंचलता से भर दिया। जिन गीतों ने कभी अनगिनत कदमों को थिरकने का निमंत्रण दिया था, उन्होंने आज भी अपनी वही ताजगी और आकर्षण बिखेरा। श्रोताओं, आपके संदेश, आपकी शुभकामनाएं और आपका स्नेह हमारे लिए सदैव मूल्य है। हमें यथासंभव आपकी अधिक से अधिक फरमाइशें इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आपकी फरमाइश आज न शामिल हो पाई हो तो हमारी व्यवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा और अपने मनपसंद गीतों की ये डोर यूं ही हमसे जोड़े रखिएगा। इसी आत्मीयता के साथ मैं प्रियांशी भटनागर आपसे अनुमति चाहूंगी। मिलते हैं फिर समाचार के पश्चात। जुड़े

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा ने दोनों देशों के बीच परस्पर संबंध मजबूत बनाए हैं।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावारीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा कर दी। मतदान 30 जुलाई को होगा और मतगणना 3 अगस्त को होगी। बांकीपुर सीट भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई है, जबकि दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण खाली हुई। इसके अलावा मंजलपुर सीट भाजपा विधायक योगेश भाई नरदास पटेल के निधन के बाद खाली हुई है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। सह मेजबान अमरीका ने राउंड ऑफ 32 के मैच में आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से

दोपहर का अपना एक स्वभाव है। सुबह की चहल पहल पीछे छूट चुकी है और सांझ की आहट अभी कुछ दूर है। ऐसे में यदि कोई मधुर धुन हवा में घुल जाए तो समय भी मुस्कुराकर अपनी चाल बदल लेता है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं प्रियांशी और आपके साथ सुरों का ये मधुर सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के सुरों में RD बर्मन के संगीत में सजा और आनंद बख्शी के बोल वाला ये गीत।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर के सुर में, बप्पी लहरी द्वारा रचित और अमित खन्ना द्वारा लिखा गया।

श्रोताओं, अब से कुछ ही समय में सुनिए रोजगार समाचार और फिर 4:30 पर सुनिए परिक्रमा। मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी 5:10 पर समाचार के पश्चात कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। नमस्कार।

0: a financing institution and is regulated by the Reserve Bank of India as an All India Financial Institution. The current recruitment includes vacancies in the treasury and resource raising, business strategy and partnership and ecosystem development streams with posts available in Mumbai. The vacancies include one Executive Vice President, Treasurer and Resource Raising, one Vice President, Treasurer and Resourcing and one Vice President, Business Strategy and Partnerships and ecosystem development. The remunerations will be based on the candidate's qualifications, experience, previous salary and prevailing market benchmarks. Online applications commenced on 16 June 2026. Interested candidates are advised to carefully read the detailed advertisement regarding the eligibility and age limit. Kindly refer to the website at www.nabfid.org. I repeat, it is www.nabfid.org. FID.org. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में निदेशक के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, वेतनमान और अन्य सभी विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान की वेबसाइट www.sctimst.ac.in। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिल्ली स्थित मुख्यालय में स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 लेवल 6 का पद भरने के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.narcoticsindia.nic.in। वेबसाइट पर रिक्तियां टैब के अंतर्गत सभी आवश्यक जानकारियां आपके लिए उपलब्ध हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2 रिक्तियां, जूनियर सुपरिंटेंडेंट 3 रिक्तियां, जूनियर असिस्टेंट 2 रिक्तियां, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 1 रिक्ति, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 1 रिक्ति, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 1 रिक्ति, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 1 और जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट BSBE के लिए भी 1 रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विभाग की वेबसाइट www.iitdh.ac.in। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत सक्रिय भारतीय राजमार्ग अभियंता एकेडमी में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कोर फैकल्टी हाईवेज, कोर फैकल्टी ब्रिज, कोर फैकल्टी पेवमेंट और कोर फैकल्टी सेफ्टी। आवेदन प्रपत्र, योग्यता, आयु सीमा आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय राजमार्ग अभियंता एकेडमी की वेबसाइट iahe.mort.gov.in। भारतीय वायुसेना में ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल 6 पद उपलब्ध हैं। कमांडेंट IAM IAF विमानपुरा पोस्ट बेंगलुरु में और पद का नाम है MTS। इसी प्रकार बहुकार्य कर्मचारी MTS के लिए शैक्षणिक योग्यता वो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा बराबर की परीक्षा। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 27 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 तक का रोजगार समाचार पत्र। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम परिक्रमा में। वक्त हो चला है 4:30 और 2 जुलाई की इस नई शाम में अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सारी रोचक जानकारी लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम परिक्रमा के आज के अंक की। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
2: Hello, Sarfirozi. Hello, and a very warm welcome to all our listeners tuned into Parikrama on Akashvani Gold at 100.1 megahertz. I'm Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is my co-host Sarfirozi. Well, listeners, he is celebrated as a literary giant because of three reasons. He revolutionized 20th century prose by shifting American literature away from the verbose, adjective-heavy prose of the 19th century. He relied on crisp action verbs, short declarative sentences, and clear conversational dialogue. Secondly, he's very effectively captured the psychological trauma of his generation. He became the voice of the lost generation, the disillusioned post-World War I era, by writing authentically about trauma, despair, courage, and grace under pressure. And lastly, he mastered the iceberg theory, allowing readers to deduce deep, complex, emotional truths from sparse, objective descriptions. Yes, is none other than the American novelist and short story writer who was awarded the Nobel Prize for Literature in 1954. Yes, we are talking about Ernest Hemingway. And today we observe his death anniversary and remember this legend. And we are going to talk about him later in the program. But first of all, we begin with the news headlines at this hour.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज इंडिया जापान बायलैटरल रिलेशनशिप हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर समर्थन मिला।
2: श्री अमरनाथ यात्रा बिगिंस विद द फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिम्स लीविंग भगवती नगर बेस कैंप इन जम्मू।
1: दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिम राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा।
2: एंड इन द फीफा वर्ल्ड कप यूनाइटेड स्टेट्स रजिस्टर्स फर्स्ट नॉकआउट स्टेज विन सिंस 2002 डिफीटिंग बोस्निया हर्जेगोविना 2-0। बेल्जियम ऑल्सो एंटर्स राउंड ऑफ 16 इन एक्स्ट्रा टाइम विक्ट्री ओवर सेनेगल। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Sports Journalist Day and Manas, India's digital shield against drugs. So to start off with the first topic in a Dateline section, Sarfirozi, that is the World Sports Journalist Day. Well, every unforgettable sporting moment has two heroes. One is the athlete on the field, the other is the journalist behind the microphone, the camera or the keyboard, bringing that moment alive for millions. And today on World Sports Journalist Day, we celebrate those storytellers who make us cheer, celebrate debate and relieve every thrilling victory.
1: इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेल जगत से जुड़े सभी मीडिया कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने खेल पत्रकारों को भारत की खेल यात्रा में अहम साथी बताते हुए कहा कि ये लोग छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाते हैं और खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करते हैं।
2: And Mr. Mandaviya also appreciated the hard work, dedication and professional integrity, saying that the efforts continue to strengthen India's ever-growing sporting ecosystem. And rightly so, because while athletes create history on the field, sports journalists ensure that history is remembered for generations.
1: बिल्कुल सही कहा अभिषेक। और स्कोर बोर्ड भले ही हमें ये बता दे कि खेल में किसने जीत हासिल की, लेकिन जो खेल पत्रकार हैं वो हमें ये बताते हैं कि ये जीत असल में क्यों मायने रखती थी। लेकिन अभिषेक, 2 जुलाई को ही विश्व खेल

0: भारी भरकम स्पॉन्सरशिप भी मिलती है और पूरी दुनिया का ध्यान इस तय वक्त पर इन पर ही रहता है। और इसके साथ ही ऐसी तेज तर्रार, भरोसेमंद और गहरी समझ वाली पत्रकारिता की भी जरूरत होती है जो सिर्फ मैच के नतीजों से कहीं आगे की बात करें।
1: Absolutely, and here in India too, Sarfarozi, sports journalism has played a remarkable role in taking athlete stories to every corner of the country. And one such example is a sports scan, the daily sports bulletin of All India Radio. And every evening from 8:30 p.m. to 8:45 p.m., sports scan delivers a crisp yet comprehensive roundup of the day's biggest sporting developments through AIR, FM Gold and the nationwide Akashvani network. And for those on the move, the program is also available on the News on AIR app.
0: बिल्कुल अभिषेक, और बात करें स्पोर्ट्स स्कैन की सबसे खास स्पेशलिटी की तो वो है इसका संतुलित नज़रिया। इसमें क्रिकेट को तो जगह मिलती ही है, लेकिन उसके अलावा हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कुश्ती, फुटबॉल और भारत का मान बढ़ाने वाले दूसरे कई खेलों को भी इसमें शामिल किया जाता है। बात लाइव मैच के नतीजों की हो या टूर्नामेंट की ताज़ा जानकारी हो, वहाँ से लेकर मेडल टैली, खिलाड़ियों की प्रोफाइल, एक्सपर्ट्स की राय और भारतीय स्पोर्ट्स स्टार्स तथा कोच के इंटरव्यू तक, ये प्रोग्राम सुनने वालों को भारत के साथ साथ ग्लोबल खेलों की भी हर हलचल से जोड़कर रखता है।
1: एंड ड्यूरिंग द मेगा इवेंट्स सरफरोजी लाइक द ओलंपिक्स एंड द वर्ल्ड कप्स, स्पोर्ट्स कैन रेजेस द एक्साइटमेंट इवन फर्दर विद डेडिकेटेड स्पेशल एडिशंस एंड एक्सक्लूसिव कैंपेन्स। सो टुडे एज वी अपलोड स्पोर्टिंग आइकन्स, लेट्स ऑल्सो सेलिब्रेट द वॉइसेस दैट एम्प्लीफाई द अचीवमेंट्स एंड हियर्स विशिंग एवरी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड स्पोर्ट्स Journalist Day. And moving on to a second topic in a Dateline section, Sarfarozi, that is Manas, India's digital shield against drugs.
0: बिल्कुल अभिषेक, और एक नजरिए का, एक पॉइंट ऑफ व्यू का तसव्वुर करके देखते हैं कि रात का वक्त है, आप घर लौट रहे हैं और अपने आसपास कुछ अजीब होता देखते हैं। कुछ लोग किसी संदिग्ध चीज का लेन देन कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपने अपने किसी जान पहचान वाले को धीरे धीरे ड्रग्स की लत में फंसते देखा हो, लेकिन आपको समझ ना आ रहा हो कि मदद कहाँ से ले, और आप चाहते हैं कि ऐसी कोई सुरक्षित जगह हो जहाँ सुरक्षित रूप से आप इसकी रिपोर्ट कर सके और किसी की ठीक होने में मदद कर सके। तो श्रोताओं, भारत ने इसीलिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इसका नाम है मानस, नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन।
1: And no, Sarfarozi, it's not just another government helpline or website. It's a platform that turns ordinary citizens into active partners in building a Nasha Mukt Bharat. And the government of India launched Manas on 18 July 2024 under the Narcotics Control Bureau in collaboration with the Digital India Corporation. And the idea is beautifully simple to make every citizen a partner in making India drug-free.
0: श्रोताओं, ऐसे कामों में योगदान देने के लिए आपको बस एक नंबर याद रखना है और वो नंबर है 1933.
1: And listeners, it doesn't take superpowers to make a difference. Sometimes all it takes is one phone call at the right time, and that single step could prevent countless lives from being ruined.
2: सुनहरा कल, सुरक्षित भविष्य की कामना और भारत को नशा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प, यही है एक सशक्त राष्ट्र की पहचान। अवैध नशीली दवाएं और मादक पदार्थ किसी भी समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। देश के युवाओं को नशे की लत में ढकेलकर उनकी अवैध कमाई से देशद्रोही शक्तियों द्वारा देश में अशांति और अराजकता को बढ़ावा दिया जाता है। इन चुनौतियों की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है।
3: भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की है। खासकर सीमा पार से जो अवैध व्यापार चल रहा है उसे रोकने के लिए कई कदम उठा रही है।
1: Yes, and what's even more reassuring is the fact that you don't have to reveal your identity while reporting drug trafficking, peddling, illegal cultivation, or other suspicious activities on Manas. Your information remains confidential while the concerned agencies take it forward.
0: बिल्कुल अभिषेक, और लगभग यही मानस सिर्फ एक हेल्पलाइन से कहीं ज्यादा बन जाता है। सोचिए कॉलेज स्टूडेंट के बारे में जिसने एक्साइटमेंट में सिर्फ एक बार ड्रग्स को आजमाया और इससे पहले कि उसे पता चलता उसे इसकी लत लग चुकी थी। तो क्या ऐसे लोग सिर्फ सजा के हकदार हैं, या हमें उनकी जिंदगी को फिर से बनाने में, उसे बदलने में मदद करनी चाहिए?
1: मानस बिलीव्स इन द सेकंड अप्रोच। If someone is struggling with addiction, the platform connects them to trained counselors and rehabilitation support through the Ministry of Social Justice and Empowerment.

0: De-addiction helpline. And because addiction isn't just a law and order issue, it's also a health issue, and recovery begins when someone finally says, I need help.
1: और इससे जुड़े आंकड़ों की बात करें श्रोताओं, तो नशीले पदार्थों के सेवन पर भारत की पहली विस्तृत राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार लगभग 16 करोड़ लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और इनमें से 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस लत से बुरी तरह प्रभावित हैं।
0: And over 3 crore people use cannabis, while more than 2 crore use opioids, and nearly 28 lakh people urgently need treatment for opioid dependence alone. And it's easy to hear these numbers and move on, but every single number has a face, a family, and a story. And through Manas, citizens can report incidents anytime, 24/7, whether it's through the 1933 helpline, I beg your pardon, 1933 helpline, and the official portal, email, or the Umang app. Help is always within reach.
1: और अभिषेक, इन प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाली सभी रिपोर्ट को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड और ट्रैक किया जाता है, सही अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है, कागजों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक बार बार भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसकी जगह बेहतर तालमेल, ज्यादा पारदर्शिता और तेजी के साथ कार्रवाई होती है।
0: एंड अंडर मानस फ्यूचर रेडी फीचर्स लाइक मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, स्मार्ट IVRS, चैटबॉट्स एंड रीजनल लैंग्वेज असिस्टेंस आर ऑल्सो बीन डेवलप्ड सो दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड सिंपली because of language, and the mission doesn't stop only at reporting crimes.
1: वहीं MyGov के माध्यम से मानस नियमित रूप से क्विज, पोस्टर और रील बनाने जैसे कंपटीशन के जरिए युवा भारतीयों को इस पहल से जोड़ रहा है, जिससे ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक सरकारी मुहिम न रहकर जन आंदोलन बन गई है।
0: And to be honest, this is what Digital India truly looks like. Technology that doesn't just make life convenient, but technology that actually protects lives. And perhaps that's the most inspiring part of the Manas story. It reminds us that building a Nasha Mukt Bharat isn't the responsibility of one agency alone. It's a shared mission.
1: बिल्कुल अभिषेक, हमें याद रखना चाहिए कि कभी कभी किसी की जिंदगी बदलने की शुरुआत बहुत बड़े कदम से नहीं होती, इसकी शुरुआत होती है ध्यान देने से, आवाज उठाने से, एक फोन कॉल करने से और नजरें ना फेरने का फैसला करने से। श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है।
0: यस सर फिरोजी, एंड टुडे वी स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी फ्रॉम पुडुचेरी
1: जी,
0: एंड द जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिपमेयर हैज बिकम द फर्स्ट सेंटर इन इंडिया टू एनरोल अ न्यू बॉर्न इन द न्यू सेप 1 इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल एम्ड एट इम्प्रूविंग ट्रीटमेंट फॉर न्यू नियोनेटल सेप्सिस. And the study seeks to identify safe, effective, and affordable antibiotic combinations to tackle one of the leading causes of newborn deaths. We have more from a correspondent.
2: JIPMER's enrollment of India's first infant in the NEO-SEP-1 trial marks a significant step in the country's efforts to address neonatal sepsis, a life-threatening infection affecting newborns. The international multi-center study, coordinated by the Global Antibiotic Research and Development Partnership, will enroll nearly 3,000 newborns from hospitals across Asia and Africa over the next 3 years. The trial comes at a time when hospitals are facing an increasing burden of multi-drug-resistant bacteria such as Klebsiella and Acinetobacter. While the World Health Organization recommends ampicillin and gentamicin as the first-line treatment for neonatal sepsis, growing antimicrobial resistance has reduced their effectiveness. In addition, blood cultures failed to identify the disease-causing organism in nearly 80% of the suspected neonatal sepsis cases, forcing doctors to rely on a wide variety of antibiotic combinations. At JIPMER, the study has been led by Professor and Head of Department of Neonatology Dr. Nishad Plakkal, who also represents All Asia Pacific Trial Sites on the NEOSEP Trial Steering Committee. The trial will use an innovative, personalized or randomized clinical trial design that allows doctors to identify suitable antibiotic options for each newborn before treatment is randomly assigned. Researchers believe this approach will generate practical evidence to guide future treatment while prompting responsible use of antibiotics and helping combat antimicrobial resistance. For Parikrama, Bibin Esnath, Akashwani News, Puducherry.
1: श्रोताओं, पुदुचेरी से आपको अब लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक अनूठा मॉडल तैयार किया गया है। इन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री से जोड़ा गया है। हमारे रायपुर संवाददाता इस पर और जानकारी दे रहे हैं।
0: छत्तीसगढ़ में इस मॉडल को विकसित मटेरियल बैंक मॉडल का नाम दिया गया है। इसका संचालन पूरी

0: तरह से स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इन महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में डीलर दीदी के रूप में पहचान मिल रही है। इस मॉडल के माध्यम से राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को घर निर्माण के लिए जरूरी सामग्री जैसे ईंट, सीमेंट, छड़ आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है। इससे जहाँ स्व सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है, वहीं ग्रामीणों के लिए आवास निर्माण का कार्य अधिक सुगम, तेज और किफायती हो गया है। इस अनूठी पहल से न केवल आवास निर्माण को रफ्तार मिली है बल्कि स्व सहायता समूह की महिलाओं की आय में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। राज्य में 10,000 से अधिक महिलाएं इस मॉडल के जरिए लखपति दीदी बनने की दिशा में अग्रसर हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के इस मॉडल की प्रशंसा करते हुए इसे ग्रामीण आवास निर्माण को गति देने वाला प्रभावी नवाचार बताया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: Yes, and one of Odisha's most revered Jagannath shrines, Patali, Sri Kshetra, is believed to be where Lord Jagannath's idols were hidden beneath the earth or Patal to protect them from invaders. And the temple continues to preserve centuries-old Jagannath traditions with deep devotion. We have more from a correspondent.
2: Located amidst the serene surroundings of Subarnapur district of Odisha, the shrine attracts devotees throughout the year. What makes Patali Sri Kshetra unique is that the temple follows the same ritual calendar and ceremonial practices as the Jagannath temple in Puri. Temple priest says this continuity of rituals has been preserved for generations and remains the temple's greatest identity. Let's hear more about this from a research scholar on Jagannath culture, Dr. Arya Kumar Harshavardhan.
3: Patali Sri Kshetra is located at the foothills of Trikuta Hill in Subarnapur district of Odisha. Patali Sri Kshetra is one of the most revered spiritual and historical sites. According to tradition, the sacred idols of Lord Jagannath, Balabhadra and Devi Subhadra were hidden here for 144 years to protect them during invasions. Closely associated with the history of Jagannath culture, all its daily rituals and major festivals mirror those of Puri's Jagannath temple from Mangal Alati to Pahuda and festivals like Snana Punnima, Rathayatra, Bahuda Yatra, Sunavesa and Niladri Vijay. Every Seva follows the same sacred sequence. These traditions make Patali Sri Kshetra not just a place of worship but a vital center preserving Odisha's rich spiritual and cultural heritage.
2: These observances together with the temple's daily rituals have made Patali Sri Kshetra not only a place of worship but also an important center for preserving Odisha's rich spiritual and cultural heritage. Patali Sri Kshetra continues to draw pilgrims, researchers and visitors from across the state, offering them a glimpse into the timeless traditions of Lord Jagannath. For Parikrama, Supriti Mishra, Akashvani, Sambalpur.
4: श्रोताओं, अब आपको देंगे खेल के मैदान की भी हलचल। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। वहीं राउंड ऑफ 32 के मैच में अमेरिका ने आज बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की है। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा।
1: And moving on to the Women's Cricket World Cup, in the ICC Women's T20 World Cup, England will face South Africa in the second semi-final at the Kensington Oval in London today. The match will begin at 11 p.m. IST. And on to some business news, benchmark domestic equity indices ended over 0.7% higher today. The Sensex rose 579 points to close at 77,502. The Nifty also gained 170 points to settle at 24,176. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा सरफिरोजी और अभिषेक के साथ। अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे कुछ महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
5: In today's episode, we remember freedom fighter Yusuf Meher Ali, who died on the 2nd of July 1950. Yusuf Meher Ali is credited with giving the slogans, "Simon, go back," and "Quit in

0: अवधि लोक साहित्य के लिए सराहना मिली। साहित्य में इनके योगदान के लिए 2022 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विद्या सिंह की 118 रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास, लोकगीत संग्रह आदि शामिल हैं। सीता के विषय में उनकी रचना सीता सुरुजवाग ज्योति भी बहुत चर्चित रही।
1: And Dilip Sardesai passed away on this day in 2007. He was a legendary Indian international cricketer, renowned as one of India's finest batsmen against spin bowling. He holds the unique distinction of being the only Goa-born cricketer to have represented the Indian national team. Sardesai is often celebrated as the Renaissance man of Indian cricket, a moniker given to him by former selection committee chairman Vijay Merchant. And he earned this title during the watershed 1971 season in the historic 1971 test series against the West Indies. Sardesai was the team's leading run scorer with 642 runs, setting the foundation for iconic series victory and paving the way for Sunil Gavaskar's debut success.
0: आज ही जन्मदिन है आलोक धनवा का। ये प्रसिद्ध हिंदी जनकवि है। आलोक धनवा हिंदी के उन बड़े कवियों में से हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। उनकी गोली दागो पोस्टर, जनता का आदमी, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां जैसी कविताएं बहुत चर्चा में रही। दुनिया रोज बनती है, ये उनका बहुत चर्चित कविता संग्रह है। इनकी कविताओं के अंग्रेजी और रूसी भाषा में भी अनुवाद हुए हैं।
1: Lindsay Lohan was born on this day. She's an American actress, singer and producer. She rose to fame as a child star in Disney's The Parent Trap in 1998 and became an iconic teen idol in the early 2000s with classics like Freaky Friday and Mean Girls. Let's listen in to the hit track Freaky Friday. Yeah.

0: और मोहम्मद अजीज ने लता मंगेशकर, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति जैसी मशहूर गायकों के साथ युगल गीतों में भी अपनी आवाज दी।
1: Let's go ahead and listen to a medley of his hit songs.

0: श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की

0: सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाईची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे भारत द्वारा 3 दशक से पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तिरुपति में किए गए राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के अनुरूप था। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई परियोजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजुलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कथित तौर पर अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथिन लाओ चाय पाओ नामक एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special.

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं प्रियांशी भटनागर और आप सभी का इस्तकबाल है कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। श्रोताओं, कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाजों से ज्यादा खामोशियां बयां करती हैं। इश्क भी उन्हीं में से एक है। कभी एक खूबसूरत ख्याल बनकर दिल में उतरता है, कभी निगाहों में अपनी दास्तां लिख जाता है, कभी एक तमन्ना की सूरत अख्तियार करता है तो कभी इंतजार में भी अपनी रौनक बरकरार रखता है। आज की इस खास पेशकश में हिंदी सिनेमा की कुछ दिलनशी फिल्मी गजलों के साथ इश्क की इन्हीं मुख्तलिफ कैफियतों को महसूस करेंगे। सिलसिले की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की उस सदाबहार गजल से जिसने न जाने कितने दिलों में मोहब्बत का पहला ख्याल जगाया। आइए सुनते हैं।

पहला ख्याल जब दिल में ठहर जाए तो उसकी तर्जमानी अक्सर निगाहें करने लगती हैं। शायद इसी कैफियत को एक शायर ने यूं अर्ज किया है। निगाह ए यार को अब क्यों ना देखूं शौक से जिगर, निगाह ए यार को अब क्यों ना देखूं शौक से जिगर, कि उसमें अपनी ही तकदीर नजर आने लगी है।

कभी कभी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इजहार साथ होने में नहीं बल्कि इंतजार में छुपा होता है। वक्त गुजर जाता है लेकिन कुछ एहसास अपनी ताजगी नहीं खोते। इन्हीं जज्बातों को अपनी पुरअसर आवाजों से सजाया है आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह ने। आइए सुनते हैं फिल्म एतबार से ये गजल।

तमन्ना। शायद इसी एहसास को फिराक गोरखपुरी ने इन अल्फाजों में ढाला है। अर्ज किया है, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से ही पहचान लेते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज की इस महफिल से मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है इश्क की ये कैफियतें देर तक आपके दिल में गूंजती रहेंगी। फिर मुलाकात होगी, तब तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हंसते जख्म की इस दिलनशी गजल के साथ प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

0: participation in sports, the Prime Minister described the two initiatives as inspiring models for the rest of the country. Our Kohima correspondent Asuno brings us this report.
1: Nagaland's sustained efforts to promote football at the grassroots level have received national recognition, with Prime Minister Narendra Modi praising the Nagaland Baby League and the Nagaland Women's Futsal League during his Mann Ki Baat address. The Prime Minister said the Nagaland Baby League is much more than just a football tournament. Designed for children between 5 and 12 years of age, the league focuses on identifying and nurturing young talent while encouraging physical fitness and teamwork. Over the past 3 years, it has provided boys and girls across the state with opportunities to develop their football skills through age-specific competitions and advanced coaching.
2: Mujhe नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।
1: The Prime Minister also applauded the Nagaland Women's Futsal League for creating a competitive platform for women footballers. He noted that futsal, a fast-paced 5-a-side indoor version of football, demands quick decision-making and technical ability, and said the league is helping young women showcase their sporting talent.
2: साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूँ, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूँ। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं।
1: The Prime Minister's recognition is expected to further boost Nagaland's grassroots football movement and inspire greater youth participation in sports across the state. For Northeast Diary, Asunyo from Kohima.
0: In Agartala, the birth anniversary of Rabindranath Tagore has long been synonymous with the cultural organization Channir, whose annual tribute has become a cherished tradition. Carrying forward its commitment to celebrating literary and musical icons, Channir recently hosted its annual program, Srijan Chand Nazrul, honoring the legacy of Qazi Nazrul Islam. This year's event featured acclaimed singer Raghav Chatterjee as the guest artist and mentor. Our Agartala correspondent Suman Bhattacharjee brings us this report.
3: In Agartala, celebrations of Rabindranath Tagore's birth anniversary have long been synonymous with one cultural institution, Chandoli. For decades, the organization has been a familiar presence at the Rabindra Shatabarshiki Bhavan premises, where its early morning poetic tributes have become an integral part of the city's cultural calendar. Founded in the mid-1970s by a group of passionate young cultural enthusiasts, Chandoli has continued its remarkable journey with unwavering dedication to literature, music, and the arts. While its roots are deeply connected with the celebration of Rabindranath Tagore, in recent years, the organization has expanded its cultural canvas to embrace another towering figure of Bengali literature and music, Qazi Nazrul Islam.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: रहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defence and health that will make the partnership futuristic and limitless.

0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense, and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart, Sanae Takaichi, in New Delhi this afternoon. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal today said that investments have emerged as a key driver of India's strategic partnership with Japan and are expected to further strengthen bilateral ties. Addressing the Indo-Japan Strategic Dialogue on Shaping the Asian Century, organized by a private television channel, Mr. Goyal said, opportunities are opening up for India's skilled workforce, while the government's focus remains on ensuring equitable development for all under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
2: It's a partnership that has many dimensions. Trade also is an important element of this partnership, particularly given our complementary strengths. What we get from Japan are largely technology-driven products. What we sell to Japan are also value-added products. We are not selling raw materials or intermediates. We are selling high-quality, precision-engineered material, auto component, electronic component. So, in effect, this particular relationship has both the trade and investment dimension. Therefore, I think it's a good partnership.
1: India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said, a terrorist is a terrorist, and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
3: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
1: Governor of Bihar, Lieutenant General retired Sayyed Atta Hasnain, and Minister of State for External Affairs Pavitra Margarita will visit Iran tomorrow to attend the funeral ceremony of the late Supreme Leader of Iran, Grand Ayatollah Sayyed Ali Khamenei. The southwest monsoon today has further advanced into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, and some parts of Rajasthan. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका अभिनंदन। मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बात एक ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव की जिसका सीधा संबंध देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों से है। 1 जुलाई से पूरे देश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 यानी VBG रामजी एक्ट लागू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्का परिवल्ली गांव में विकसित भारत जी राम जी योजना के राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मजदूर कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
6: पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना शेयर दिया है, पैसा दिया है, वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया। ये मजदूरों के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा कमिटमेंट है। कल एक दिन में सभी राज्यों में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू हो गई है। 5 लाख से ज्यादा लोगों को पहले दिन ही रोजगार मिला है।
5: इस नए कानून के अंतर्गत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही मजदूरी दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी, क्या ये बदलाव केवल रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने तक सीमित है या इसके पीछे ग्रामीण विकास की एक नई सोच भी है, और सबसे अहम बात, इसका गांवों और ग्रामीण परिवारों पर क्या असर पड़ेगा। करीब 2 दशकों तक मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार की सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन समय के साथ गांवों की जरूरतें बदली हैं। आज गांव में सड़क, जल संरक्षण, डिजिटल व्यवस्था, आजीविका के नए साधन और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी विकास की प्राथमिकताओं में शामिल हो चुकी हैं। इसी बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नया कानून लागू किया है, जिसका उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं बल्कि रोजगार को ग्रामीण विकास से जोड़ना है। तो आइए श्रोताओं, समझते हैं कि वीबीजी राम जी अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं।
7: इस कानून के तहत अब हर पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष में 125 दिनों के अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। पहले ये सीमा 100 दिन थी। रोजगार की मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो संबंधित राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। मजदूरी का भुगतान भी सीधे बैंक या डाकघर के खातों में किया जाएगा और भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करने का प्रावधान है। देरी होने पर मुआवजे का भी प्रावधान है। अधिनियम के साथ मजदूरी दरों में भी बड़ा संशोधन किया गया है। अब देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अधिसूचित दैनिक मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी। राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.8 रुपए से बढ़कर 327.4 रुपए प्रतिदिन हो गई है। 21 राज्यों और प्रशासनिक इकाइयों को पहली बार 300 रुपए के न्यूनतम स्तर पर लाया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में 15-25% तक की वृद्धि हुई है, जबकि हरियाणा, गोवा, केरलम जैसे राज्यों में मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन के आसपास या उससे अधिक है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित उपस्थिति, डिजिटल निगरानी और जनता बोर्ड जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल की गई हैं। चल रहे सभी कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। ईकेवाईसी वाले पुराने जॉब कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे। इसके अलावा निर्बाध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पहले ही 95,692 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर चुकी है।
5: किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि लाभार्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो। ऐसे में सवाल है कि इस बदलाव को सुचारू बनाने के लिए क्या तैयारियां की गई है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी समाचार से विशेष चर्चा में ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे ने इस विषय पर क्या कहा।
8: जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। यह भारत सरकार की प्राथमिकता है, इसीलिए एक सुचारू ट्रांजिशन का प्लान भारत सरकार ने बनाया है, जिससे कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारा श्रमिक भाई अगर 30 तारीख को एक कार्य पर जा रहा है और वह कार्य अपूर्ण है, वो आगे भी चलता रहेगा, तो वह श्रमिक दूसरे दिन भी 1 जुलाई को भी बिना किसी दिक्कत के MGNREGA का वह जो उसका जॉब कार्ड अभी उसके पास है उसी का सत्यापन हमने ऑल रखा है, तो उसी जॉब कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए वह आगे भी कुछ दिनों तक विकसित भारत जी राम जी में निर्बाध तरीके से काम पा सकेगा। हम ये चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, जबकि ये ट्रांजिट

0: शिक्षा निकाय अंडर विकसित भारत जी राम जी।
1: रोजगार उपलब्ध कराना इस नए कानून का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन इसकी सोच इससे कहीं व्यापक है। ये रोजगार को गांवों के दीर्घकालिक विकास से जोड़ता है। यही वजह है कि इसमें कामों के चयन से लेकर उनके क्रियान्वयन तक हर स्तर पर ग्राम पंचायत को केंद्र में रखा गया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि कैसे ये पहल ग्रामीण भारत की विकास यात्रा को गति देगा।
2: इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्थानीय लोगों की भागीदारी से विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेगी। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बनेंगी और विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। अधिनियम के तहत विकास कार्यों को चार प्रमुख क्षेत्रों में व्यवस्थित किया गया है। पहला है जल सुरक्षा, जिसमें जल संरक्षण, जल संचयन और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर जोर होगा। दूसरा है ग्रामीण आधारभूत ढांचा, ताकि गाँव में आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएं और संपर्क बेहतर हो सके। तीसरा, आजीविका से जुड़ा बुनियादी ढांचा, जिससे कृषि, पशुपालन और अन्य ग्रामीण गतिविधियों को स्थायी आधार मिल सके। और चौथा, चरम मौसम की चुनौतियों से निपटने वाले कार्य, ताकि गांव बाढ़, सूखा और अत्यधिक गर्मी जैसी परिस्थितियों के प्रति अधिक सक्षम बन सके। इस कानून की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसे अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ जोड़कर लागू किया जाएगा। इससे विकास कार्यों की गति और प्रभाव दोनों बढ़ने की उम्मीद है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी विशेष जोर दिया गया है। ये कानून केवल आज के रोजगार की नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के गाँव की योजना तैयार करने का प्रयास है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में पंचायतों की इसी भूमिका और ग्रामीण विकास की नई कार्य प्रणाली पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव रोहिणी भाजी भाकरे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, वो है पंचायत। तो पंचायत ही इसका प्लान बनाएंगी, परंतु पंचायत में प्लान बनाने के बाद यह प्लान जो है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे एग्रीगेट हो जाएगा। और पीएम गति शक्ति जैसे बहुत अच्छे टूल्स के माध्यम से जब यह एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक प्लान बनेगा और नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के माध्यम से सारे हितधारक अगर ये देख पाएंगे कि हर एक पंचायत में किस प्रकार के काम कौन से कैटेगरी के कहां तक आए हैं और उस पंचायत का विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो है वह कितने परसेंट तक एग्जीक्यूट हो गया है, तो इससे जो है फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत ही सुचारू रूप से हम पंचायतों को एक विकसित पंचायत की ओर बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। विकसित भारत जी राम जी में श्रम भी है, उसका सम्मान भी है भारत देश के ग्रामीण एरिया के लिए। विकसित भारत जी राम जी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक पहल है।
1: श्रोताओं, वीपी जीराम जी अधिनियम केवल रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से सरकार रोजगार, बेहतर मजदूरी, ग्राम पंचायत आधारित योजना और स्थानीय भागीदारी को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि विकसित भारत का रास्ता विकसित गांवों से होकर गुजरता है। ऐसे में वीपी जीराम जी अधिनियम रोजगार, आजीविका और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ते हुए विकसित भारत 2047 के संकल्प को आगे बढ़ाने का प्रयास है। इसी के साथ आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने।
3: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्यां जापान समकक्षेण प्रधानमंत्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां मंत्रणां विहितवान्। उभाभ्यामपि देशाभ्याम आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, औषध, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु क्षेत्रेषु अनेके संधयः हस्ताक्षरिताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रावोचत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक संबंधेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा समुत्तीर्णा। संयुक्तराष्ट्र महासभायां अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते

0: भारतस्य कश्चन चिरलंबित प्रस्तावः समर्थितः। जम्मू कश्मीरस्य भगवती नगर आधार शिविरात् तीर्थयात्रिणां प्रथमस्य दलस्य प्रस्थानेन सह श्री अमरनाथ यात्रा विधिवत समारब्धा। दक्षिण पश्चिम प्रावृत्कालः अद्य समग्र दिल्ली क्षेत्रं संप्राप्तः तथा च अयम् उत्तर पश्चिम राज्यानां केषुचित् भागेषु अपि अग्रेसरति। अपि च फीफा विश्वचषके संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन 2000 परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा औषध रक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख सन्धयः परस्परं विनिमयी कृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमंत्रिणा सानेता काइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते। सहैव भारत जापान सम्बन्धिन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सोत्तीर्णा। तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं संजातम्।
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
0: जापान देशस्य प्रधानमंत्री सानेता काइची इत्येषा गत सायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमंत्री रूपेण ताकाइची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विक पटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापान देशस्य प्रविधि विशेषज्ञता निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति, तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गम्भीरं च विधातुं संकल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता रक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः। वैश्विकार्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखांकितं यत् वर्तमान समये समग्रं विश्वं आपूर्ति श्रृंखलावरोधैः व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते। अत्रांतरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते। विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धि 7.7% आसीत। तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण कर प्रणाल्यां सुशासने व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि। स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री साने ताकाइची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधान विषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान देशः पावर एशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापारं सुदृढं कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदा स्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयंत्रस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनं कृतम्।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। संयुक्तराष्ट्रस्य वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीतेः नवम समीक्षायां या च 44.1% मतैः अंगीकृता। तत्र सदस्य देशाः आदिष्टाः यत् ते विगत त्रिदशकेभ्यः भारतेन प्रस्तावितस्य अस्य अभिसमयस्य कृते अन्तिमरूपं प्रदातुं पूर्ण प्रयत्नान् विदध्युः। वार्षिकस्याः श्री अमरनाथ जी यात्रायाः कृते 22.8 million तीर्थयात्रिणां प्रथम समूहं जम्मू नगरस्य भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविरात् विस्तृत सुरक्षा व्यवस्थायां हरितध्वजं प्रदर्श्य उपराज्यपालेन मनोज सिंहावर्येण अद्य प्रेषितम्। देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः तीर्थयात्रिणः पवित्र यात्रायां भागग्रहणाय जम्मू नगरम् आगच्छन्तः सन्ति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् विकसित भारत रोजगार इत्यस्य तथा आजीविका मिशन इत्यस्य प्रत्याभूति वीबीजी रामजी अधिनियम 20-25 आजीविका सुनिश्चितताया ग्रामीणाजीविकाया सुदृढ़ीकरणस्य तथा च देशस्य ग्रामाणां विकासस्य गतिं वर्धयितुं प्रमुखं पदक्षेपः अस्ति। अद्य नैऋत्य प्रावृट्कालः सम्पूर्णे दिल्ली नगरे गुजरातस्य केषुचित् भागेषु उत्तरप्रदेशस्य शेषभागेषु मध्यप्रदेशस्य अधिकांश भागेषु हरियाणा पंजाब प्रदेशयोः राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु च अग्रे प्रवर्धितः। राष्ट्रिय राजधान्यां निम्नवृष्ट्या उष्ण आर्द्रस्थित्यां न्यूनता आगता। फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अमेरिका देशः 2020 वर्षानन्तरं प्रथमवारं नॉकआउट चरणे विजयं पंजीकृतवान्। बोस्निया हर्जेगोविना देशौ 2-0 पराजितवान्। बेल्जियम देशः अपि सेनेगल देशस्य उपरि अतिरिक्त समयस्य विजयेन राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान् इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे. आज चर्चा करने

0: के लिए स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
1: धन्यवाद।
0: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
2: थैंक यू प्राची। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज राइज, सेंसेक्स एड्स नियरली 580 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,176। इंडियन जापान एक्सचेंज अग्रीमेंट्स इन फील्ड्स ऑफ including economic and energy security, pharmaceuticals and AI, and global crude oil prices declined.
0: घरेलू शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 580 अंक बढ़ा, निफ्टी 24,176 पर बंद हुआ। भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा AI सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए और कच्चे तेल के वैश्विक दाम घटे।

0: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, आइए अब रुख करते हैं और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज 0.7% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 579 अंक बढ़कर 77,502 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 170 अंकों की बढ़त के साथ 24,176 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में 0.5% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। इससे पहले बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुले और लगातार दूसरे दिन भी इनमें बढ़त रही। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और सकारात्मक भू राजनीतिक रुझानों के कारण निवेशकों का आत्मविश्वास बना रहा।
0: Benchmark domestic equity indices ended over 0.7% higher today. The Sensex rose 579 points to close at 77,502. The Nifty gained 170 points to settle at 24,176. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index added 0.5% and the Small-Cap 100 index climbed more than 1.2%. Earlier markets opened on a positive note and extended their upward momentum for the second consecutive session. Investor sentiment remained upbeat, supported by softer crude oil prices and positive geopolitical developments.
1: Sensex में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंफोसिस 5.5% से अधिक, वहीं टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में लगभग 4.5% का उछाल आया। उधर खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में लार्सन एंड टूब्रो 0.8%, मारुति में लगभग 0.5% और एक्सिस बैंक में 0.3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 20 out of 25 sectors ended in positive zone. Among the key gainers, IT climbed almost 4.4%, focused IT rose 4.3% and consumer durables as well as realty added over 1.4%. In contrast, capital goods fell over 0.7%, telecommunications slipped nearly 0.7% and power lost over 0.6%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,536 companies advanced, shares of 1,740 companies declined and shares of 182 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर होकर 95.39 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। उद्यन, अगर हम आज के ट्रेजेक्ट्री की बात करें कि आज किस तरीके से मार्केट ने प्रदर्शन किया और क्या प्रमुख कारक रहे जिस वजह से मार्केट का ये रुझान हमें देखने को मिला, तो आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, ये मतलब सारी जो बातें हैं एक चीज के साथ हम आराम से जोड़ सकते हैं, वो ये है कि तेल से जुड़े हुए सुर्खियां क्या रही, हेडलाइंस क्या रही, वो सब पॉजिटिव रही हैं कि जैसे अपने
1: दाम घट गए,
2: कुछ प्रोग्रेस इनडायरेक्ट टॉक्स में के रिपोर्ट्स आए, कतर के जो

0: वो सारा एक डोमिनो इफेक्ट, पॉजिटिव, इसको वर्चुअस साइकिल बोलते हैं, वो उस तरीके से घूमता है। और आप देखेंगे कि हर जगह में कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखिए हम रुपए के वैल्यू में वो बात नजर नहीं आ रही, पर आरबीआई ओवरऑल एक मैनेजमेंट कर रही है जिसमें वो फॉरेक्स रिजर्व्स, आपका करेंसी में मूवमेंट ज्यादा ना हो, उसके बारे में, तो वहां पे उसकी बात को थोड़ी देर के लिए हम अलग रखना पड़ेगा। पर इसके अलावा जो है बाकी जो चीजें हैं, आप सब जगह में एक इट्स रिकूपिंग, जो स्लाइड हुआ था वो ऐसा लग रहा है कि वापस आ रहा है
1: जी। यू नो उदयन, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक सेक्टर्स। वी हैव सीन अ रैली टुडे इन द आईटी सेक्टर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड दैट वी हैव बीन सीइंग इन द आईटी सेक्टर। यू नो इफ यू लुक एट इट ओवरऑल, इन द लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस it tanked 17%. In the last 4 trading sessions it was down 7%. But today if I talk about Nifty in IT index, there is a rally of 4.64%. What's driving this rally in the IT sector? Because that's one of the major reasons we have seen the Sensex and the Nifty, you know, ending in green.
0: So you're so right. And a lot of these IT stocks, by the way, are large caps. And, you know, their capitalizations are large.
1: Yes.
0: And there's this whole theory going in, and I buy into that theory. Experts are saying that a lot of the exodus of money that has happened is FPI money has been, they were invested in large caps, whereas the domestic institutions went in and bought mid cap and small cap. So two different sectors of the market have got affected. So So at some point, you know, when you keep buying, rather selling, it happens with buying also. You suddenly realize, oh, you know, maybe we have done enough. Maybe we need to do the different thing. The other very interesting thing that has happened today is maybe it happened yesterday, but it came to my notice today, is two very prominent brokerages, or shall we say research firms.
1: Okay.
0: Maybe brokerages would be a rather appropriate word. They have come out with notes where they are saying that it's not so bad. You know, hey, it's not so bad after all. It's good. You know, they're going to bounce back. So, what I'm trying to hint,
1: it has affected the sentiments.
0: Yeah, you know, subtly that sometimes, you know, the disclaimer that you gave right in the beginning of the program. So every investor needs to think through this little bit of critical thinking, that collective wisdom, yes, it's important.
1: Yes.
0: But sometimes that wisdom has to work for you. If it doesn't make sense to you, maybe you should be thinking harder. So basically what I'm trying to say is that it is, now they've decided that, it's IT, Indian IT deserves love, and that's why it's getting it.
2: Right. Uday, ye to humare IT sector ki baat rahi, lekin hum agar FIIs ki nikasi pe ek bar gaur kare, to humne agar pichle satr ko agar hum dekhen, to usme bhi comparatively jo hai wo kam nikasi hui hai, aur constantly jo DIIs hain wo to support kar hi rahe hain, to kahin na kahin ये भी एक मोमेंटम बांधता है मार्केट्स को अप करने के लिए।
0: देखिए इसमें एक और थीम भी आ जाती है, जब कभी सबने तब भी कहा था और अब भी ये बात है कि जब भी उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लगेगा कि नहीं नहीं ये जो एआई, सो कॉल्ड एआई थीम है, जहां पे फाउंडेशनल जो काम हो रहा है, चिप्स बन रहे हैं, मॉडल्स बन रहे हैं, उनके ऊपर जो इतना पैसा लग रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह में, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जौन से ऐसे दिन होंगे जहां पे लोगों को नर्वसनेस लगेगी, तब भारतीय मार्केट्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये वही वाली बात है, किस दिन विच साइड ऑफ द बेड यू गेटिंग ऑफ, कैसे आप सो के उठे, कौन से बिस्तर के कौन से साइड से उठे, उस हिसाब से आपका मूड आपका बन रहा है। तो इसलिए जो है भारत के जो निवेशक हैं उनका जो रोल है, कई लोग उसको बहुत सिनिकली देखते हैं, ये तो मतलब अजीब लगता है मेरे जैसे लोगों को, पर वो एक स्टेबिलिटी उन्होंने बना के रखा हुआ है और उनका जो योगदान है वो जबरदस्त है। सो दिस इज कि डोमेस्टिक जो पार्टिसिपेशन, आप और हम जैसे लोग और इस प्रोग्राम को सुनने वाले लोग जो भारत की प्रगति में एक हिस्सेदारी ले रहे हैं
1: जी,
0: वो एक बहुत जबरदस्त कहानी है जिसके बारे में उतनी बात अभी तक नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, हो रही है, बट दिस इज अ ट्रिमेंडस स्टोरी विच प्रोबेबली नीड्स मोर प्ले देन इट्स गेटिंग
1: राइट। उदयन, वुड यू से दैट यू नो वी

0: India and Japan, the Japanese Prime Minister is, of course, in India on a three-day visit, and a slew of agreements were, signed, and there were memorandum of cooperations today that were agreed upon. So would you say that, and Japan has also announced $10 billion fresh investment in India across AI, defense technology and energy security. Would you say that that is also, added a bit to the momentum, positive momentum in the markets, or is it a different...
1: I don't think people in the markets would be so...
0: Okay.
1: See, these things will play out in the future. Right. Markets typically don't look so far into the future.
0: Right.
1: They reward... if you see unencumbered cash flows coming in, they will immediately go and reward. One can always argue that AI is out in the future and so on and so forth. So sometimes it's also a FOMO, fear of missing out. You don't want to miss out on something which is once in a generation. So wisdom is different, but that is important, the things that you're talking about, because Japan has been doing business with us for ages now.
0: Ages, yes.
1: And if you ask me, in my opinion, that relationship has been underdone, the bromance or whatever you want to call it, that relationship that we have, it probably it has been underserved despite whatever breadth it has. And it probably is the time to make up for lost time.
0: Yeah.
1: And it's not a day too late.
0: Right. We will talk about the India-Japan, agreements a little later in the program. But right now, I think, Prachi, let's why don't you talk about the Asian markets and European
2: markets.
0: Bilkul,
2: Anubha. Shrotaon, aaiye rukh karte hain Asia aur Europia bazaar ki taraf. प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में आज गिरावट आई. चिप सेक्टर में गिरावट की वजह से दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 8% फिसला. जापान का निकेई 2.5%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 2% और ताइवान का ताइएक्स 0.5% से अधिक लुढ़का. वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% से अधिक और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 0.8% ऊपर बढ़ा. वहीं बात यूरोपीय शेयर बाजार की करें तो यूरोपीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स 1% से अधिक, फ्रांस का कैक 0.8% से अधिक, जबकि लंदन का फुटसी 0.5% ऊपर कारोबार करता नजर आया. लगभग 8% हम कॉस्पी में देख रहे हैं गिरावट. महोदय, किस तरीके से आप इसे देखते हैं और ये क्यों किस तरीके से आ रहा है, आप प्लीज इसे बताएं.
1: देखिए, वो एक रनअप था जो बिल्कुल तेजी के साथ होता चला गया. और कई बार क्या होता, चिप्स आप जैसे हमारे भारतीय बाजारों में देखते हैं कि पहले एक सर्टन सेक्टर में आपको पसंद आने लगे लार्ज कैप, फिर आपने कहा कि नहीं नहीं लार्ज कैप तो ये तो बहुत महंगे हो गए, थोड़ा और नीचे चलते हैं, मिड कैप में चलते हैं. तो उस तरीके से जब आपने देखा TSMC और डच कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ जो डिजाइन करती है चिप्स, तो वो जब आपको लगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप सैमसंग और हाइनेक्स पे चले गए जो कि आपके दे आर आउटस्टैंडिंग लीडिंग मेकर्स, पर आप उस वहां पे फोकस करने लग गए. और उसके अलावा तब हेडलाइंस भी ऐसी थी, एनवीडिया ने हैंडशेक किया, तो उससे आपको सारे जो कंपनीज हैं आपस में एक दूसरे के साथ एक जबरदस्त हैंडशेक कर रहे हैं.
2: मैं यही बल्कि कहना भी चाह रही थी कि अभी यही बाजार है जो अपनी ऊंचाइयों पर भी गया और वही बाजार है जो आज हम देख रहे हैं.
1: तो जहां पर भी अगर जब आप फ्यूचर की तरफ देखते हैं, जैसे आप थोड़ी देर पहले बात होती थी, व्हेन थिंग्स आर आउट इन द फ्यूचर, इट्स अ ग्रोथ सेक्टर, आपको नहीं मालूम कि ये आप किसी को कह नहीं सकते कि आज ये आपने पिछले 3-4 महीने पहले ये बोला था, ये क्यों नहीं हुआ, ये दिस इज नॉट राइट. 4 months डाउन द लाइन, इट्स प्रोबेबली वी आर टॉकिंग अबाउट 3-4 years, चीजें होंगी. सो पीपल आर रेजिंग मनी राइट नाउ. तो उसमें वहां पे जब आपको हेडलाइन ऐसा कुछ आता है, बिकॉज ये कन्विक्शन जो है, आप एक जिसे लीप ऑफ फेथ कहते हैं ना, मेरे को मालूम नहीं यहाँ पे सर्कस कितने लोगों ने रियल लाइफ में देखी है, तो वहां पे ट्रेपीज आर्टिस्ट होते हैं जो हवा में झूलते हैं, तो एक आदमी छलांग मारता है या लेडी छलांग मारती है, उनको पकड़ा जाता है, दूसरे लटक रहे होते हैं वो पकड़ते हैं, उसको लीप ऑफ फेथ बोला जाता है. तो ये लीप ऑफ फेथ की तरह है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने कितना कन्विक्शन है, आपके फेथ है,
2: यानी सुर्खियां पढ़ करके आप
1: जी आपको यह है कि आपने मैंने वो छोड़ दिया है जो मैंने पकड़ी थी और मेरा जो साथी है वो मेरे को पकड़ लेगा. वैसे तो नीचे नेट है, जमीन पर. पर दिस इज कॉल्ड द लीप ऑफ फेथ. तो लीप ऑफ फेथ जब डगमगाने लगती है या उसमें कमजोरी आ जाती है तो आप वो देख रहे हैं जो आज आप देख रहे हैं. क्योंकि कुछ सुर्खियां ऐसी निकली कल जिसके वजह से देर इज दिस होल रिविजन कि नहीं मे बी वी आर जस्ट गेटिंग टू बुलिश आउट देयर. तो ये चीजें जो एडजस्टमेंट होती है समटाइम्स यू आर मूविंग ऑन द फ्यूल्ड बाय सेंटिमेंट. तो सेंटिमेंट का जो फ्यूल है जब वो थोड़ा कम होता है तो आपका गियर लोअर गियर में आ जाता है.
0: जी, लेट्स मूव ऑन टू द यूएस मार्केट्स. वॉल स्ट्रीट एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट यस्टरडे एज चिप स्टॉक्स डिक्लाइंड. अमंग द मेजर इंडिसेस द नैस्डैक कंपोजिट लॉस्ट नियरली 0.7%, द S&P 500 फेल 0.2%, व्हाइल द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंडेड मार्जिनली लोअर. मीनवाइल फेडरल रिजर्व चेयरमैन केविन वॉश सेड एट एन इवेंट दैट ही वुड रिमेन फर्मली कमिटेड टू द यूएस सेंट्रल बैंक्स 2% इन्फ्लेशन टारगेट and would disappoint anyone expecting loose monetary policy. On the macroeconomic front, non-farm payroll employment rose by 57,000 in June. According to the Labour Department report, the unemployment rate dipped to 4.2% last month from 4.3% in May. Then just want to ask you a very quick question. This, statement coming out of the new Fed chair, Kevin Warsh, saying he's firmly committed to, you know, maintaining the 2% inflation rate and going to disappoint anybody who expects an easier monetary policy. This is despite, you know, President Trump has been insisting of, he's been calling for interest rate cuts. What does it, indicate?
1: Well, he's working on data, and the data is showing that the labor market is holding well. They're still creating jobs and people are not firing. Normally, yeah. What used to happen is at some point, during some cyclical periods, people would be getting laid off.
0: Right.
1: But after the COVID, that's the prevailing wisdom, that after COVID, when hiring was such a problem, people are going slow. They're saying that, okay, we're not going to let go of people. Mm. So they're holding it on. So economists call this, when people are really well employed, employed to the capacity, economy's capacity, it's called full employment. So a lot of people are arguing that US economy is near full employment levels. So he doesn't have a worry about employment. He has a worry about inflation. So that's what he's trying to address.
0: Right.
2: आगे बढ़ते हैं. भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की. संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं. दोनों ही देश आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को समझते हैं.
3: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं. इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है. इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे. एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी.
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रौद्योगिकी साझेदारी भारत जापान सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होगा.
3: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी. इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है. भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं. जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा.
2: उदयन, अभी प्रधानमंत्री को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर जो क्षमता है उसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति शक्ति देगा. क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम भी ऑफकोर्स कम्पीट कर रहे हैं, तो हमारी जो एक परिकल्पना है विकसित भारत की, उसको किस तरीके से ये साकार करने में मददगार रहेगा?
1: देखिए, कई बार कई चीजें हैं, अब आपको जीरो से स्टार्ट करने में टाइम लगता है. तो अगर आप वो पार्टनरशिप से करते हैं तो जहाँ पे आपके दूसरे एक पार्टनर कंट्री हैं जिस उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं उन जो जहाँ पे वो सक्षम ज्यादा है हमसे वो चीजें वो अपने टेबल पे लाते हैं

0: और हम हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो कैपेबिलिटी वो हम मेज पे लाते हैं। तो ये वो वाली अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जहाँ पे हमारे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो डिजाइनिंग जो स्ट्रेंथ है, उसको मिलके हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करें। क्योंकि देखिए एक पर्टिकुलर देश का नाम लेते हुए ना लेते हुए ये कहना जरूरी है, दोनों देश दूध के जले हैं
1: जी,
0: तो छाछ भी वो फूक फूक के पी रहे हैं
1: जी,
0: ठीक है। तो वो क्रिटिकल मिलेनियल से जुड़ा हुआ जो एक्सपीरियंस है, दूसरी चीजें जो है उसको दिमाग में रखते हुए ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। और ये जरूरी भी चाहिए आपको, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप, कार प्रोडक्शन बंद हो गया या कुछ और हो गया, डिसरप्शन हो गया जस्ट बिकॉज कोई एक स्टेटमेंट चली गई, तो वो उसके ये वो तो छोटी सी बात है, ये जरूरत भी है और ये लेवरेज किया जाए। जैसे कि मैंने कहा ये अंडरसर्व था, ये अब वहां पे पहुंच उस पायदान में जा रहा है, उस स्तर में जा रहा है जहां पे
1: Right. Let's move on to another related story. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits.
2: कुछ ही महीने पहले हमने टैक्सेशन, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए। हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव दे रहे हैं जिसका लाभ आप सभी उठा सकते। और यही कारण है कि लगातार पिछले चार वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है।
1: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. She said, at the recent G7 summit, she had presented three proposals to strengthen energy security, ensuring free and transparent energy trade, announcing strategic energy stockpiles, and promoting cooperation between consuming and producing countries. Question here to you, Udayan. You know, during this today, when these MOCs were signed and agreed upon, a very important point was that the two countries have set a target of 10 trillion yen. To be invested by Japan in India in the next decade and doubling the number of Japanese companies operating in India. Now, while this is obviously very good news for India, but overall, if you look at it, India and Japan are two of the most important economies in the Asian region. So how would it benefit not just the two countries, but even the whole area, the Asia per se?
0: It has already been happening, Anuva. Scooter production. They don't cater. I'm talking about Japanese.
1: Yes.
0: They're not just here. They get exported. So success story, that template can be replicated all through.
1: Right.
0: And also important is, sometimes some of these large enterprises, they also spawn a lot of smaller enterprises.
1: Yes.
0: You know. So if we need to have small businesses that will get. Become very large. So some of these auto parts manufacturers who were with Maruti, they used to be so small. Now with the growth of Maruti, they have become extremely large. So that is the kind of model. Apart from there are other models also be simultaneously that have to be followed. But for Japan, we are seeing this very successful template, which can be happily replicated.
1: Right. Let's move on to the next story. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. A very, very quick comment from you, Udayan, on this development about India expanding its refinery capacity.
0: With growth, they have to do it. The good part is that these are the capabilities of our refineries are now world recognized.
1: Yes.
0: We have some of the best refineries in the world.
1: Right. Let's now look at the prices of commodities. Global crude oil prices declined today. Investors weighed signs of progress in indirect negotiations between US and Iran, easing concerns about potential disruptions to crude supplies. Brent crude was trading 1.6% down at $70 and 41 cents per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 1.9% down at $67.28 per barrel when reports last came in. Udayan, a very good news, of course, from India's point of view, obviously, because we have a very big import, bill is very big when it comes to crude oil. So, are we looking at, hopefully, prices may be coming down? All that's all in the future.
0: Maybe it'll probably have to play out. The situation is still fluid, but it's not getting worse.
1: Yes.
0: So that for listeners of this program who are, want to know about markets react to bad news.
1: Yes.
0: Or uncertainty. So that is not happening. We will take this. And because all the doomsday things that are being said by some people,
1: yeah,
0: it just turned out that, it was just a bad dream.
1: Thankfully.
0: Let's hope it turns out like that.
1: Right. And let's now have a look at the gold and silver prices. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading marginally up at 1,44,960 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.5% up at 2,31,320 rupees per kilogram a short while ago.
3: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona 0.1% ki tezi ke saath 1,44,540 rupees prati 10 gram par tha, aur sitambar anubandh wali chandi 0.5% की बढ़त के साथ 2,31,443 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। उद्यन, हमने देखा पहले कि अभी कुछ दो चार दिन पहले की अगर बात करें तो थोड़े से करेक्शंस आए, हमें नजर आए थे, जिससे कि बहुत लोगों के दिल में खुशी भी होगी, बहुत लोगों को शायद दुख भी हो, लेकिन अभी हमने देखा कि थोड़ा सा एक मार्जिनल राइज देखने को मिला है, तो आप किस तरीके से आने वाले वक्त में प्राइस को प्रोटेक्ट करते हैं?
0: देखिए, अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी रहती है, फाइनेंशियल सिस्टम में नर्वसनेस रहती है, तब तो वो सोने के दाम में उछाल जरूर आएगा। अगर आपके केंद्रीय बैंक जो खरीदारी कर रही थी, उनकी वो एक बहुत बड़ा कारण था, तो अगर ये चीजें कंट्रोल में रहती हैं, ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, तो ये इसी स्तर पर रहेगा। इसके नीचे जाते हुए मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और ये जो निवेश के लिए जो देखते हैं, उनको गोल्डन रूल है 5-10%, 100 रुपए अगर आपके निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, 5-10 रुपए से एक्सीड नहीं होना चाहिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद उद्यन कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए
0: धन्यवाद।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds nearly 580 points. Nifty settles at 24,176. Indian-Japan exchange agreements in fields including economic and energy security, pharmaceuticals and AI, and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन

0: किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 2001 से समझ लीजिए या उससे पहले भी, आज तक जापान में भी प्रधानमंत्री बदले हैं। ये शायद हमारे प्रधानमंत्री के चौथे या पांचवें जापानीज प्रधानमंत्री से बातचीत है। भारत में भी प्रधानमंत्री बदले, पर भारत और जापान की जो सोच है, जो मित्रता है, वो प्रगाढ़ है और उसकी नींव बहुत मजबूत है। और इस रीजन का, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का और विश्व में शांति और सद्भावना का एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र बिंदु है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री तकाइची की मौजूदगी में कई एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। आपके हिसाब से भारत और जापान दोनों के नजरिए से सबसे अहम समझौते कौन से हैं?
0: जिस कगार पर इस समय विश्व खड़ा हुआ है और जिस तरह आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी और उसके जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हो या इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, वो आगे चलने में बहुत ही अहम मुद्दे भारत और जापान के सामने रहेंगे।
1: जी
0: तो जो 3 MOUs तो बहुत कई साइन हुए हैं और उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक बहुत अहम है, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन कोऑपरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जिस तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अहम मुद्दे के रूप में उभर के सामने आया है और हर देश उससे जूझने का प्रयत्न कर रहा है, एनर्जी रेजिलियंस, ये जो पिछले साल देखा और जो फरवरी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई और उससे पूरे एशिया पर बहुत प्रभाव पड़ा, और उसमें भी भारत और जापान आगे मिलजुल कर सहयोग के साथ काम करेंगे।
1: आज की जो ये जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट थी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक हैं और एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझी प्राथमिकता है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: अम्बेसडर तायल, जैसा भी आप बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी इस समिट का एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटर पीस बनकर उभरा है, तो और भारत और जापान ने आज एआई की फील्ड में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारत की सॉफ्टवेयर ताकत और जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
0: देखिए, अगर आप पीछे देखें तो जापान ने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा योगदान किया है, चाहे वो हम मेट्रो देखें,
1: जी
0: सुजुकी कार इन्वेस्टमेंट देखें, पूरा जो बॉम्बे अहमदाबाद ट्रेन बन रही है वो
1: जी
0: देखें, पर अब जो नया भारत बन रहा है और विश्व में जिस तरह से प्रगति हो रही है, उसमें टेक्नोलॉजी का स्थान बहुत ऊपर आ रहा है और जो देश टेक्नोलॉजी में सहयोग करेंगे वो विश्व में आगे बढ़ेंगे। यहाँ भारत और जापान में कॉम्प्लीमेंटेरिटीज हैं। जापान प्रिसीजन इक्विपमेंट में, हार्डवेयर में दुनिया में बहुत आगे, और भारत सॉफ्टवेयर में, टैलेंट में, स्किल्स में बहुत आगे है, और भारत और जापान की ये साझेदारी दोनों देशों के लिए एक बहुत ही अच्छी साझेदारी होगी।
1: अम्बेसडर तायल, जैसे कि प्रधानमंत्री को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक जापान और इंडिया की एक साझी प्राथमिकता है। इसी तरह नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की दिशा में कोशिश करने की बात कही थी। आप दोनों प्रधानमंत्रियों के इन बयानों को कैसे देखते हैं?
0: इस समय जो विश्व में स्थिति है, कोविड से जो शुरू हुआ और उसके बाद युद्ध रशिया यूक्रेन का, उसके बाद ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स का, उससे विश्व की, खासतौर से एशिया की जो भी इकोनॉमीज हैं उन पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ा है, और एक आवश्यक है कि कोई भी देश, जो विश्व में इस समय व्यापार हो रहा है और जो फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन की बात करते हैं, पैसिफिक की बात करते हैं, सी लाइंस की बात करते हैं, उस पर कोई देश उसमें खलल न डाले, ये बहुत ही आवश्यक है। और हर देश का आर्थिक प्रगति इस प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर है। पर जो 28 फरवरी के बाद युद्ध हुआ पश्चिम एशिया में और अमेरिका और ईरान के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से बंद की गई, पूरा वहां से जो तेल का निर्यात था उस पे आंच आई, इस सब के संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है कि हर देश
1: जी
0: एक मूल्य को समझे, एक वैल्यू को, कि फ्री और ओपन सी लाइंस, कि कुछ भी लड़ाई हो, कुछ भी मतभेद हो, पर विश्व में जो व्यापार है, जो शिप्स का आना जाना है, वो जहां से भी जाते हैं उन पर कोई भी देश खलल न डाले। मैं समझता हूं कि भारत और जापान और सभी देश जो हम एशिया के हैं और विश्व के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम मानते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स का। और इसमें भारत और जापान के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि दोनों
1: बिल्कुल
0: देश गल्फ कंट्रीज से काफी तेल भी आयात करते हैं, गैस भी आयात करते हैं, और इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भारत और जापान के लिए है।
1: इससे पहले कि मैं आपसे अपना अगला सवाल करूं, आइए पहले सुनते हैं कि आज की जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में जापान के प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया, चलिए उसको सुनते हैं।
3: You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. The big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. The following points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation. I recently announced the updated FOIP, Free and Open Indo-Pacific, which focuses on self-reliance and resilience to realize FOIP. On the other hand, Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative, for countries across the Indian Ocean.
1: भारत और जापान ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक जॉइंट रोड मैप भी तैयार किया है, जिसके जरिए उनका मकसद सेमीकंडक्टर और एडवांस मटेरियल्स सहित कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करना है। ये देखते हुए कि भारत के पास कई क्रिटिकल मिनरल्स का बड़ा रिजर्व है और जापान के पास मेटलर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्टीज है, क्या आप कहेंगे कि दोनों देशों के लिए जो इकोनॉमिक हमने सिक्योरिटी रोडमैप तैयार किया है, दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, खासकर दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए?
0: जी हाँ, बिल्कुल। जापान का ये अनुभव रहा है पिछले 7-8 साल में कि कई बार जब उनके चाइना से कुछ मतभेद हुआ तो चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स का निर्यात जापान के लिए रोक दिया। जापान ने पहले ही उसमें प्रयास किया है और ऑस्ट्रेलिया से वो क्रिटिकल मिनरल्स मंगा रहे हैं और मलेशिया में उनको रिफाइन कर रहे हैं। और जिस तरह से दुनिया ने देखा पिछले 6 महीने में, 1 साल में, कि एक ही देश चाइना का बहुत ही डोमिनेंस है, बहुत मोनोपोली है क्रिटिकल मिनरल्स पर भी, मैग्नेट्स वगैरह पर, उसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में और भारत जापान मिलकर काम करें। और इस तरह क्रिटिकल मिनरल्स भारत में हैं बहुत, पर उनको रिफाइन करना ये एक मेटलर्जी का विषय है और उसमें जापान को एक्सपर्टीज है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही मुख्य समझौता भारत और जापान के बीच में, दोनों प्रधानमंत्री के बीच में हुआ है। और कैसे दुनिया में जो सप्लाई चेन्स हैं, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स की हो, फार्मास्यूटिकल्स की हो, उनको ऐसे बढ़ाया जाए कि किसी एक देश का उस पर बहुत अधिक मोनोपोली ना रहे,
1: जी
0: मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय अब दोनों प्रधानमंत्रियों ने आज लिया।
1: अम्बेसडर तायल, जैसे भी आप कह रहे थे कि एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, तो पिछले कुछ महीनों की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी की अहमियत को एक बार फिर से उजागर किया है। इस संदर्भ में आप आज नई दिल्ली और टोक्यो के बीच साइन किए गए इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं?
0: देखिए, बायोगैस और जितना भी, चाहे वो तेल हो और लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो, उसको किस तरह एक उनका

0: टॉक किया जाए उनको किस तरह, जिससे कि अगर कोई सप्लाई चेन में कहीं कोई डिसरप्शन हो तो एकदम उसका प्रभाव खरीदारों पर ना पड़े जो उसका इस्तेमाल करते हैं उन पर ना पड़े। तो इसमें दोनों देशों की कंपनियों को साथ काम करना पड़ेगा, और बायोगैस और लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस,
1: जी
0: इसमें मैं समझता हूं कि दोनों देशों ने साथ काम करने के लिए अच्छे निर्णय आज लिए हैं।
1: जी जापान भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। आज की जो दोनों मुलाकात हुई दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, उसके बाद जापान द्वारा भारत में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की एक प्लेज ली गई। इसके साथ ही दोनों ने अगले एक दशक में जापान से भारत में ₹10 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट और भारत में काम करने वाली जापानीज कंपनीज की संख्या को दुगना करने का एक टारगेट रखा है। ये देखते हुए कि भारत और जापान एशिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये जो लक्ष्य सेट किया गया है इससे न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा फायदा होगा?
0: जी, बहुत फायदा होगा। ये पिछले वर्ष एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट साइन हुआ था भारत और जापान का, जब हमारे प्रधानमंत्री 15वीं समिट के लिए जापान गए थे, और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि ₹10 ट्रिलियन
1: जी
0: जापान भारत में निवेश करेगा अगले 10 वर्षों में। और आज करीब 120 MOU साइन हुए हैं, जिसमें उनका अगर पूरी उसका देखा जाए तो शायद $12 बिलियन के करीब वो निवेश जापानीज कंपनियां भारत में करेंगी। एक जापान इंडिया इकोनॉमिक फोरम मीटिंग भी है, जिसमें 150 जापानीज कंपनी आके यहाँ पर उसमें भागीदारी करेंगी। तो जिस तरह भारत और जापान को एशिया में आर्थिक प्रगति का एंजिन होना चाहिए,
1: जी
0: एक स्रोत होना चाहिए, और अगर बड़ी इकोनॉमी जापान इंडो पैसिफिक में चाइना के बाद जापान आता है या फिर भारत है, तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे और दोनों की आर्थिक प्रगति होगी तो पूरे रीजन में, क्योंकि देखिए निर्यात आयात आजकल कोई भी इकोनॉमी कोई भी अर्थव्यवस्था केवल अकेले काम नहीं करती है,
1: बिल्कुल
0: वो सब देशों से कहीं से आयात होता है कहीं से निर्यात होता है, पूरा ग्लोबलाइजेशन है इकोनॉमीज का। और उसमें भारत और जापान की आर्थिक प्रगति अगर तेजी से होगी तो पूरे रीजन को उससे बहुत आर्थिक लाभ होगा।
1: अम्बेसडर तायल, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी से व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: सुर्खियों में

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज, जहां शाम के इस वक्त दिन भर की आपाधापी धीरे धीरे थमने लगती है। चाय की प्याली से उठती भाप, खिड़की से आती ठंडी हवा और पुराने गीतों की मीठी धुने मन को एक अलग ही सुकून दे जाती हैं। ऐसे ही खुशनुमा एहसास के साथ एक बार फिर सजी है सांझ ढले की महफिल, और आज की इस महफिल की मेजबान हूं मैं, यानी विभा। शुभ संध्या।

ये गीत था साल 1973 की सुपरहिट फिल्म लोफर से। फिल्म में मुमताज की चुलबुली अदाओं और आशा भोसले की खिलखिलाती आवाज ने इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी साहब ने। कहा जाता है कि आनंद बख्शी साहब की ये सबसे बड़ी खूबी थी कि वो रोजमर्रा की साधारण भाषा में भी ऐसी बात कह जाते थे जो सीधे दिल तक पहुंच जाए, और शायद यही कारण है कि उनके लिखे गीत पीढ़ियां बदलने के बाद भी उतने ही अपने लगते हैं जितना कि तब लगते थे। सांझ ढले सुन रहे हैं आप विभा के साथ, और अब पेश है एक ऐसा गीत जो प्यार की यादों को बड़ी ही खूबसूरती से शब्द देता है। फिल्म है मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की उन फिल्मों में गिना जाता है जिन्होंने ग्रामीण परिवेश और डकैतों पर आधारित कहानियों को नई पहचान दी। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की जोड़ी ने इस फिल्म को कई यादगार गीत दिए, और जब इन शब्दों को लता मंगेशकर की मधुर आवाज मिली तो ये गीत समय की सीमाओं से परे चला गया। तो चलिए सुनते हैं वही गीत।

7:40:17 सांझ ढले सुन रहे हैं आप विभा के साथ। आज की सांझ ढले का आखिरी गीत एक ऐसी फिल्म से है जिसकी कहानी दुनिया के महान साहित्यकार मार्क ट्वेन से के उपन्यास द प्रिंस एंड द पॉपर से प्रेरित मानी जाती है। फिल्म है राजा और रंक और आवाज है एक ऐसे गायक की जिनकी गायकी की यही खासियत है कि चाहे शरारत हो, रोमांस हो या भावुकता, हर एहसास उनकी आवाज में बिल्कुल स्वाभाविक लगता है, जिसकी बदौलत वे हर उम्र के श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। और ये गायक कोई और नहीं बल्कि आपके और हमारे अजीज मोहम्मद रफी साहब हैं।

उम्मीद है इन गीतों ने आपकी शाम को कुछ और सुरीला, कुछ और यादगार बनाया होगा। आज के सांझ चले में बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। विभा को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज और वित्त स्थिति की जांच अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस समिति का गठन दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 के अंतर्गत किया गया है। श्री सूद ने कहा कि यह समिति शिक्षा सत्र 2026-27 से 2028-29 तक की फीस तय करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी फीस बढ़ोतरी से पहले अभिभावकों की भागीदारी और सहमति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे फीस तय करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और अभिभावक हितैषी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
3: अब दिल्ली का कोई भी स्कूल बिना पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस के लिए, बिना फी रेगुलेशन कमेटी बनाए कोई स्कूल फीस के बारे में निर्णय नहीं कर पाए।
2: दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम के कामकाज और उनकी वित्त स्थिति की अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा गहन जांच की जाएगी। इस आदेश को महत्वपूर्ण बताते हुए ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये दिल्ली के बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय प्रत्येक बिजली उपभोक्ता और करदाता की जीत है। श्री सूद ने बताया कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण के बाद वर्षों तक अनेक वित्त निर्णय, विशेष व्यवस्थाएं और लगातार बढ़ती देनदारियां की सार्वजनिक जांच नहीं हो सकी।
3: बिजली कंपनियां मुनाफा कमाती रहीं और रेगुलेटरी एसेट के नाम पर 38,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के सिर पर कर्ज अरविंद केजरीवाल की सरकार ने चढ़वाया है, इसलिए उसका एक ऑडिट होना चाहिए। जब हमने CAG ऑडिट की बात की तो डिस्कॉम्स कोर्ट में चली गई। हमने बहुत मजबूती से केस लड़ा और हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर उसमें पास किया, जिसके आधार पर पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब डिस्कॉम के CAG ऑडिट के संदर्भ में हमने ऑर्डर पास किया है। बहुत जल्द CAG का ऑडिट इसके संदर्भ में होगा।
2: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। दिल्ली में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: SIR प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना प्रपत्र प्राप्त किया। दिल्ली कैंट के उपमंडल मजिस्ट्रेट और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी से भी गणना प्रपत्र प्राप्त किया। बूथ स्तर अधिकारियों ने आज एरेठाला, RK पुरम, मेहरौली और मंगोलपुरी सहित राजधानी के अन्य स्थानों पर घर घर गणना प्रपत्र वितरण का कार्य किया। दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन और अद्यतन के लिए वर्तमान मतदाताओं को पहले से छपे 2-2 प्रपत्र वितरित करेंगे। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल www.voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन प्रपत्र भी भर सकते हैं। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति 2026 आम नागरिकों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई जनहितकारी नीति है। उन्होंने आज कहा कि नीति के अंतर्गत संबंधी लाभों के अतिरिक्त दोपहिया वाहनों पर ₹50,000, ई ऑटो पर ₹75,000 और कमर्शियल गुड्स कैरियर पर ₹1,50,000 की बचत संभव होगी। एक रिपोर्ट।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ईवी नीति के अंतर्गत रोड टैक्स से मिलने वाली छूट केवल नीति की अवधि तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि वाहन के पूरे जीवन काल तक लागू रहेगी। साथ ही वाहन खरीदते समय रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी पूरी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली परिवहन विभाग सभी पात्र मॉडलों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा। वाहन बुक करने से पहले नागरिक इस सूची की जाँच अवश्य करें। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय में ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत 70 लाख पौधे लगाने के अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने हर नागरिक से हरित, स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली के लिए इस जन आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नागरिक greendrive.delhivanmahotsav.in पर पौधारोपण के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।
5: इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली का हर एक निवासी जो चाहता है ग्रीन दिल्ली वॉरियर बनना उसमें जुड़ सकता है। इस पोर्टल पे वो अपने लिए स्लॉट बुक कर सकता है, जगह चुन सकता है कि किस समय वो पेड़ लगाना चाहता है और हम सब लोग अपने लिए स्पेस बुक करा सकते हैं और 11 तारीख से हमारे लिए वो बुकिंग ओपन होगी। हम जहाँ पेड़ लगाना चाहते हैं वहाँ पेड़ लगा पाएंगे।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

0: ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नेक्स्ट कोड क्रिएट एंड चेंज कार्यक्रम की भी अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, शिक्षण संस्थानों और नवोन्मेषकों को एक साझा मंच पर लाकर नागरिकों और शहरी चुनौतियों के लिए तकनीक आधारित समाधान विकसित करना है।
1: 1 करोड़ इंजीनियरिंग माइंड जब इकट्ठे आए और 2.5 लाख लोग उसमें से रजिस्ट्रेशन करें और उसमें लगभग 5,000 इनोवेटिव सॉल्यूशन को देखा जाए और आज उसमें से 60 लोग सेलेक्ट करके इस फाइनल राउंड में यहाँ भेजा जाए, तो मैं सच में कहना चाहती हूँ कि आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपकी इनोवेशन सच में काबिले तारीफ है। और यदि देश को आगे बढ़ना है तो उसकी ये जो युवा है, इसको आगे ला करके उनकी वेवलेंथ पे आकर के उनके माइंडसेट को पढ़ के उनके आइडियाज पे काम करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
0: दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि राजधानी के सबसे पुराने जल शोधन केंद्र को अब आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1935 में स्थापित चंद्रावल जल शोधन केंद्र अब 10 करोड़ 50 लाख गैलन प्रतिदिन क्षमता वाला जल शोधन केंद्र बन रहा है, जिसमें ग्रेन्यूलर एक्टिवेटेड कार्बन, ओजोनेशन और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। लगभग 75,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित हो रही इस परियोजना का 82% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बोर्ड ने बताया कि इस परियोजना के पूर्ण होने पर करीब 22 लाख नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित पेयजल का लाभ मिलेगा। इस परियोजना को इस वर्ष सितंबर तक प्रारंभ करने का लक्ष्य तय किया गया है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने आज आदर्श नगर वार्ड का निरीक्षण कर मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री खिरवार ने आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास नालों की गाद सफाई के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज नरेला स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
2: डॉक्टरों को स्टाफ की कमी उन्होंने अपनी बात रखी है और यहाँ पे हल्की सी लापरवाहियां भी हैं। लापरवाही के लिए हम लोगों ने राउंड लेके जोर करने को कहा है डॉक्टरों को कि आगे से भविष्य में दिल्ली की जनता और यहाँ के लोकल पब्लिक के इलाजों में कोई कमी नहीं होनी। दवाई की मात्रा यहाँ पे पूरी पाई गई, यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन काम की गति को और अच्छा करने के लिए जो डॉक्टर्स के सुझाव थे, जो माननीय विधायक जी के सुझाव थे, सुझाव के साथ स्वास्थ्य को और अच्छा करने की जो बात थी हम उसी माध्यम से यहाँ पे आए हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस उपायुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस दौरान 2 विदेशी पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए।
3: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की एक टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान बेस्ड शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में थे। इनमें से 3 अभियुक्तों को पंजाब के बॉर्डरिंग एरिया से गिरफ्तार किया गया जो कि नार्को और आर्म्स कंसाइनमेंट ड्रोन के जरिए रिसीव किया करते थे। 1 अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जिसे दिल्ली में रिलीजियस प्लेसेस, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस स्टेशन, पुलिस नाकाज की रेकी करने का जिम्मा दिया गया था। हैंडलर्स ने उसे यह भी प्रॉमिस किया था कि उसे हथियार मुहैया कराया जाएगा गतिविधि को अंजाम देने के लिए। अभियुक्तों से 2 स्मॉल आर्म्स और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस भी बरामद किए हैं।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान के फरूखाबाद में 125 साल पुराने गुरुद्वारा साहिब के गिराए जाने की कड़ी निंदा की है। श्री सिरसा ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब केवल सिखों की नहीं बल्कि मानवता की सांझी धरोहर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस तरह विरासत को नुकसान पहुंचाया जाना अत्यंत निंदनीय है।
4: गुरुद्वारा साहब की ये जो विरासत है ये केवल खाली सिखों की नहीं है, ये मानवता की विरासत है क्योंकि गुरुद्वारे में मानवता के भले की बात होती है, किसी धर्म की नहीं। मुझे बड़ा खेद है पाकिस्तान में लाखों सिख पार्टीशन के बाद जो थे आज उनमें से केवल 8,000 सिख बचे हैं, बाकियों का जबरन

0: परिवर्तन कर दिया गया और करते करते आज वो गुरुद्वारों पे भी हमले कर रहे हैं। जहां मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, वहां कहना चाहता हूं दुनिया भर को इसका संज्ञान लेना चाहिए।
1: दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता और ट्रांस यमुनक क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो हुआ है वो यूनेस्को के नियम का भी उल्लंघन है।
2: ये न केवल सिखों की भावनाओं को आहत और वहां की माइनॉरिटीज चाहे सिखों हिंदुओं उनकी भावनाओं को आहत करने का काम है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी जो यूनेस्को है वो भी ये कहती है कि जो भी हेरिटेज साइट्स हैं और खास करके प्लेस ऑफ वर्शिप है, टेम्पल है, जो 100 साल से अधिक समय की बिल्डिंग्स हैं, उनको सुरक्षित रखना वहां की सरकार का जो है कार्य है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन है। तो निश्चित रूप से हम इसकी घोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
1: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज ओमान से आए विद्यार्थियों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि इन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, खोज की भावना और सीखने के प्रति उत्साह देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वालों को भी दिया जाता है। नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर किए जा सकते हैं। कोई भी नागरिक, विद्यालय, संस्था या संगठन अपने द्वारा योग्य समझे जाने वाले उम्मीदवारों को नामांकित कर सकता है। बच्चे भी स्वयं।
1: दिल्ली में आज कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज और वित्तीय स्थिति की जाँच अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12

0: वर्षों में हम भारत में काइजेन फिलॉसफी यानी कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आज की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अब कोई विकल्प नहीं बल्कि सुशासन का एक अनिवार्य स्तंभ है। उन्होंने AI के उपयोग के महत्व पर बल दिया। जयपुर में आज 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के समापन सत्र में श्री सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक सोच में मूलभूत बदलाव की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करना बंद कर दिया है। धारचूला के उपमंडल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने बताया कि वर्तमान मौसम की स्थिति का आकलन करने के बाद प्रशासन परमिट जारी करने की प्रक्रिया पर फिर से विचार करेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits."
0: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, "Among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Earlier, India and Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense, and AI." Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal today said that investments have emerged as a key driver of India's strategic partnership with Japan and are expected to further strengthen bilateral ties. Addressing the Indo-Japan strategic dialogue on shaping the Asian century organized by a private television channel, Mr. Goyal said, "Opportunities are opening up for India's skilled workforce, while the government's focus remains on ensuring equitable development for all under the leadership of Prime Minister Narendra Modi." Petroleum and Natural Gas Minister

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज मधुरिमा में। आज आपके साथ हूं मैं यानी विभा। नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुछ राग ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही मन जैसे अपने आप शांत होने लगता है। उन्हीं में से एक है राग भीमपलासी। दोपहर के तीसरे प्रहर में गाया जाने वाला ये राग अपने भीतर विरह की कसक, प्रेम की कोमलता और भक्ति की गहराई तीनों को समेटे हुए है। यही कारण है कि फिल्म संगीत के कई महान संगीतकारों ने भी समय समय पर इसकी मधुर छाया को अपनी धुनों में पिरोया है। तो आइए शुरुआत करते हैं साल 1954 की फिल्म बादशाह के एक मधुर युगल गीत से, जिसे अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने।

राग भीम पलासी काफी थाट का अत्यंत मधुर राग माना जाता है। इसका गायन समय होता है दिन का तीसरा प्रहर। इस राग में कोमल गंधार और कोमल निषाद का प्रयोग इसकी पहचान है, जो इसके स्वरूप में एक अनोखी कोमलता और आत्मीयता भर देता है। और अब बढ़ते हैं एक ऐसे गीत की ओर जिसे फिल्म संगीत में राग भीम पलासी का सबसे लोकप्रिय उदाहरण माना जाता है। फिल्म है मेरा साया। संगीतकार मदन मोहन ने इस धुन को जिस नफासत से रचा और लता मंगेशकर ने जिस भावपूर्ण अंदाज में गाया, उसने इस गीत को कालजयी बना दिया। तभी तो शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी इस गीत को भीम पलासी के उत्कृष्ट फिल्मी रूपांतरण के रूप में सुनते और समझते हैं।

अब तक हमने इस राग की कोमलता और मधुरता को महसूस किया, अब सुनेंगे इसके उस रूप को जिसमें मन के अनकहे भाव बड़ी सहजता से सुरों में ढल जाते हैं। भीम पलासी की यही विशेषता है कि ये कभी विरह की टीस बनकर मन को छूता है तो कभी प्रेम की कोमल अनुभूतियों को सुरों में ढाल देता है। इन्हीं भावों को बड़ी खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है साल 1966 की फिल्म अनुपमा का अगला गीत। कैफी आजमी के बोल, हेमंत कुमार का मधुर संगीत और लता मंगेशकर की आत्मीय आवाज, इन तीनों ने मिलकर इस गीत को एक ऐसी गरिमा दी है कि ये आज भी श्रोताओं के मन में उसी ताजगी से बसता है।

0: कुछ भी नहीं।
1: कहते हैं कि जब शास्त्रीय संगीत प्रकृति से जुड़ जाता है तो उसकी मिठास और भी बढ़ जाती है। साल 1971 की फिल्म शर्मीली का अगला गीत इसी का सुंदर उदाहरण है।

राग भीम पलासी की मधुरता, उसके कोमल स्वरों की आत्मीयता और इन कालजयी गीतों के साथ आज की मधुरिमा यहीं संपन्न होती है। उम्मीद है आज की ये संगीतमय यात्रा आपको पसंद आई होगी। फिलहाल विभा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, क्योंकि अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे स्पोर्ट्स कैन।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा रेखा जोखा लेकर के हमारे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का अपडेट, हर मैदान की खबर और हर खिलाड़ी का हाल, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन हेडलाइंस की जिन पे आज का हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में आज रात स्पेन का सामना ऑस्ट्रिया से, इंग्लैंड, बेल्जियम और अमेरिका राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर तथा महिला सिंगल्स में आर्यना सबालेंका और कोको गॉफ तीसरे दौर में पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ और वेलवन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना पीएसए चैलेंजर स्क्वाश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए फुटबॉल के महासंग्राम के साथ, जो कि चल रहा है कनाडा और अमेरिका में फीफा विश्व कप, जिसके राउंड ऑफ 32 यानी नॉकआउट के मुकाबले शुरू हो गए हैं। और आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होना है, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा और कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया की टीमें आमने सामने होने वाली हैं। इससे पहले आज की बात की जाए तो इंग्लैंड, बेल्जियम और अमरीका फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं।
1: फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हरा दिया। सैन फ्रांसिस्को के एरिया स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही अमेरिका ने अंतिम 16 में अपनी जगह बना ली है। मैच की शुरुआत से ही खेल पर अमेरिका का नियंत्रण देखने को मिला। पहले हाफ के इंजरी टाइम में बालोगुन ने मलिक टिलमैन के शानदार पास और डिफेंडरों को छकाते हुए गेंद को गोल की

0: पर निकोला वासिलस के नीचे से नेट में पहुंचाकर अमेरिका को 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में 64वें मिनट में अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा जब बोलागुन को रेड कार्ड दिखा दिया गया। मैच के अंतिम चरण में मलिक टिलमैन ने फ्री किक पर बेहतरीन गोल कर टीम की बढ़त 2-0 कर दी।
1: It is Tillman, and it's in. If this stadium had a roof, it would have just lifted off. A second goal that the USA desperately wanted. For the United States of America, the dream continues. Their World Cup ambitions very much alive. USA 2, Bosnia and Herzegovina 0.
0: अब अमेरिका 7 जुलाई को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम से भिड़ेगी। इससे पहले बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। मैच की शुरुआत में सेनेगल की टीम बेल्जियम के डिफेंस पर हावी नजर आई। सेनेगल की तरफ से मैच के 24वें मिनट में हबीब डियारा ने बेहतरीन गोल किया और स्कोर 1-0 कर दिया। मैच का दूसरा हाफ रोमांच से भरा रहा। 51वें मिनट में इस्माइला सार ने बेहतरीन गोल दागते हुए सेनेगल की बढ़त को 2-0 कर दिया। अब तक बैकफुट पर नजर आ रही बेल्जियम की टीम ने इसके बाद मैच में बेहतरीन पलटवार किया। 86वें मिनट में रोमेलू लुकाकू ने बेल्जियम के लिए पहला गोल दागा। इसके ठीक 3 मिनट बाद ही यूरी टाइलेमांस ने बेल्जियम की ओर से दूसरा गोल करते हुए स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। थोड़ी देर पहले सेनेगल की जीत की तरफ जा रहा मुकाबला 90 मिनट में 2-2 की बराबरी पर आ गया। अतिरिक्त समय में दोनों ही टीमों की तरफ से कई प्रयास किए गए, लेकिन इस दौरान यूरी टाइलेमांस ने पेनल्टी को गोल में तब्दील कर बेल्जियम की टीम को जीत दिला दी।
2: Will now take the penalty, and he scores. They were down, they were out, from the brink to the next round. Belgium squeezed through.
0: दिन के पहले मैच में भी लोगों को एक शानदार मुकाबला देखने को मिला, जहां हैरी केन ने 2 गोल की बदौलत इंग्लैंड के डीआर कांगो को 2-1 से हरा दिया। अटलांटा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने शानदार खेल दिखाते हुए 2 गोल किए और मैच में 1 गोल से पीछे इंग्लैंड को वापसी कराते हुए राउंड ऑफ 16 में पहुंचा दिया। डीआर कांगो के लिए 7वें मिनट में ब्रायन सिपेंगा ने पहला गोल किया। इसके बाद दोनों टीमों की तरफ से गोल करने के कई मौके बने पर कोई भी सफल नहीं हो सका, लेकिन 75वें मिनट में हैरी केन ने का गोल किया और 86वें मिनट में शानदार विनिंग गोल करके मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया।
2: हैरी केन, इट्स केन, ओह वाओ, दैट इज सो गुड फ्रॉम हैरी केन। इंग्लैंड आर देयर, इनटू द राउंड ऑफ 16 दे गो।
0: अब 6 जुलाई को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको सिटी स्टेडियम में मेक्सिको के साथ होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
3: तो कहा जा सकता है कि फीफा विश्व कप में इस समय फुटबॉल के मैदान रोमांच का टॉप गियर लगा चुके हैं, और अब इसके बाद बात की जाए साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की। इस टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर तीसरे दौर में पहुंच गए हैं, जबकि महिला सिंगल्स में आर्यना सबालेंका और कोको गौफ भी तीसरे दौर में पहुंच गई हैं।
4: 7 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रीस के स्टेफानोस सिटसिपास को सीधे सेटों में हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। जोकोविच ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिटसिपास को 6-3, 6-4, 6-2 से हराया। जोकोविच को सिटसिपास से पार पाने में सिर्फ 98 मिनट लगे और उन्होंने पूरे मुकाबले में शानदार खेल दिखाया। टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में 4 सेट तक मुकाबले में जीत दर्ज करने वाले जोकोविच इस मैच में पूरी तरह शानदार लय में नजर आए। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और सिटसिपास को ज्यादा मौके नहीं दिए। इसी का परिणाम रहा कि जोकोविच ने पहला सेट मात्र 27 मिनट में 6-3 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में सिटसिपास ने वापसी की कोशिश की और जोकोविच को कड़ी चुनौती दी, लेकिन जोकोविच ने धैर्य बनाए रखा और सही समय पर ब्रेक हासिल कर सेट को 6-4 से जीत लिया। तीसरे सेट में जोकोविच पूरी तरह हावी नजर आए और 3-2 की बढ़त के बाद सिटसिपास की सर्विस तोड़ी। लगातार शानदार शॉट्स लगाते हुए उन्होंने सेट को 6-2 से अपने नाम करते हुए शानदार जीत हासिल की। पुरुष वर्ग में नंबर 1 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन इटली के यानिक सिनर ने नूनो बोर्गेस को 7-6, 7-6, 6-4 से हराया। अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो अमेरिका की कोको गौफ ने सोलोना सियरा को 6-3, 3-6, 7-6 से हराकर महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका ने भी मैकार्टनी केसलर पर 6-1, 7-6 से जीत दर्ज की। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
3: तो विंबलडन अपने तीसरे चरण की तरफ बढ़ रहा है और इसके बाद अब राउंड ऑफ 16 और प्री क्वार्टर फाइनल्स का दौर शुरू होगा। इस पूरे टूर्नामेंट पर ताजा जानकारी लेके

0: वहीं महिला सिंगल्स में अमांदा अनिसिमोवा जो है वो सोफिया केनन के साथ खेल रही हैं और उनका जो सेट है वो 1-1 से बराबरी के साथ चल रहा है, तो वहां मुकाबला जो है कांटे की टक्कर का देखने को मिल रहा है। अगर ज्वेरेव जीत गए तो वो मेदवेदेव, सिनर और जोकोविच के साथ तीसरे राउंड में पहुंच जाएंगे। और वहीं महिला सिंगल्स में इगा स्वाइटेक पहले से ही पहुंच चुकी हैं, एलिना रायबकीना का जो मैच है वो कैटी मैनेली से अभी होगा कुछ ही देर में। और इसी के साथ ही नाओमी ओसाका, अरेना सबालिंका, जेसिका पेगुला, कोको गॉफ और इगा स्वाइटेक ये लोग अपनी जगह तीसरे राउंड में बना चुकी हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने तमाम दिग्गज खिलाड़ियों की बात की। श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय खिलाड़ी जो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उनकी स्थिति इस समय कैसी है?
0: जी, भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ पुरुष डबल्स में अपनी चुनौती पेश कर रहे थे और पहले ही राउंड में यूकी भामरी अपने साथी माइकल वीनस के साथ हारकर बाहर हो गए। वहीं अनुरुद्ध चंद्रशेखर भी टकेरा युजुकी के साथ हारकर बाहर हो गए और एन श्रीराम बालाजी को भी हार का सामना करना पड़ा। तो इसी तरह भारत का जो सफर था इस टूर्नामेंट में वो समाप्त हो चुका है।
1: जी, तो कहा जा सकता है कि हालांकि भारत का सफर समाप्त हो गया लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी दर्शकों के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। और अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां कल मौसम ने थोड़ा सा खेल बिगाड़ते हुए नजर आया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल बारिश के कारण रद्द हो गया।
2: भारत और इंग्लैंड के बीच T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला बारिश की बेट चढ़ गया और मैच का नतीजा नहीं निकल सका। चेस्टर ले स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। संजू सैमसन महज 1 रन और ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 6 के स्कोर पर 2 विकेट गिरने के बाद अभिषेक शर्मा ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 38 गेंदों में 82 रन जुटाकर टीम को संभाला। अभिषेक 24 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान अभिषेक ने सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद कप्तान अय्यर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने तिलक वर्मा के साथ 36 रन और शिवम दुबे के साथ 41 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। अय्यर 47 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 68 रन बनाकर आउट हुए, जबकि दुबे ने 21 गेंदों में 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 42 रन की नाबाद पारी खेली। मेजबान टीम के लिए साकिब महमूद ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। आदिल रशीद और सैम करण ने 1-1 विकेट निकाला। भारतीय पारी के दौरान बूंदाबांदी होती रही। 20वें ओवर के बाद जब खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे थे तभी बारिश तेज हो गई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के इंतजार के बावजूद लगातार बारिश होती रही। आखिरकार अंपायर्स ने फैसला किया कि मैच दोबारा शुरू नहीं हो सकता और इसे रद्द कर दिया। अब श्रृंखला का दूसरा मुकाबला शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: वहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए भी एक खबर आ रही है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम 15 अगस्त से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए श्रीलंका जाएगी। ये दोनों मैच मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा होंगे।
3: टेस्ट क्रिकेट को पसंद करने वाले दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है, उन्हें भारतीय टीम जल्द ही एक बार फिर सफेद जर्सी में नजर आएगी। भारत श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगा। सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त तक गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 अगस्त को कोलंबो के सिंगलेस स्पोर्ट्स क्लब में होगा। यह मुकाबले भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। यह सीरीज 2017 में श्रीलंका में 3-0 से शानदार जीत के बाद भारत का पहला टेस्ट दौरा है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अहम पॉइंट्स दांव पर होने के कारण दोनों टीमों की नजर जीत पर रहेगी। फिलहाल भारत पॉइंट्स टेबल में 5वें और श्रीलंका 6ठे स्थान पे है। अगर दोनों टीम के रिकॉर्ड की बात की जाए तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 22 मैच जीते हैं। वहीं श्रीलंका को 7 मुकाबलों में ही जीत हाथ लगी है, जबकि 17 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कह सकते हैं कि टेस्ट प्रेमियों के लिए भी एक अच्छी खबर आई है कि 2 और मैच उनको देखने को मिलेंगे। और अब सुनते हैं कनाडा ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबलों का हाल।
4: हाल ही में हुए US ओपन के उपविजेता 33 वर्षीय किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में मलेशिया के ली जिया जिया के खिलाफ 10-11 से पिछड़ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कोच बी साई प्रणीत से चर्चा के बाद मैच से हटने का फैसला किया। महिला सिंगल्स में आकर्षी कश्यप ने फ्रांस की अन्ना तात्रानोवा को 21-14, 21-12 से हरा कर दूसरे दौर में प्रवेश किया, जहां उनका सामना अमरीका की 4वीं वरीयता प्राप्त बेवेन झांग से होगा। दूसरी ओर तानिया हेमनाथ ने अमरीका की दिशा गुप्ता को 21-16, 21-18 शिकस्त दी और अब उनका मुकाबला जापान की रिको गुंजी से होगा।

0: भारतीय खिलाड़ियों के लिए कुल मिलाकर दिन निराशाजनक रहा। कल मैदान पर उतरे 9 भारतीय खिलाड़ियों में से 7 पहले ही दौर में बाहर हो गए। 5वीं वरीयता प्राप्त देविका सिहाग चीनी ताइपे की तुंग सियो तोंग से 14-21, 15-21 से हार गई। कनाडा की रेचल चान के खिलाफ रक्षिता रामराज ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन 15-21, 21-14, 15-21 से हार कर बाहर हो गई। इस साल अबू धाबी में अल एन मास्टर सुपर 100 का खिताब जीतने वाली श्रेयांसी वालीशेट्टी को चीनी ताइपे की हुआंग चिंग पी के हाथों 9-21, 18-21 से झेलनी पड़ी। अनमोल खरब ने शीर्ष वरीयता प्राप्त मेजबान खिलाड़ी मिशेल ली को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 6-21, 26-24, 13-21 से मुकाबला गवा बैठी। पुरुष सिंगल्स में सनीत दयानंद और शंकर सुब्रमण्यन भी पहले दौर की बाधा पार नहीं कर सके। सनीत को जापान के तीसरी वरीयता प्राप्त युदाई ओकिमोतो ने 21-7, 21-11 से हराया, जबकि शंकर को दक्षिण कोरिया के यूते बिन ने 19-21, 21-15, 21-15 से मात दी। पुरुष सिंगल्स में भारत की एकमात्र जोड़ी अच्युतादित्य राव और अर्जुन डी पुचाना भी शुरुआती दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। आज आकर्षी कश्यप का मुकाबला बेवेन झांग से होगा। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कनाडा ओपन से भारत को कोई अच्छी खबर मिलती हुई नजर नहीं आई। इस बीच भारतीय बैडमिंटन संघ बाई ने यह फैसला किया है कि इस महीने से होने वाले सभी घरेलू बैडमिंटन टूर्नामेंट नए नियमों के अंतर्गत होंगे, जिसमें 3 गेम खेले जाएंगे और प्रत्येक गेम यानी सेट 15-15 पॉइंट्स का होगा। अब बात करते हैं स्क्वाश की, जहां वेलवन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफेज को 15-13, 11-4, 11-3 से हराया। वहीं तन्वी ने जापान की जोई फू को 11-6, 11-7, 8-11, 11-6 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और श्रोताओं, आज विश्व खेल पत्रकार दिवस है और ये दिन उन तमाम पत्रकारों को समर्पित है जो अपने अथक प्रयासों से, अपनी मेहनत से खेल के मैदान की तमाम खबरों को हम तक लेकर के आते हैं, श्रोताओं तक लेकर के आते हैं और उनको खेल से जोड़ते हैं। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे इस कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। आप अपने सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरा

0: संकट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.2

0: 2-3% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरल पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी।

0: मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
3: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि यह योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,407 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद हर्ष जी।
1: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में ये योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है।
2: हर्ष जी देखिए, कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते हैं। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल जो जिसे हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, एक दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था उससे भी कम था, वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाएं। तो पहला फोकस जो रहा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

0: आने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो मुहैया कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है, क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती हैं। और उसमें एक मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के, उनको
1: जी
0: सब पर काम किया गया है। और उसके नतीजे जो आपने जैसे कहा कि एक दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन सिंचाई के लिए इस योजना के तहत किया है, और उसका नतीजा यही रहा कि करीब जो 24.61 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हम अतिरिक्त सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
1: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई, जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
0: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया पर डोप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज, का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सकते बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, और जो एक्सटेंशन वर्क है जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है पर डॉप मोर प्रो, प्रति बूंद अधिक उपज, हम लोग उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है वो कदम इस योजना के तहत उठाए गए।
1: हरवीर जी, आपने मानसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आंकड़े क्या बताते हैं, अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है, और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है? वर्षा हो ना हो, वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा।
0: तो हमारा सिंचाई का जो ढांचा है जो बहुत बरसों से है, जैसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है, और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स हैं, तो ये एक जो पोन्ड्स हैं, जो तालाब हैं बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में है। लेकिन जो कैनाल इरिगेशन, और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है, वो सारा जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरिगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, कि जो फसल चक्र उसका है वो रबी है, खरीफ है, जायद है, वो सारी चीजें उसमें हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा है। ये इस तरीके का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो है हमारा जो कृषि है वो हम कहते हैं कि वर्षा आधारित है, हालांकि हुआ काफी बड़े पैमाने पर वहां पर भी किसानों ने अपने स्तर पर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करके सिंचाई की सुविधाएं दी हैं। इसको हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। रेनफेड एरिया में अक्सर जो है एक फसलीय खेती होती है, और वो जब ये हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो। तो सरकार की जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं, कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस वक्त, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे आप दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है, और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है, और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो पोर्ट से उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशन बनी हुई है किसानों के अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने।

0: जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
1: इसका एक कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP जिसको बोलते हैं।
0: जी
1: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए, और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उससे पैदा होगी, उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ, और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम दे पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चेकडैम की बात की थी, या माइनर इरिगेशन है, वो सब हुआ। साथ में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने कहा कि जब मैं कहूँ कि प्रिसीजन इरिगेशन जो है कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरिगेशन है, जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स हैं जिसमें हम मैं कहूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके की इरिगेशन की जो नई चीजें नई पद्धतियां लागू की गई हैं, उससे बहुत कम पानी में, कई जगह 1/4 पानी इस्तेमाल होता है फ्लड इरिगेशन के मुकाबले इसमें, या उससे भी कम होता है, लेकिन जो उपज है वो बेहतर होगी, उत्पादकता बेहतर होगी। जो ड्राई लैंड एरियाज है, जैसे राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और उस सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है।
0: जी,
1: जैसे आपने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरिगेशन था, जो बड़े पॉन्ड्स थे या लेक्स थे जो है, वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे नहरों के जरिए, तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम भी है तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जहां पानी का स्तर ऊपर था वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसका इस्तेमाल हुआ। और जो सिंचित, जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं, वहां जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है उसमें ये काफी मददगार हुई है स्कीम्स इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसीजन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, प्लस सोलर पंप्स के जरिए, छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी जहां बिजली की भी जरूरत नहीं है, ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृद्ध स्कीम बनाई और उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं, जो भी उपलब्ध एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
0: हरवीर जी, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है, अपनी आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी, बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर दी, अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहाँ किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया है इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर विशेष रूप से अगर कहें छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है, आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
1: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी होती है, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो इन्वेस्टमेंट करके सिंचाई सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर जो सरकार ने सब्सिडी मुहैया कराई है, जो कंपोनेंट जो लागत आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, जिससे कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी, जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर डो मोर क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अक्वाफर हो या और पॉन्ड्स उनको कैसे रिचार्ज रखा जा सकता है।
0: जी,
1: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान है हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए हैं। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनको अभी एक तरीके से जो एक्सटेंशन है, जो तंत्र सूचना का है, कि उनको कैसे हम शिक्षा

0: करें, कैसे उनको इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के, और जो कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके, क्योंकि स्कीम्स अवेलेबल है उस पर बड़े पैमाने पर। अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम जोड़ें, किस राज्य की क्या स्कीम है,
1: जी
0: कहाँ से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत
1: जी और हरवीर जी, यहाँ यह भी बताते चले कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और यह दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडारण को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ताओं के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई फैसलों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन

क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आवर्जन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए पश्चिम और मध्य भारत के कुछ भागों में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। और फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Coordination among health, immigration and surveillance agencies for early detection of at-risk passengers. The upgraded Air Suvidha 2.0 introduces a fully contactless and paperless health self-declaration system for international arrivals. The southwest monsoon has further advanced into the entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. The IMD has issued a red alert for heavy rainfall in the parts of western and central India for the next 2 to 3 days. However, in Delhi, the sky is likely to remain cloudy with a possibility of light rain over the next 24 hours. In Ukraine, 21 people were killed and 90 others were injured in a massive drone and missile strikes overnight by Russia on capital Kyiv. Damage was recorded in 30 locations across Kyiv, mainly residential buildings and civilian infrastructure. Russia's defense ministry said the deadly bombardment was in response to Ukraine's long-range strikes on its civilian infrastructure. In the FIFA World Cup, Spain will face Austria in a round of 32 match at Los Angeles Stadium in Inglewood tonight. In other round of 32 matches, Portugal will clash with Croatia in Toronto, while Switzerland will take on Algeria and Vancouver tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं भवतारिणी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। रूस द्वारा यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों में 21 लोगों की मौत और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया आमने सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: भारत ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजेन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक

0: डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
2: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
3: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: श्री गोयल ने जापान के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी और उसके विविध मुक्त व्यापार समझौतों और पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव से उत्पन्न स्थिति से संबंधित अन्य मुद्दों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
4: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें।
5: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि सर्वमान्य कानूनी ढांचा का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। श्री हरीश ने कहा कि ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अभियोजन और प्रत्यर्पण को मजबूत करेगा और आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने, धन और हथियार प्राप्त करने से वंचित करेगा। अमरीका, इसराइल और अर्जेंटीना ने रणनीति के विरुद्ध मतदान किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन

0: की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लवुड में लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर समर्थन मिला। रूस द्वारा यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों में 21 लोगों की मौत और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया आमने सामने। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अभिनीत शुक्ला विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth, holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. 21 people killed in Ukraine in massive drone and missile strikes by Russia. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound." The Prime Minister said, "India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless."
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, "Among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas." Ms. Takaichi said, "Through the Power Asia initiative, it is working to translate the vision into a concrete action." On the occasion, both the Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including energy and economic security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Trust is the biggest asset in today's time and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both the countries.
2: आज भारत और

आकाशवाणी के चैनल एफएम गोल्ड को सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफर शमीम खान, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हर सिंगार, जहां हर बात में मोहब्बत की खुशबू होगी, हर एहसास में दिल की धड़कन होगी और हर लफ्ज में होगा मौसम का जादू। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत का मौसम जब दिल में उतर जाए तो हर हवा गजल लगती है, हर कहानी शाम बन जाती है और हर सुबह किसी की मुस्कान जैसी लगती है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के पहले गीत के साथ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने और फिल्म है पाकीज़ा।

मोहब्बत और मौसम दोनों का रिश्ता बड़ा पुराना है। बारिश हो तो किसी का हाथ पकड़ लेने का मन करता है, सर्दियां हो तो किसी की याद गर्म चाय जैसी लगती है, और बसंत वो तो जैसे दिल में नए फूल खिला देता है। इसीलिए शायद किसी शायर ने कहा है कि हवा में कुछ तो बात है जो तेरी याद साथ है। ये मौसम यूं ही हसीन नहीं, शायद इसमें तेरे इश्क की बरसात है। दोस्तों, कभी कभी मौसम बदलता नहीं बल्कि किसी की मौजूदगी ही पूरे मौसम को बदल देती है।

दोस्तों, हर मोहब्बत का सबसे खूबसूरत लम्हा क्या होता है? वो होता है जब कोई पहली बार अपने दिल की बात कहता है किसी के लिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। कहना आसान होता है तो किसी के लिए सालों लग जाते हैं सिर्फ इतना कहने में कि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। दोस्तों, मोहब्बत का इजहार बड़े बड़े शब्दों से नहीं होता। कभी एक मुस्कान, कभी एक खामोशी और कभी सिर्फ आंखों से भी मोहब्बत की पूरी दास्तान कह दी जाती है।

बारिश और मोहब्बत दोनों जब साथ आते हैं तो दिल खुद ब खुद मुस्कुरा उठता है। भीगी सड़कें, खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें और साथ में हो चाय का गर्म प्याला, और इन सब के बीच अगर किसी की याद आ जाए तो ये समझ लीजिए कि दिल सचमुच मोहब्बत में है। बारिश की हर बूंद में तेरा नाम सुनाई देता है। ये मौसम भी जाने क्यों हर बार तुझ तक ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, अगर आज की शाम आप किसी को याद करके मुस्कुरा दिए हों, अगर किसी पुराने एहसास ने आपके दिल पर फिर से दस्तक दी हो, या फिर आपने मन ही मन किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया हो, तो समझिए हमारा ये कार्यक्रम सफल रहा। चलते चलते चलते एक छोटी सी बात, मोहब्बत कभी आवाज नहीं करती, बस दिल में चुपचाप अपना घर बना लेती है। जिसे सच्चा प्यार मिल जाए, उसे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत मिल जाती है। दोस्तों, कार्यक्रम के अगले गीत के साथ मैं आपका दोस्त शमीम आपसे इजाजत चाहता हूं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल

0: कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound." The Prime Minister said, "India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless."
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, "Among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas." Ms. Takaichi said, "Through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action." On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil today reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force, that is ETF, on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga.

0: Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे. आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे. उदयन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. Benchmark domestic indices rise, Sensex adds nearly 580 points, Nifty settles at 24,176. Indian-Japan exchange agreements in fields of including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. And global crude oil prices declined.
1: घरेलू शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 580 अंक बढ़ा, निफ्टी 24,176 पर बंद हुआ. भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए और कच्चे तेल के वैश्विक दाम घटे.

0: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, आइए अब रुख करते हैं और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज 0.7% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 579 अंक बढ़कर 77,502 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 170 अंकों की बढ़त के साथ 24,176 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में 0.5% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। इससे पहले बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुले और लगातार दूसरे दिन भी इनमें बढ़त रही। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और सकारात्मक भू राजनीतिक रुझानों के कारण निवेशकों का आत्मविश्वास बना रहा।
0: Benchmark domestic equity indices ended over 0.7% higher today. The Sensex rose 579 points to close at 77,502. The Nifty gained 170 points to settle at 24,176. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index added 0.5% and the Small-Cap 100 index climbed more than 1.2%. Earlier markets opened on a positive note and extended their upward momentum for the second consecutive session. Investor sentiment remained upbeat, supported by softer crude oil prices and positive geopolitical developments.
1: Sensex में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंफोसिस 5.5% से अधिक, वहीं टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में लगभग 4.5% का उछाल आया। उधर खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में लार्सन एंड टूब्रो 0.8%, मारुति में लगभग 0.5% और एक्सिस बैंक में 0.3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 20 out of 25 sectors ended in positive zone. Among the key gainers, IT climbed almost 4.4%, focused IT rose 4.3%, and consumer durables as well as realty added over 1.4%. In contrast, capital goods fell over 0.7%, telecommunications slipped nearly 0.7%, and power lost over 0.6%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,536 companies advanced, shares of 1,740 companies declined and shares of 182 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर होकर 95.39 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। उद्यन, अगर हम आज के ट्रेजेक्ट्री की बात करें कि आज किस तरीके से मार्केट ने प्रदर्शन किया और क्या प्रमुख कारक रहे जिस वजह से मार्केट का ये रुझान हमें देखने को मिला, तो आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, ये मतलब सारी जो बातें हैं एक चीज के साथ हम आराम से जोड़ सकते हैं, वो ये है कि तेल से जुड़े हुए सुर्खियां क्या रही, हेडलाइंस क्या रही, वो सब पॉजिटिव रही हैं कि जैसे अपने
1: दाम घट गए,
2: कुछ प्रोग्रेस इनडायरेक्ट टॉक्स में के रिपोर्ट्स आए, कतर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा और कुछ रिपोर्ट्स आए, कुछ सुपर टैंकर्स जो हैं सऊदी अरब का तेल तकरीबन 2 मिलियन बैरल्स के आसपास वर्थ ऑफ ऑयल वहां से निकला है। ये बहुत बड़ी तादाद है जो हमारे यहाँ तो नहीं आ रही है, ये चीन जा रही है और कुछ और देशों में जा रही है, पर ये एक फ्लो ऑफ गुड पॉजिटिव हेडलाइंस, मतलब बैड न्यूज नहीं आ रहा है। और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट सबसे पहले करेंसी मार्केट से एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन, वो सारा एक डोमिनो इफेक्ट पॉजिटिव, इसको वर्चुअस साइकिल बोलते हैं, वो उस तरीके से घूमता है। और आप देखेंगे कि हर जगह में कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखिए हम रुपए के वैल्यू में वो बात नजर नहीं आ रही, पर आरबीआई ओवरऑल एक मैनेजमेंट कर रही है जिसमें वो फॉरेक्स रिजर्व्स, आपका करेंसी में मूवमेंट ज्यादा ना हो उसके बारे में, तो वहां पे उसकी बात को थोड़ी देर के लिए हम अलग रखना पड़ेगा। पर इसके अलावा जो है बाकी जो चीजें हैं आप सब जगह में एक इट्स रिकूपिंग जो स्लाइड हुआ था वो ऐसा लग रहा है कि वापस आ रहा है
0: जी। यू नो उदयन, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक सेक्टर्स। वी हैव सीन अ रैली टुडे इन द आईटी सेक्टर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड दैट वी हैव बीन सीइंग इन द आईटी सेक्टर। यू नो इफ यू लुक एट इट ओवरऑल इन द लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस it tanked 17%. In the last 4 trading sessions it was down 7%, but today if I talk about Nifty in IT index, there is a rally of 4.64%. What's driving this rally in the IT sector? Because that's one of the major reasons we have seen the Sensex from the Nifty, you know, ending in green.
2: So you're so right, and a lot of these IT stocks, by the way, are large caps, and you know their capitalizations are large.
0: Yes.
2: And there's this whole theory going in, and I buy into that theory. Not theory, experts are saying that a lot of the exodus of money that has happened is FPI money has been, they were invested in large caps, whereas the domestic institutions went in and bought mid cap and small cap. So two different sectors of the market have got affected. So at some point, you know, when you keep buying, rather selling, it happens with buying also. You suddenly realize, oh, you know, maybe we have done enough. Maybe we need to do the

0: इंडेक्स 1% से अधिक और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 0.8% ऊपर बढ़ा। लगभग 8% हम कॉस्पी में देख रहे हैं गिरावट। महोदय, किस तरीके से आप इसे देखते हैं और ये क्यों किस तरीके से आ रहा है, आप प्लीज इसे बताएं।
1: देखिए, वो एक रन अप था जो बिल्कुल तेजी के साथ होता चला गया और कई बार क्या होता है, चिप्स आप जैसे हमारे भारतीय बाजारों में देखते हैं कि पहले एक सर्टन सेक्टर में आपको पसंद आने लगे लार्ज कैप, फिर आपने कहा कि नहीं नहीं लार्ज कैप तो ये तो बहुत महंगे हो गए, थोड़ा और नीचे चलते हैं, मिड कैप में चलते हैं। तो उस तरीके से है, जब आपने देखा टीएसएमसी और डच कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ जो डिजाइन करती है चिप्स, तो वो जब आपको लगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप सैमसंग और हाइनेक्स पे चले गए जो कि आपके दे आर आउटस्टैंडिंग द लीडिंग मेकर्स, पर आप उस वहां पे फोकस करने लग गए। और उसके अलावा तब हेडलाइंस भी ऐसी थी, एनवीडिया ने हैंडशेक किया, तो उससे आपको सारे जो कंपनीज हैं आपस में एक दूसरे के साथ एक जबरदस्त हैंडशेक कर रहे हैं।
0: मैं यही बल्कि कहना भी चाह रही थी कि अभी यही बाजार है जो अपनी ऊंचाइयों पर भी गया और वही बाजार है जो आज हम देख रहे हैं।
1: तो जहां पर भी अगर जब हेडलाइन जब आप फ्यूचर की तरफ देखते हैं, जैसे अब थोड़ी देर पहले बात होती थी व्हेन थिंग्स आर आउट इन द फ्यूचर, इट्स अ ग्रोथ सेक्टर, आपको नहीं मालूम कि ये आप किसी को कह नहीं सकते कि आज ये आपने पिछले 3-4 महीने पहले ये बोला था, ये क्यों नहीं हुआ, ये दिस इज नॉट राइट, 4 मंथ्स डाउन द लाइन इट्स प्रोबेबली वी आर टॉकिंग अबाउट 3-4 ईयर्स चीजें होंगी, सो पीपल आर रेजिंग मनी राइट नाउ। तो उसमें वहां पे जब आपको हेडलाइन ऐसा कुछ आता है, बिकॉज ये कन्विक्शन जो है, आप एक जिसे लीप ऑफ फेथ कहते हैं ना, मेरे को मालूम नहीं यहाँ पे सर्कस कितने लोगों ने रियल लाइफ में देखी है, तो वहां पे ट्रेपीज आर्टिस्ट होते हैं जो हवा में झूलते हैं, तो एक आदमी छलांग मारता है या लेडी छलांग मारती है और उनको पकड़ा जाता है, दूसरे लटक रहे होते हैं वो पकड़ते हैं, उसको लीप ऑफ फेथ बोला जाता है। तो ये लीप ऑफ फेथ की तरह है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने कितना कन्विक्शन है, आपके फेथ है,
0: यानी सुर्खियां पढ़ करके
1: जी आपको यह है कि आपने मैंने वो छोड़ दिया जो मैंने पकड़ी थी और मेरा जो साथी है वो मेरे को पकड़ लेगा, वैसे तो नीचे नेट है जमीन पर दिस इज कॉल्ड द लीप ऑफ फेथ। तो लीप ऑफ फेथ जब डगमगाने लगती है या उसमें कमजोरी आ जाती है, तो आप वो देख रहे हैं जो आज आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ सुर्खियां ऐसी निकली कल जिसके वजह से देयर इज दिस होल रिविजन कि नहीं नहीं मे बी वी आर जस्ट गेटिंग टू बुलिश आउट देयर। तो ये चीजें जो एडजस्टमेंट होती है, समटाइम्स यू आर मूविंग ऑन द फ्यूल्ड बाय सेंटिमेंट, तो सेंटिमेंट का जो फ्यूल है जब वो थोड़ा कम होता है तो आपका गियर लोअर गियर में आ जाता है।
0: भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। दोनों ही देश आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को समझते हैं।
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रौद्योगिकी साझेदारी भारत जापान सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होगा।
2: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: उदयन, अभी प्रधानमंत्री को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर जो क्षमता है उसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति शक्ति

0: देगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम भी ऑफकोर्स कम्पीट कर रहे हैं, तो हमारी जो एक परिकल्पना है विकसित भारत की, उसको किस तरीके से ये साकार करने में मददगार रहेगा?
1: देखिए, कई बार कई चीजें हैं, अब आपको जीरो से स्टार्ट करने में टाइम लगता है। तो अगर आप वो पार्टनरशिप से करते हैं, तो जहां पे आपके दूसरे एक पार्टनर कंट्री हैं, जिस उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं, उन जो जहां पे वो सक्षम ज्यादा है हमसे, वो चीजें वो अपने टेबल पे लाते हैं, और हम हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो कैपेबिलिटी, वो हम मेज पे लाते हैं। तो ये वो वाली अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जहाँ पे हमारे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी जो डिजाइनिंग जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसको मिलके हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करें। क्योंकि देखिए, एक पर्टिकुलर देश का नाम लेते हुए ना लेते हुए ये कहना जरूरी है, दोनों देश दूध के जले हैं,
0: जी
1: तो छाछ भी वो फूक फूक के पी रहे हैं।
0: जी
1: ठीक है, तो वो क्रिटिकल मिनरल से जुड़ा हुआ जो
0: जी
1: एक्सपीरियंस है, दूसरी चीजें जो है,
0: जी
1: उसको उसको दिमाग में रखते हुए ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये जरूरी भी चाहिए आपको, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप, कार प्रोडक्शन बंद हो गया या कुछ और हो गया, डिसरप्शन हो गया, जस्ट बिकॉज कोई एक स्टेटमेंट चली गई, तो वो उसके ये वो तो छोटी सी बात है, ये जरूरत भी है, और ये लेवरेज किया जाए। जैसे कि मैंने कहा, ये अंडरसर्व था,
0: जी
1: ये अब वहां पे पहुंच उस पायदान में जा रहा है, उस
0: जी
1: स्तर में जा रहा है जहां पे इसको होना चाहिए था।
0: राइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर रिलेटेड स्टोरी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट इंडिया जापान रिलेशंस आर ट्रूली वेरी स्पेशल एंड देर आर मेनी शाइनिंग एग्जाम्पल्स ऑफ द सक्सेस ऑफ द इकोनॉमिक पार्टनरशिप. एड्रेसिंग इंडिया जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग, मिस्टर मोदी सेड व्हेन जापान्स एक्सपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट कंबाइंड विद इंडिया स्पीड एंड स्केल द इंटायर वर्ल्ड बेनिफिट्स.
2: कुछ ही महीने पहले हमने टैक्सेशन, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए। हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव दे रहे हैं, जिसका लाभ आप सभी उठा सकते, और यही कारण है कि लगातार पिछले 4 वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है.
0: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. She said, at the recent G7 summit, she had presented 3 proposals to strengthen energy security, ensuring free and transparent energy trade, announcing strategic energy stockpiles, and promoting cooperation between consuming and producing countries. Question here to you, Udayan. You know, during this today, when these MOCs were signed and agreed upon, a very important point was that the two countries have agreed, have set a target of 10 trillion yen. To be invested by Japan in India in the next decade and doubling the number of Japanese companies operating in India. Now, while this is obviously very good news for India, but overall, if you look at it, India and Japan are two of the most important economies in the Asian region. So how would it benefit not just the two countries, but even the whole area, the Asia as per se?
1: It has already been happening, Anuwa. Scooter production. They don't cater. I'm talking about Japanese.
0: Yes.
1: They're not just here. They get exported. So that can be that success story. That template can be replicated all through.
0: Right.
1: And also important is, sometimes some of these large enterprises, they also spawn a lot of smaller enterprises.
0: Yes.
1: You know. So if we need to have small businesses that will get. Become very large. So some of these auto parts manufacturers who were with Maruti, they used to be so small. Now with the growth of Maruti, they have become extremely large. So that is the kind of model. Apart from there are other models also be simultaneously that have to be followed. But for Japan, we are seeing this very successful template, which can be happily replicated.
0: Right. Let's move on to the next story. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. A very, very quick comment from you, Udayan, on this development about India expanding its refinery capacity.
1: With growth, they have to do it. The good part is that these are the capabilities of

0: refineries are now world recognized.
1: Yes.
0: We have one of some of the best refineries in the world.
1: Right. Let's now look at the prices of commodities. Global crude oil prices declined today. Investors weighed signs of progress in indirect negotiations between US and Iran, easing concerns about potential disruptions to crude supplies. Brent crude was trading 1.6% down at $70.41 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 1.9% down at $67.28 per barrel when reports last came in. Udayan, a very good news, of course, from India's point of view, obviously, because we have a very big import, you know, bill is very big when it comes to crude oil. So, again, are we looking at hopefully prices may be coming down? All that's all in the future.
0: Maybe it'll probably have to play out. The situation is still fluid, but it's not getting worse.
1: Yes.
0: So that for listeners of this program who are, want to know about markets react to bad news.
1: Yes.
0: Or uncertainty. So that is not happening. We will take this. We will take this. And because all the doomsday things that were being said by some people, it just turned out that, you know, it was just a bad dream.
1: Thankfully.
0: Let's hope it turns out like that.
1: Right. And let's now have a look at the gold and silver prices. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading marginally up at 1,44,960 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.5% up at 2,31,320 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona 0.1% ki tezi ke saath 1,44,540 rupees prati 10 gram par tha, aur sitambar anubandh wali chandi आधे प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,31,443 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. उद्यन, हमने देखा पहले कि अभी कुछ दो चार दिन पहले की अगर बात करें तो थोड़े से करेक्शंस आए, हमें नजर आए थे, जिससे कि बहुत लोगों के दिल में खुशी भी होगी, बहुत लोगों को शायद दुख भी हो, लेकिन अभी हमने देखा कि थोड़ा सा एक मार्जिनल राइज देखने को मिला है. तो आप किस तरीके से आने वाले वक्त में प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं?
0: देखिए, अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी रहती है, फाइनेंशियल सिस्टम में नर्वसनेस रहती है, तब तो वो सोने के दाम में उछाल जरूर आएगा.
2: जी.
0: अगर आपके केंद्रीय बैंक जो खरीदारी कर रही थी, उनकी वो एक बहुत बड़ा कारण था. तो अगर ये चीजें कंट्रोल में रहती हैं, ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, तो ये इसी स्तर पर रहेगा. इसके नीचे जाते हुए मैं देख नहीं पा रहा हूँ. और ये जो निवेश के लिए जो देखते हैं, उनको गोल्डन रूल है 5-10%. 100 रुपए अगर आपके निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, 5-10 रुपए से एक्सीड नहीं होना चाहिए.
2: बहुत बहुत धन्यवाद उद्यन कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए.
0: धन्यवाद.
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds nearly 580 points. Nifty settles at 24,176. India-Japan exchange agreements in fields including economic and energy security, pharmaceuticals and AI, and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया, सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। इसमें जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान और समुदाय की भागीदारी से लेकर हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, बेहतरीन कोचिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शामिल है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है यादों की बारात, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। मैं कोई इल्जाम नहीं ना कोई गिला बनी, मैं कोई इल्जाम नहीं ना कोई गिला बनी, बस एक आदत की तरह याद करोगे मुझे। मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, भीड़ में भी अलग सी पाओगी मुझे। ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे। मैं ना रहूंगी तो भी असर बाकी रहेगा, मैं ना रहूंगी तो भी असर बाकी रहेगा, कभी कभी बेवफा यूं भी सोचोगे मुझे, कभी कभी यूं भी बेवफा सोचोगे मुझे। कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। और अगला गीत आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है कल आज और कल।

एक मेगाहर्ट्ज पर। और निशिगंधा में आज आपके साथ हूं मैं जयति। निशिगंधा में अगला गीत, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले, आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की।

शब की पेशानी पे ठहरा दर्द की स्याही में डूबा चांद, दिन की धूप ने जो ना छोड़ा रात ने उसको सौंपा चांद। शब की पेशानी पे ठहरा दर्द की स्याही में डूबा चांद, दिन की धूप ने जो ना छोड़ा रात ने उसको सौंपा चांद। भीड़ के जंगल से निकला रेत में तन्हा भटका चांद, याद की परछाई लिपटी देर तलक सहमा था चांद। नींद के सौदे हार गया जब, नींद के सौदे हार गया जब आंखों की देहरी आया चांद। मैंने पूछा कुछ भी नहीं था, मैंने पूछा कुछ भी नहीं था, गुपचुप दिल को पढ़ता चांद।

रात ने उसको सौंपा चांद, रात ने उसको सौंपा चांद। अगला गीत, फिल्म का नाम है सनम बेवफा। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत फिल्म का नाम है पारसमणि, आवाज है लता मंगेशकर और कमल बड़ौत की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आवाज है लता मंगेशकर और उदित नारायण की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया, सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय शिक्षक प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अकादमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट अगले महीने की 23 तारीख से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने की इस महफिल में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बहारों के सपने, आवाज है लता मंगेशकर की।

तुम आना एक रोज मुझसे मिलने, तुम आना एक रोज मुझसे मिलने। मैंने बहुत संभाल कर रखा है तुम्हारे हिस्से का वक्त, मैंने बहुत संभाल कर रखा है तुम्हारे हिस्से का वक्त। तुम आना एक रोज मुझसे मिलने। और अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आस का पंछी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और गीत सुहाने में अब जो अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जंगली, आवाज मुकेश और आशा भोसले की।

तेरी हर बात को दिल पर उतारा हमने, तेरी हर बात को दिल पर उतारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने। रोज चेहरे पे नए रंग उतर आते हैं, रोज चेहरे पे नए रंग उतर आते हैं, तेरा किस्सा है ये हर बार छुपाया हमने। एक शोला सा उठा था कभी बस्ती के तले, एक शोला सा उठा था कभी बस्ती के तले, वक्त रहते ही उसे खुद से जलाया हमने। बात अधूरी ही सही मगर कहते रहे, बात अधूरी ही सही मगर कहते रहे, वक्त की चाल को चुपचाप निभाया हमने। तेरी हर बात को दिल पे उतारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने। और अब जो फिल्म, जिस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसका नाम है बॉम्बे टू गोवा, आवाज है किशोर कुमार की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, उन्हें कौन समझाए मोहब्बत में हिसाब नहीं होते। वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, उन्हें कौन समझाए मोहब्बत में हिसाब नहीं होते। सोच समझ कर तो बस रिश्ते निभाए जाते हैं, सोच समझ कर तो बस रिश्ते निभाए जाते हैं। दिल जहां उतर आए वहां सवाल नहीं होते। हमने चाहा तो किसी शर्त का सौदा न किया, हमने चाहा तो किसी शर्त का सौदा न किया। इश्क में मुनाफे के अंदाज नहीं होते, इश्क में मुनाफे के अंदाज नहीं होते।

वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, उन्हें कौन समझाए, मोहब्बतों में हिसाब नहीं होते। इश्क को इश्क ही रहने दो दलीले न गढ़ो, इश्क को इश्क ही रहने दो दलीले न गढ़ो, आग के सामने अक्सर बयान नहीं होते, आग के सामने अक्सर बयान नहीं होते।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है यशुदास की और फिल्म का नाम है सुनैना। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 3:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है संगम, आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के

0: कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेवार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय टीचर ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये एकेडमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी उकदहान प्रांत में तीर्थयात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि उकदहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थयात्रा पर थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सौदागर। आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। दिल ने धड़क कर जो कहा याद आया, किसी अपने का गिला याद आया। आज बोझिल थी जरा सांसों की चाल, तू परेशानी में था याद आया। दिन किसी तरह से काटा मैंने, फिर तेरा रात का वादा याद आया। लोग मिलते रहे चेहरे बदले, लोग मिलते रहे चेहरे बदले, फिर कोई भूला सा शहर याद आया। बात कहने की हिम्मत थी लेकिन जब वो चला ही गया याद आया। फूल के नीचे बैठी रही देर तलक, फूल के नीचे बैठी रही देर तलक, दिल बहुत रोया तब याद आया, दिल बहुत रोया तब याद आया। और अगला गीत, फिल्म का नाम है कोयला, आवाज है उदित नारायण की।

हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। जो वक्त की धूप से आंखें चुराता रहा, उसे अपने ही साए में जलना जरूरी है। रिवायतों की धूल जब सांस रोकने लगे, तो कुछ सवालों का उगना जरूरी है। जो कल की लकीरों को तकता ही बैठा हो, उसे आज की मिट्टी में चलना जरूरी है। हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है गुप्त, आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सनम बेवफा, आवाज है लता मंगेशकर की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों तथा प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी मुग्दाहान प्रांत में तीर्थ यात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि मुग्दाहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थ यात्रा पर थे। फीफा विश्व कप में स्पेन ने राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारज़बाल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई, जिसके बाद पेड्रो पारो ने 66वें मिनट में एक और गोल कर दिया। ओयारज़बाल के 89वें मिनट में अपना दूसरा गोल करके जीत पक्की कर दी। अब अंतिम 16 में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल या क्रोशिया से होगा। कनाडा ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ी तानिया हेमनाथ अमेरिका की दिशा गुप्ता को 21-16, 21-18 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला जापान की रिको गुंजी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The PM said India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
1: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: In her address, Prime Minister of Japan

3:10 हुए हैं दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमराही। और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना दिसारिया। कहते हैं जिंदगी में कुछ मौसम ऐसे भी आते हैं जब दिलों के बीच की दूरियां खुद ब खुद मिटने लगती हैं और मुलाकातों की खुशबू फिजाओं में घुल जाती है। इंतजार के बाद आने वाले ऐसे ही खूबसूरत

का एहसास कराता है फिल्म लवर्स का ये खूबसूरत सा गीत, आवाज लता मंगेशकर और अमित कुमार की है।

दोस्तों, प्यार जब दिल की धड़कनों में बस जाता है तो हर रास्ता, हर मौसम और हर एहसास उसी का नाम लेने लगता है। मन किसी और दुनिया में खोया खोया सा रहता है और हर पल बस अपने प्रिय की यादों के इर्द गिर्द ही घूमता है। ऐसी ही मासूम दीवानगी और मोहब्बत की मिठास से सजा है हमारा अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रेम बंधन से, और आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं।

कहते हैं प्यार कभी दस्तक देकर नहीं आता, तो वो तो चुपके से दिल में उतर जाता है, फिर मुस्कानें भी बेवजह खिलने लगती हैं और हर धड़कन किसी का नाम गुनगुनाने लगती है। ऐसे ही शरारत, मासूमियत और प्यार के रंगों से सजा है हमारा अगला गीत। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, आवाजें किश कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं।

3:33 और 8 सेकेंड हुए हैं दोस्तों। FM गोल्ड यानी 100.1 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कहते हैं जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो शब्द भी महकने लगते हैं। एक खत और उसमें रखा एक फूल कभी कभी पूरे दिल का हाल कह देता है। प्यार की उसी मासूम खुशबू, इंतजार की मिठास और रिश्तों की गर्माहट को समेटे है फिल्म सरस्वती चंद्र का ये सदाबहार नगमा। आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में।

कभी कभी प्यार भरी एक छोटी सी नसीहत भी रिश्तों की मिठास को और गहरा कर देती है। साल 2066 की फिल्म ममता का ये सदाबहार गीत, इन बहारों में अकेले ना फिरो, छेड़छाड़ अपनापन और हल्की सी फिक्र को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की मधुर आवाजें इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना देती हैं। तो आइए आप और हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

प्यार सिर्फ इजहार का नाम नहीं, इसमें रूठना भी है, मनाना भी है और नोकझोंक भी है और मुस्कुराहट कर हार मान लेने का अपना ही आनंद भी है। कभी एक छोटी सी तकरार रिश्ते में ऐसी मिठास खोल देती है कि वही पल उम्र भर की याद बन जाता है। अब जो सदाबहार गीत आपको सुनाने जा रही हूं, इसी चुलबुले अंदाज और प्यार भरी नोकझोंक का खूबसूरत सा उदाहरण है। इसमें रूठने की अदा है, मनाने की कोशिश है और दिलों के बीच छिपा वो अपनापन है जो हर शिकायत को मुस्कान में बदल देता है। कुछ इस तरह।

0: दिया था हाथ मलोगे समझे
1: अज समझे।

तेरे नैनों की मैं दीप जलाऊंगा। इस खूबसूरत से गीत को आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम है अनुराग।

दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं झूठा कहीं का फिल्म का यह गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इसमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा आज ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। यह राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। फीफा विश्व कप में स्पेन ने राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारजाबल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई, जिसके बाद पेड्रो पोरो ने 66वें मिनट में एक और गोल कर दिया। अब अंतिम 16 में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल या क्रोएशिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
1: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है
2: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms, and maritime energy transport.

सुबह के 4:10 और 52 सेकेंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी की मंजिल, पसंद और सपने अलग अलग होते हैं। दूसरों की राह देखकर अपनी दिशा मत बदलिए। जो आपके दिल को सुकून दे, वही आपकी असली पहचान बन सकता है। बस होना चाहिए कि रिश्तों में सम्मान हो और जीवन में अपने मन की सच्ची आवाज सुनने का साहस। जब आप अपने मूल्यों और सपनों के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी सफर भी खूबसूरत बनता है और मंजिल भी। आइए सुनते हैं सफर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में।

जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई खास वजह नहीं होती, फिर भी मन नए नए सपने बुनने लगता है। यही छोटे छोटे ख्याल, यही अनदेखे एहसास आगे चलकर बड़े इरादों और नई मंजिलों की शुरुआत बन जाते हैं। फिल्म रजनीगंधा का एक खूबसूरत गीत है जो हमें याद दिलाता है कि हर सपना पहले एक ख्याल बनकर ही जन्म लेता है। इसलिए अपने मन की सकारात्मक सोच पर भरोसा रखिए, क्योंकि आज की

एक छोटी सी उम्मीद कल आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकती है। तो आपको सुनवाते हैं रजनीगंधा फिल्म का गीत मुकेश के स्वर में।

दोस्तों, ज़िंदगी में गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपनी भूलों से सीख लेकर खुद को बेहतर बनाता है। पछतावा अगर बदलाव की शुरुआत बन जाए तो हर ठोकर एक नई मंजिल का रास्ता दिखा सकती है। फिल्म जनता हवलदार का एक ऐसा ही गीत है। इसी आत्ममंथन और एहसास को ये गीत खूबसूरती से व्यक्त करता है। तो आइए सुनते हैं इस दिल को छूने वाला नगमा जिसे स्वर दिया है अनवर ने। फिल्म का नाम है जनता हवलदार।

0: 4:30 होने को है। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं समर्पण से बनते हैं। जब किसी की खुशी हमारी अपनी खुशी बन जाए तो जीवन के हर रंग और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। सच्चा अपनापन वही है जो बिना किसी अपेक्षा के मुस्कुराहट बांटता रहे। अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उसमें प्रेम समर्पण और जीवन की खूबसूरत भावनाओं का अनमोल एहसास है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आनंद का ये गीत, आवाज मुकेश की है।
1: नहीं नहीं

कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि कोई हमें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन याद रखिए, हर सफर का एक पड़ाव ऐसा भी होता है जहां सबसे पहले हमें खुद से दोस्ती करनी होती है। जब मन मजबूत हो जाए तो दुनिया की हर राह आसान लगने लगती है। ऐसा ही एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, अभिमान फिल्म का, आवाज किशोर कुमार की। ये गीत हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत अपने भीतर के विश्वास में छिपी होती है। जब आप खुद का साथ नहीं छोड़ते तो मंजिल देर से ही सही लेकिन मिलती जरूर है।

दोस्तों, ये बात तो हम जानते हैं कि जिंदगी में शोर बहुत है, लोगों की राय, उम्मीदें और सलाह, लेकिन इन सब के बीच एक आवाज ऐसी भी होती है जो कभी झूठ नहीं बोलती, आपके अपने दिल की आवाज। जब इरादे सच्चे हों तो उसी आवाज पर भरोसा करना सबसे बड़ा साहस होता है। अपनी पहचान, अपने सपनों और अपने विश्वास को कभी खोने ना दे। जो अपने दिल की सच्ची पुकार सुनता है, वही जीवन की राह पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। और ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, उसे आवाज दी है हेमंत कुमार ने। फिल्म का नाम है अनुपमा।

दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन तब बनती है जब रिश्तों में तालमेल, विश्वास और अपनापन हो। जैसे सुर और गीत एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही साथ, सहयोग और संवेदनाएं जीवन को अर्थ देती हैं। आइए सुनते हैं ये गीत जिसमें इसी मधुर संगम का खूबसूरत एहसास है। प्रेम, समर्पण और संगीत की मिठास से सजाइए नगमा आज भी दिलों को छू लेता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस गीत की, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

जिंदगी हमें हर पल यही सिखाती है कि सच और आत्मविश्वास से बढ़कर कोई ताकत नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, अपने वजूद को छिपाकर नहीं बल्कि पूरे हौसले और ईमानदारी के साथ जीना ही असली जीत है। इसी जज्बे को आवाज देता है हमारा ये गीत, हमें प्रेरित करता है कि डर या संकोच नहीं बल्कि सच्चाई, साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का हर पल जिए। जी हाँ, अब आपको सुनवा रहे हैं ये खूबसूरत सा गीत महेंद्र कपूर की आवाज में, फिल्म का नाम है हमराज़।

चलते चलते हम एक बात आपको ज़रूर कहेंगे कि रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है और इसी बदलाव का नाम है जिंदगी। कभी लोग साथ चलते हैं, कभी राहें अलग हो जाती हैं, कभी अपने भी दूर लगते हैं तो कभी अजनबी दिल के करीब आ जाते हैं। लेकिन इन बदलते रिश्तों के बीच अगर कुछ अटल रहता है तो वो है आपका आत्मविश्वास और आपका सच्चा व्यक्तित्व। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि लोगों के बदलने से अपने सपनों का रास्ता मत बदलो। हर अनुभव आपको थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और समझदार बनाता है। तो दोस्तों, ये है कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते, आवाज किशोर कुमार की और सुमन कल्याणपुरी की है। आप आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम यानी अरुणिमा कार्यक्रम को समाप्त करने का। आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम में। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान की संबंध अति विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच से श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के साथ एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का

0: उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों को की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा आज ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। सीरिया के दमिश्क के एक कैफे में विस्फोट में 9 लोगों की मौत की खबर है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारजाबल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच के मैच के विजेता से होगा। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त को गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Ashish P. Abraham. India and Japan have reaffirmed their shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interests, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar Initiative, provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation.
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. In the India-Japan Annual Summit joint statement, both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on 22nd April last year. They also noted the United Nations Security Council Monitoring Team report of 29th July 2025 mentioning the resistance front. They also condemned in the strongest terms the terror incident in Delhi on 10th November last year. The two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri yesterday said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in

5:10 और 56 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और आइए अब बारी है कार्यक्रम भोर सुहानी की। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का नाम है 1942, अ लव स्टोरी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिजारिया। और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है कभी अजनबी थे फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की।